100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज वैशाख मास की 20वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 10 मई 2026 दिन रविवार, प्रातः के 5:55 हुए हैं और अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

नमस्कार, सुप्रभात। श्रद्धा के सुमन और ममता की खुशबू समेटे हाजिर हैं हम आपके बीच। मैं हूं स्वेच्छा, लेकर आपका अपना कार्यक्रम पुष्पांजलि। आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज हम उस शक्ति की बात कर रहे हैं जिसे ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में धरती पर भेजा है, मां। और आज की इस संगीतमय यात्रा में हम ईश्वरीय स्वरूपों में उसी ममता को ढूंढेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं अपना कार्यक्रम प्रथम पूज्य गणेश जी की वंदना के साथ।

जब भी हम गणेश जी की बात करते हैं तो उस बालक की छवि सामने आती है जिसने पूरी दुनिया के चक्कर लगाने के बजाय अपने माता पिता के इर्द गिर्द घूमना श्रेष्ठ समझा। श्री गणेश जी का अस्तित्व ही माँ पार्वती के प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। और आज हम उन प्रथम पूज्य को याद करते हैं जो हमें सिखाते हैं कि माता पिता के चरणों में ही सारा ब्रह्मांड समाया।

शिव, शिव अगर आत्मा है तो पार्वती उस आत्मा की शक्ति हैं, महादेव के आधे अंग में विराजने वाली माँ पार्वती ही तो जगत जननी है। एक तरफ उनका ममतामयी स्वरूप है और दूसरी तरफ संकट के समय वो काली बनकर हमारी रक्षा करती हैं। और शिव शक्ति का ये बंधन हमें बताता है कि संसार की

भक्ति क्या है? कई बार ऐसा सवाल मन में जरूर आता होगा ना। एक छोटे बच्चे का अपनी माँ के हाथ को पकड़ लेना सबसे बड़ी भक्ति है। उसे पता नहीं कि माँ कहाँ ले जा रही है, पर उसे ये विश्वास है कि जहां माँ है वहां मैं सुरक्षित हूं। ईश्वर और भक्त का रिश्ता भी ठीक ऐसा ही है। अगर आप अपने भगवान पर माँ जैसा भरोसा करना सीख जाएं, तो यकीन मानिए जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी।

प्रभु श्री राम, इनका व्यक्तित्व अगर मर्यादित है तो उसमें माँ कौशल्या के संस्कारों की महक है। और जब हम माँ सीता को देखते हैं तो वो तो धरती की बेटी और सहनशीलता की पराकाष्ठा में नजर आती हैं। वनवास के दुखों में भी उन्होंने जिस तरह अपने बच्चों का पालन किया वो हर माँ के लिए प्रेरणा है। और राम सिया की इस जोड़ी में आज हम उस मातृत्व को नमन करते हैं जिसने मर्यादा का इतिहास लिखा।

राम सिया की बात हो और हनुमान जी की बात ना की जाए। कहते हैं हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अमर हैं, पर दिखते क्यों नहीं, ये सवाल भी आता होगा मन में। हनुमान जी वायु पुत्र हैं, हवा के समान, हवा की तरह उड़ते हैं, पर हम उन्हें भौतिक जगहों पर ढूंढते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में। योग कहता है वायु पांच प्रकार की होती है, अपान, समान, व्यान, उड़ान और प्राण। और ये पांच वायु, पंचवायु, इन्हें देखा जाए तो ये हनुमान जी के पंच मुख के समान है। और वायु हमारी सांस है और हनुमान जी तो हमारी सांसों में हैं। अगर ध्यान से सुने तो हर आती हुई सांस रा और जाती हुई सांस मा की ध्वनि उत्पन्न करती है, यानी राम नाम तो हमारी ध्वनि हमारे रोम रोम में समाया है। और जहां प्रभु श्री राम का नाम हो वहां हनुमान जी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता।

कान्हा को याद करो तो यशोदा मैया की लाठी और माखन की मटकी याद आ जाती है। कृष्ण भले ही देवकी के लला थे, पर उन्हें कन्हैया कान्हा बनाया माँ यशोदा के निस्वार्थ प्रेम ने। और राधा रानी, वो तो स्वयं भक्ति का वो रूप है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। और आज इस भजन के माध्यम से हम उस मैया और उस प्रेम को याद करते हैं जिसने भगवान को भी घुटने के बल चलने पर मजबूर कर दिया था।

माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का केंद्र है। वो दुर्गा है, वो लक्ष्मी है, वो सरस्वती है। और उन सभी माताओं को नमन जो दिन रात बिना थके बिना रुके अपने परिवार के लिए शक्ति का स्तंभ बनी खड़ी रहती हैं। ईश्वर की सबसे सुंदर कविता अगर कोई है तो वो माँ है। वक्त की सुई अब इशारा कर रही है कि विदा लेने

का समय आ गया है, लेकिन आज अपनी माँ के पास दो पल सुकून से ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि दुनिया में बाकी सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर माँ की दुआओं का कोई विकल्प नहीं होता। उम्मीद है आज की पुष्पांजलि आपको पसंद आई होगी और आपके दिल को छू गई होगी। मैं स्वेच्छा आपसे इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। मिलते हैं न्यूज़ ब्रेक के उस पार कार्यक्रम सदाबहार गीत के साथ। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शिष्टाचार भेंट की। जनभवन में हुई मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उन्हें पुस्तक भी भेंट की। श्री योगी ने राज्यपाल से प्रदेश के वर्तमान स्थिति पर चर्चा की और सरकार के क्रियाकलापों से अवगत कराया। राज्यपाल ने भी वर्तमान परिदृश्य को लेकर चर्चा की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आज दूसरा चरण आयोजित होगा। परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है तथा पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कल शाम 6 बजे तक प्रदेश में कुल 1,18,23,566 वादों का निस्तारण किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 9 बजे अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग।

0: लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।

नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं स्वेच्छा। शुरुआत हो गई है कार्यक्रम सदाबहार गीत की और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम उस हस्ती का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिनके होने से घर घर बनता है। आज है मदर्स डे, एक दिन माँ के नाम। और हमारे इस पुराने गानों के सफर को, आज के सदाबहार गीत को हम डेडिकेट करते हैं हर माँ के नाम। तो चलिए यादों के इस पिटारे को खोलते हैं और माँ की ममता को शुरू में पिरोते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम सदाबहार गीत।

जिंदगी की तपती धूप में अगर कहीं सबसे ठंडी छांव मिलती है तो वो है माँ का आंचल। बचपन में जब कभी चोट लगती तो मरहम से पहले माँ की फूंक और उनका एक हाथ सर पर फिर

जाना ही सारा दर्द खत्म कर देता था। और वो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। और आज के इस दौर में जहाँ सब कुछ बदल रहा है, माँ की ममता आज भी वही पुरानी वाली और अनमोल है।

आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस, 12 बजे से 1 बजे के बीच, जिसमें आज का विषय है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। इससे संबंधित आप सभी के से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए, आप सभी को सलाह देने के लिए हमारे स्टूडियोज पर मौजूद रहेंगे डॉक्टर मोहम्मद तौसिफ खान, MBBS MD मेडिसिन विभाग से। विषय है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन और डॉक्टर रहेंगे डॉक्टर मोहम्मद तौसिफ खान, MBBS MD मेडिसिन विभाग। तो आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी जिज्ञासा है, आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं डॉक्टर से, तो आप हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं 12 बजे से 1 बजे के बीच। हमें कॉल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर है 0522-2238-852 और 0522-2238-845। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। और इसी जानकारी के साथ एक प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए।

दुनिया में अक्सर प्यार की तलाश करते हैं, पर भूल जाते हैं कि पहला और सच्चा प्यार तो हमें बिना मांगे ही मिल गया था। वो निस्वार्थ बिना शर्त वाला प्यार जो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। और पुराने दौर के गीतों में जो सादगी थी, वही सादगी माँ की डांट और दुलार में भी होता है। कभी सोचा है कि माँ के बिना घर कैसा लगता है? जैसे बिना सास के संगीत, सब कुछ अपनी जगह पर होकर भी बिखरा बिखरा सा। इसलिए क्योंकि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो पूरे घर की धड़कन है। तो चलिए इस धड़कन को महसूस करते हैं इस बेहद खूबसूरत से गीत के साथ।

जिंदगी बहुत तेजी से भाग रही है, पर ये गाने हमें रुकना और जीना सिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि छोटी छोटी बातों में खुशी कैसे ढूंढ लेनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हमारी माँ छोटी छोटी चीजों में हमारे लिए खुशियां बुन लेती हैं।

और जब जन्म लेने की बात आती है ना कई बार, तो हर कोई यही चाहता है कि जो माँ है, जो माँ हमें इस जन्म में मिली है, वो हर जन्म हमें मिले। और ऐसी माँ के लिए हम लोग कई कई जन्म लेने के लिए भी तैयार होते हैं। वो माँ ही तो है जो हमारी पहली गुरु है, जिन्होंने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और सबसे बड़ी बात इंसानियत का पाठ भी उन्होंने ही पढ़ाया। माँ के पास ना जादुई शक्ति होती है, वो अपने दुखों को अपनी मुस्कराहट के पीछे छुपा लेती हैं। उन्होंने जैसे कभी थकावट नहीं होती, वो कभी रिटायर नहीं होती, वो बस अपने अपनों के लिए पूरा जीवन बता देती हैं।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbow@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

रिश्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, पर माँ की दुआएं कभी नहीं बदलती। उम्मीद है आज का सदाबहार गीत का ये सफर आपकी पुरानी यादों को ताजा कर गया होगा। और आज अपनी माँ से ये जरूर कहिएगा कि वो आपके लिए कितनी खास है। मैं स्वेच्छा आप सभी से कार्यक्रम सदाबहार गीत से विदा लेती हूँ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो पर। ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार हिंदी में, जो कि रिले किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। और ठीक 8:15 बजे होगी हमारी आपकी मुलाकात एक बार फिर से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ के साथ। तब तक के लिए आज के कार्यक्रम सदाबहार गीत का ये आखिरी गाना एंजॉय करिए।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही

0: और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुँचने की संभावना है।
2: टीवीके के जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस, वीसी के, वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
7: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से

0: से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता, टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी

0: पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, मां होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
2: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
0: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है।
4: क्या बात है, वाकई माँ इतना खूबसूरत शब्द, और साथ ही में माँ का साथ, माँ की दुआएं, जब हर किसी बच्चे के साथ हो ना, तो जीवन बहुत आसान, बहुत खुशियों भरा हो जाता है।
3: बिल्कुल, और आज है मदर्स डे, तो जितने भी मदर्स हमें सुन रही हैं, उनको बहुत बहुत बहुत बधाई। माँ एक ऐसा रिश्ता है जो हर मुसीबत में भी साथ खड़ा रहता है और हर खुशी में भी साथ रहता है।
4: बिल्कुल, माँ ऐसी होती है जो हमारे हर दुख को सुख में बदलने की पूरी कोशिश करती है और बदल के ही रखती है, और हमें जब चोट भी लगती है ना छोटी सी, तो बस उसकी एक छोटी सी फूंक जो होती है ना, उससे हमें कोई दवा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती और हम ठीक हो जाते हैं।
3: और कोई भी दर्द है ना, देखिए माँ दर्द सह लेती जैसा इन्होंने कहा, और अपना पेट काट के अपने बच्चों का पेट भरने वाली ही माँ कहलाती है।
4: बिल्कुल, तो भाई माँ के लिए हम कितना भी कहें सब कम है जी। तो आज का दिन जो हम स्पेशली डेडिकेट कर रहे हैं माँ को, मदर्स डे स्पेशल है और साथ में संडे स्पेशल भी है, बहुत सारी बातें हैं। मैं हूँ स्वेच्छा और साथ में है,
3: मैं हूँ आपका अपना दोस्त विनय।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
1: दोस्तों 107 एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं आज गुड मॉर्निंग लखनऊ में विनय और स्वेच्छा आपके साथ हैं।
0: और अब मॉर्निंग मंत्रा की बारी आ चुकी है। एक पॉजिटिव नोट के साथ अपने दिन की शुरुआत करने की बारी आ गई है। तो आज का मॉर्निंग मंत्रा हमसे ये कहता है कि 7 अरब की भीड़ में 7 लोग तो जोड़ो, छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को मत तोड़ो।
1: क्या बात है, आप जानते हैं कि जो रिश्ते होते हैं ना बड़े नाजुक से होते हैं, तो खट्टी मीठी यादों के साथ आगे बढ़ते चलते हैं, तो इन रिश्तों को बिल्कुल भी अपने हाथ से छोड़िए नहीं, यही मॉर्निंग मंत्रा कह रहा है आपसे।

0: बिल्कुल, माँ धड़कन है, अगर हम धड़कन है तो माँ उस धड़कन का पूरा दिल है वाकई, क्योंकि माँ के बिना कुछ भी मुमकिन ही नहीं है।
1: बिल्कुल सही बताएं कि हर माँ के दिल में उनके बच्चों की धड़कन है, और इसीलिए कहते हैं कि जब भी बच्चों को कुछ चाहिए होता है ना तो माँ को पता चल जाता है। आपको पता है कि जैसे आप बेटी हैं और घर में बेटियाँ होती हैं माँ के बड़े करीब होती हैं और बेटे भी माँ के करीब होते हैं।
0: जी बिल्कुल, और भाई माँ के तो हर कोई करीब होता है, और इसीलिए माँ के लिए ही हर दिन समर्पित होता है। लेकिन स्पेशली एक खास दिन हम मनाते हैं, मई महीने के दूसरे संडे को, आज है मदर्स डे।
1: जी, इसकी शुरुआत अमेरिका की एना जॉर्विस ने अपनी माँ के सम्मान में की थी। 1914 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी, जिसके बाद पूरी दुनिया में बहुत सारे देश इसे मनाते हैं।
0: और मदर्स डे सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि माँ के प्रति सम्मान दिखाने का, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। और इस दिन बच्चे अपनी माँ को गिफ्ट देते हैं, कार्ड बनाते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं।
1: और बहुत सारे लोग डिनर पर भी जाते हैं। कई सारे लोग अपने हाथों से खाना बना के अपनी मम्मा को खिलाते हैं और मम्मा कहती है बड़ा ही स्वादिष्ट है, चाहे वो अच्छा ना हो।
0: बिल्कुल, और आज के दिन आज के डिजिटल दौर की बात करें तो मदर्स डे सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रेंड करता है। लोग अपनी माँ के साथ तस्वीर और इमोशनल मैसेज शेयर भी करते हैं।
1: कई हैशटैग चल रहे होंगे, जैसे मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, ये हैशटैग आज खूब वायरल होंगे। बड़े सारे लोग अपनी मम्मी की फोटो, वीडियो, उनके लिए स्टोरीज लगाएंगे और ये हैशटैग लगाएंगे। और देखिए, ये जो दिन होता है, आप सही मायने में, मैं स्वेच्छा कई सारे वीडियोस देखता हूँ कि अपनी पहली सैलरी से बच्चों ने अपनी माँ को कोई गिफ्ट दिया।

0: या रिजल्ट आने पर बताया, तो वो जो आंखों में खुशी होती है किसी मदर के, रोते हुए भी वो खुशी दिख जाती है।
1: बिल्कुल, और बात तो सोशल मीडिया की हुई है, तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही प्यार मत जताइएगा, असली पर भी जरूर दिखाइएगा कि माँ क्या है, उनको स्पेशल जरूर फील करवाइएगा।

0: कैसा लगा मामा?
1: क्या
0: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस?
1: बैटरी ला रहा है।
0: कोई काम सब तो मैं ही करूंगा ना। मामा तू जाओ इधर।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा।
2: तो गुड मॉर्निंग लखनऊ, आप सुन रहे हैं विनय और स्वेच्छा आपके साथ है, और आज का तो बस एक ही मुद्दा है, आज है मदर्स डे। और मदर्स डे पर आप अपनी मम्मा को क्या कहना चाह रहे हैं,
3: आप हमें बताइए, हमारे साथ शेयर करिए, आप डायरेक्ट भी कहिए और हमारे साथ भी जरूर शेयर करिए, और हमारे थ्रू कहनवाना चाहते हैं तो भी कहिए, fmakashvanilakhnow@gmail.com पर अपने दिल की बात अपनी माँ के लिए।
2: और स्वेच्छा एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कई बार क्या होती है, अपनी माँ तो माँ होती है, हमारे घरों में बड़े सारे और लोग भी माँ होते हैं, जैसे कि कई लोग दादी माँ बोलते हैं, दादी को भी माँ स्वरूप समझते हैं, चाची को, मौसी को, और बड़े सारे लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ी सारी माँ पैदा नहीं करती लेकिन वो उसको उस तरह सहेज के रखती है। तो बहुत सारी हमारे आसपास मदर्स हैं जिसे भी आप कुछ कहना चाहते हैं उनको, पहले तो आप फिजिकली उन्हें आई लव यू बोलिए, उनको गले लगाइए, और आप हमें उनसे अपनी दिल की बात शेयर करिए, fmakashvanilakhnow@gmail.com पर।
3: बिल्कुल।

0: नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
2: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।

0: अच्छा, जिनका बर्थडे उनके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी।
1: बिल्कुल
0: जी, हम तो बड़ी खुशी से गा रहे हैं, आज पूरा घर आपके लिए यही बोल रहा होगा हैप्पी बर्थडे।
1: और आज तो कितना स्पेशल दिन है, मदर्स डे भी है, हैप्पी बर्थडे भी अगर आपका है तो भाई इस दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, और जो साथी अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बहुत बधाई, और किसी भी स्पेशल मोमेंट की आज एनिवर्सरी है तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज संडे मदर्स डे और आपके लिए स्पेशल डे है
1: जी, तो आपके हर रूप में अगर कोई खास दिन है तो उस हर रूप को हम ढेर सारी बधाई देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन बहुत खुशियों भरा हो।
0: और आज है किसका बर्थडे, आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं वो भी हम बताना नहीं भूलेंगे।
1: तो आज है ऋषिता भट्ट का जन्मदिन, यानी कि 10 मई 1981 को आज एक दिन ऋषिता भट्ट का जन्म हुआ था। वो हिंदी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपनी सादगीपूर्ण अभिनय शैली से हम सब के बीच एक खास पहचान बनाई। अगर आप देखेंगे ना, अभी हम फिल्मों के नाम बताएंगे तो आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इनकी जो फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी वो अशोका फिल्म से हुई थी। इसके बाद इन्होंने हासिल, अब तक, छप्पन, जिज्ञासा, वाल्मीकि सागा ऑफ कॉमन मैन और हीरो जैसी फिल्में की हैं।
1: और फिल्मों के अलावा उन्होंने कई टीवी शोज, म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया, और अपनी नेचुरल एक्टिंग और ग्रेसफुल पर्सनालिटी के कारण वो आज भी दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं।
0: बिल्कुल, और उनका एक बहुत ही प्यारा सा सूदिंग सा नंबर है, वो हम आपको जरूर सुनाएंगे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: जी दोस्तों, ये जो सेगमेंट जिसके बारे में आप सुन रहे थे, तो ये आज भी होने जा रहा है 9 बजे के आसपास। तो अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है फल फूल या छत पर या कहीं पर भी सब्जी से रिलेटेड, और तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आप मेल कर दीजिए fmrainbowhelpline@gmail.com पर।
3: बिल्कुल, और अब बारी आप सभी के मेल्स की। सुबह से कितने सारे मेल्स आ चुके हैं हमारे लिसनर्स के, तो आइए इनको भी शामिल कर लेते हैं। जनवेश कुमार ने हमें कन्नौज से मेल किया है, गुड मॉर्निंग लिखा है, लिखते हैं सूरज की पहली किरण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत उसी के साथ सुनना आरंभ किया, कार्यक्रम की प्रस्तुति इन्हें बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: और साथ ही साथ वकील अहमद जी ने हमें अस्सलाम वालेकुम कहा है, आवाज इन्हें आपकी अच्छी लग रही थी, सुबह 6:30 बजे के आसपास ये मेल कर रहे थे, और ये कह रहे हैं रेडियो में काफी आवाज़ अच्छी आ रही थी, ये गाने अच्छे बज रहे थे। वकील अहमद मंसूरी कटरा हथूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफसा सिद्दीकी, जान मोहम्मद,
3: आप सबका शुक्रिया हमें सुनने के लिए और मेल करने के लिए। दीपक शांके ने हमें उत्तर प्रदेश एटा जिला से मेल किया है, लिखते हैं कृपया आप हमें भी किसी भी गीत में शामिल कर लें।
2: साथ ही साथ मोनू सेठ जी ने भी मेल किया है, और ये कह रहे हैं कि गाने बहुत अच्छे बज रहे थे, करीब इन्होंने आई थिंक सदाबहार गीत के गानों की तारीफ की है, और कुछ लाइंस भी लिखी हैं कि नैनन में है जल भरा, आंचल में आशीष तुमसा दूजा नहीं यहाँ, तुम्हें नवाए शीश, रही लहू से सींचती काया तेरी, देन संस्कार सारे दिए अद्भुत तेरा प्रेम, माँ का प्यार दुनिया की सबसे सच्ची दुआ है, माँ घर की नहीं पूरी दुनिया होती है, रातों को भी जाकर हमें लिया है पाल, ऋण तेरा कैसे चुके सोचे तेरे लाल, मेरे पास मेरी माँ नहीं इस बात का दुख जीवन भर रहेगा।
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मेल करने के लिए, अपने भाव हमारे साथ शेयर करने के लिए। राम मोहन गुप्ता

0: ने हर बार की तरह अपनी कुछ पंक्तियां लिखकर हमें भेजी हैं। लिखते हैं, है वंदन अभिनंदन। माँ तो बस होती है माँ, कदमों में जिसके है जन्नत जहाँ। खातिर संतान सब कुछ करे, चाह एक ही रहे, खुश तू सदा बढ़े। माँ ममता को सदा नमन, संतान हित अर्पित सारा ही जीवन। जिसका तो बस सपना एक, संतान रहे सुखी, ना हो कष्ट क्लेश। माँ तो बस माँ ही होती, सूखे पर संतान खुद गीले पर सोती। वास्ते संतान सब सह जाती, माँ सगुरु संरक्षक ना कोई साथी। सादर नमन वंदन अभिनंदन, माँ चरण धूल है माथे पर, माथे का चंदन। धरती पर स्वरूप है ईश्वर का, अद्वितीय उपहार है जगदीश्वर का। राम मोहन गुप्त अमर लखीमपुर खीर से। बहुत बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया।
1: बहुत बढ़िया आपने
0: बहुत
1: लिखा,
0: प्यारी कविता,
1: सारे भाव आपने पंक्तियों में पिरो दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें आंचल सेठ ने मेल किया है, ये रायबरेली से मेल कर रही है, लिखती है, दौलत भी मिलेगी तुम्हें और शोहरत भी मिलेगी, माता पिता की सेवा करो तुम्हें जन्नत भी मिलेगी। लिखती है, माँ तो सिर्फ माँ होती है।
0: और सोनू परवाना ने हमें मेल किया है, मैं तो भगवान से भी नाराज़ रहता हूँ क्योंकि मेरी माँ को उन्होंने मुझसे छीन लिया। मेरे लिए, मेरी माँ के लिए भगवान से ऊंचा दर्जा था। देखिए, ये जो क्रिया होती है ना, ये एक वक्त होता है, सबके जीवन में आता है, लेकिन आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आप उनके साथ रहे, अच्छा वक्त आपने बिताया उनके साथ, जो भी टाइम बिताया उसको याद करके आगे का जीवन आप जी सकते हैं, और वही बहुत खुशी भरा पल होता है माँ के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपकी माँ नहीं है तो आप अपने बड़े भाई बहनों में अपनी माँ को देखिए, अपने पिता में अपनी माँ को देखिए, जिसे भी आप, जो आपके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, उसमें अपनी माँ को देखिए, उसका सम्मान करिए, वही सच्चा प्यार है माँ के प्रति।
0: बिल्कुल। और इसी बात के साथ अब एक प्यारे से गाने का वक्त हो चुका है, लौटेंगे इस गाने के बाद।

0: सनी।
1: जी हाँ दोस्तों, आपकी जो प्यारी सी माँ है, आप अगर उसको भी ये गाना डेडिकेट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं आसानी से। आपकी जो माँ है ना, वो हर रूप में प्यारी होती है। कई बार तो जब वो आपको चप्पलों से पीट रही होती है तब भी आप उन्हें प्यारा समझ सकते हैं। वो दिल से आपको नहीं मार रही, वो आपको समझा रही है कि देखो सुधर जाओ।
0: जी, और अगर माँ ना सुधारे ना तो हर बच्चा यहाँ बिगड़ा ही होगा। फिलहाल वक्त हो गया 8:56, और ये वक्त हमसे कह रहा है कि अब हमें कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ के फर्स्ट हाफ को यहीं पर वाइंड अप करना होगा। मिलते हैं न्यूज ब्रेक के उस पार गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकंड हाफ में।
1: आप अगर कोई मैसेज देना चाह रहे हैं अपनी माँ को तो आप हमें FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर मेल कर सकते हैं।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: नमस्कार, आप सुनिए अखबारों की सुर्खियां। पश्चिम बंगाल में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण को अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। हिंदुस्तान ने शीर्षक दिया है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। नवभारत टाइम्स लिखता है, बंगाल में बीजेपी का शुभारंभ। अमर उजाला ने लिखा है, बंगाल में शुभेंदु सरकार, 5 मंत्रियों ने ली शपथ। दैनिक जागरण ने हेडिंग लगाई है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी खबरें भी अखबारों की सुर्खियों में हैं। दैनिक जागरण ने लिखा है, योगी मंत्रिमंडल का दूसरा बहुप्रतीक्षित विस्तार आज। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, योगी सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार आज। अमर उजाला लिखता है, योगी सरकार में शामिल होंगे 6 नए मंत्री, शपथ आज। हिंदुस्तान ने शीर्षक दिया है, योगी मंत्रिमंडल विस्तार आज, 6 नए मंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 5 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का शुभारंभ किए जाने की खबर अखबारों की सुर्खियां बनी है। नवभारत टाइम्स में मुख्यमंत्री के कथन का शीर्षक दिया है, शटल की तरह सपनों को टूटने ना दे। अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण की खबरें भी अखबारों की सुर्खियों में हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, एक वार में कई दुश्मनों को भस्म करेंगी अग्नि। नए CDS की खबरों को भी अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, NS राजा सुब्रमणि होंगे CDS। नवभारत टाइम्स लिखता है, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि नए CDS। देश में नए लेबर कोड से जुड़ी खबरें भी अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, सप्ताह में 48 घंटे काम और ओवर टाइम के बदले नियम। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं। तमिलनाडु में TV के प्रमुख विजय के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण से जुड़ी खबर भी अखबारों की सुर्खियों में है। हिंदुस्तान ने लिखा है, तमिलनाडु में विजय की ताजपोशी आज, VCK साथ आई। अमृत विचार ने लिखा है, राज्यपाल ने विजय को मुख्यमंत्री नियुक्त किया, आज लेंगे शपथ। वॉइस ऑफ लखनऊ ने लिखा है, TV के प्रमुख विजय ने हासिल किया आवश्यक संख्या बल। स्वतंत्र भारत लिखता है, तमिलनाडु में नवे CM होंगे विजय। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर।
5: जी गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, 9:04 का वक्त है। सेकेंड हाफ प्रोग्राम में हम लौट चुके हैं स्वेच्छा और विनय
6: जी, और आज भी बहुत सारी बातें हमारे पास, तो आज तो

0: मदर्स को हम सब डेडिकेट कर रहे हैं सारी बातें, तो अगर आप अपनी मम्मी से कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप हमें बताइए fmakashwani@gmail.com पर।
1: जी, तब तक एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए।

0: और दोस्तों अब वक्त आ गया है आप सभी को हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट के साथ जोड़ने का। छत और गमलों में फल फूल और सब्जी उत्पादन से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है तो फटाफट हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर।
1: जी, हमारी मेल आईडी है एफएम रेनबो हेल्पलाइन। बहुत देर से हम आपसे बात कर रहे हैं इस मेल आईडी के थ्रू और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं।
0: जी, आज है हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ल, प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन ICAR केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से। आइए इनसे बात करते हैं।
1: तो सर, गुड मॉर्निंग, लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, सादर सुप्रभात।
1: सर, सुल्तानपुर रोड से सुनीता रावत जी ने हमें मेल किया है और वो हमसे पूछ रही हैं कि पौधों में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, ये कैसे पता करें?
2: पौधों में न्यूट्रिएंट्स की कमी का पता ऐसे चलता है कि एक तो पौधे की ग्रोथ जो मतलब वृद्धि होती है वो थोड़ा चेक होती है, उसके ऊपर कई तरह के सिम्टम आते हैं, मतलब पत्तियां नॉर्मल कलर की न होके बदलती हैं, पीला पलेंगी और छोटी रहेंगी और साथ ही साथ जो है क्या ना उसमें लक्षण आएंगे, तो ये उसको अगर आप डालेंगे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालें, एनपीके का स्प्रे करें या घर में जो कचरा या ऑर्गेनिक वेस्ट आता है जैविक, उससे भी अगर आप बनाते हैं घोल, वो जब डालेंगे तो वो रिकवर कर जाएंगे पौधे। सबसे बड़ा जो फायदा है मतलब इसको पता चलता है, इससे भी इसका मतलब पोषक तत्वों की कमी, वो उससे रिकवर करते हैं फिर।
0: जी। सर, मुस्कान जी पूछना चाहती हैं कि गर्मी के मौसम में कौन सी सब्जियां ज्यादा बेस्ट होती हैं उगाने के लिए?
2: देखिए, गर्मी के मौसम में सबसे अच्छी तो सबसे ज्यादा तो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं। इसके अलावा आपकी जो है चौलाई है, धनिया थोड़ा सा मतलब छाया करके उगाते हैं, चौलाई तो खुले में उगती है, और जितनी लौकी तरोई करेला ककड़ी खीरा है ये सब धूप चाहिए इनको, और ये गमले में नहीं हो पाती, गमले में होगी तो तुरई और करेला हो सकती है और बाकी खेत में बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी सब्जियां, भिंडी है, लोबिया है, ये सब सब्जियां गर्मी वाली हैं, इस समय खूब आ रही हैं।
0: जी।
1: और सर, लखनऊ से हमारे पास एक और मेल है, ये ऐशबाग लखनऊ से हमें भेज रहे हैं वारिस जी। ये कहते हैं कि मैंने गमले में गेंदा लगाया है और इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि तना भी रंग बदल रहा है, क्या करें?
2: असल में क्या होता है कि कई बार हमारे पास गेंदा की कुछ खास किस्में होती हैं जो इस गर्मी में हो पाती हैं, सब पौधे नहीं हो पाते हैं, मतलब जो जाड़े वाली गेंदा की किस्में हैं वो अच्छी परफॉर्म नहीं करती हैं। अगर आपने छाया कर दी तो फूल नहीं आता, ग्रोथ हो जाती है, अगर खुले में कर दी तो मरने वाली स्थिति आ जाती है, वो बचा नहीं पाती है। ये थोड़ा सा रहता है गेंदा की अंदर किस्में, जैसे NBRI ये राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, वहां से थोड़ा सा विशेष तौर पर, या जो किसान खेती करते हैं तो गेंदा की जो अलग से किस्में हैं जो गर्मी के मौसम में अच्छा परफॉर्म करती हैं, उनको लगाने से ये दिक्कत नहीं आती।
0: जी जी जी। सर, हमसे रमेश जी ये पूछना चाहते हैं कि क्या एक ही गमले में दो अलग अलग सब्जियां उगाई जा सकती हैं?
2: नहीं, उगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जड़ प्रणाली होती है, बड़ी होती है, तो गमले का साइज क्या है। अब आप दो दो पौधे करेला के डाल देंगे कम से कम 12 इंच गमले में या 12 इंच 16 इंच ग्रो बैग में, कोई दिक्कत नहीं है, तुरई डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लौकी में बहुत मुश्किल होता है कि पौधा थोड़े दिन चलता है बाद में सूख जाता है। तो पौधे का जो जड़ प्रणाली है उसके आधार पर आप सब्जियां उगा सकते हैं, धनिया है, चौलाई है, ये सब गमले में बहुत अच्छे से हो जाते हैं क्योंकि पत्तियां तोड़ लेते हैं, पौधा चलता रहता है। इस तरह से बहुत सी चीजें हो जाती हैं जिनके जड़ सिस्टम छोटा होता है, वो गमले में आराम से एक क्या दो तीन हो जाते हैं अच्छे से। बैंगन भी बहुत अच्छे से हो जाता है, एक पौधा लगाते हैं वही घेर लेता है पूरा।
1: सर, ये मोनू सेठ जी ने मेल किया है, कह रहे हैं कि उड़द में पानी देने के बाद भी अभी वो ठीक से पनपा नहीं, क्या करें?
2: हो सकता है आपने देर से बुआई की हो, लेकिन इस समय तो मौसम अच्छा हो गया क्योंकि पानी भी बरस गया है, और इसके बाद आप थोड़ा सा देखिए उसमें कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ रहा हो, क्योंकि दिक्कत यह है जब पानी इस तरह से माहौल बदलता है, बरसात हो जाती है तो कभी कभी कुछ कीड़े का प्रकोप हो जाता है, बाकी गर्मी में और कोई दिक्कत नहीं होती। मूंग उड़द में पानी उसको चाहिए, बस पानी आप देते रहते हैं, और खरपतवार शुरू में निकालना जरूरी होता है, अगर नहीं निकालेंगे तो दब जाता है, जहां पौधा थोड़ा बड़ा हुआ तो खरपतवारों को खुद ही ढक देता है, मूंग उड़द दूसरे को चलने ही नहीं देता है। तो इस तरह की फसलें हैं, मार्जिनल सॉइल्स में भी होती है, बस पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
0: जी
1: सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारे लिए।

0: नस के सवालों के जवाब दिए।
1: धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद
2: जी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने जिन्होंने हमें मेल किया, उन सभी का शुक्रिया, और हमें उम्मीद है कि आप सभी के जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई होगी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ल, प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन ICAR, केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा, लखनऊ से।
0: और अगर आपका सवाल कोई रह गया है जो हम नहीं पूछ पाए हैं, तो आप हमें मेल कर दीजिए। अगले सप्ताह आपका सवाल हम जरूर लेंगे। हमारी मेल आईडी है FM Rainbow Helpline @gmail.com।

0: जो ये दोस्तों तो संडे स्पेशल है, और साथ ही में जब दिन की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे खास दिन होते हैं जो हम मनाते हैं, मदर्स डे तो मना ही रहे हैं, साथ ही आज है इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गानिया।
1: जी, इंटरनेशनल डे अर्गानिया जी 10 मई को हर साल मनाया जाता है, और इस दिन की जो शुरुआत है यूनाइटेड नेशंस ने की थी ताकि आंगन जो ट्री है उसकी इम्पोर्टेंस को और पर्यावरण और सामाजिक और आर्थिक योगदान के बारे में हम सभी जान सके।
0: और आर्गन ट्री मुख्य रूप से मोरक्को में पाया जाता है और इसे ट्री ऑफ लाइफ भी हम कहते हैं। इसे प्राप्त होने वाला आर्गन ऑयल स्वास्थ्य, सौंदर्य और पोषण के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है।
1: दोस्तों, ये पेड़ जलवायु परिवर्तन से लड़ने और भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए और साथ ही साथ स्थानीय समुदायों विशेषकर महिलाओं को रोजगार देने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है।
0: बिल्कुल, और जैसे प्रकृति हमें सिर्फ संसाधन नहीं देती बल्कि जीवन देती है, इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गानिया हमें पेड़ों और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझने और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है।
1: दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पेड़ क्या होते हैं, अपनी छांव से हम सभी को बचाते हैं, वो पेड़ों की जड़ पूरे पेड़ को मजबूत पकड़ कर रखती है, उसे गिरने नहीं देती, उनकी टहनियों को गिरने नहीं देती। इसी तरह हमारे घर में माता पिता होते हैं जो अपने छांव में हम सभी को सहेज के रखते हैं।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
3: इतिहास के पन्नों में आज का दिन।
4: जी दोस्तों, आज का दिन यानी कि 10 मई बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास के पन्नों को अगर हम झांके तो।
5: और 1857 साल की बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी और मेरठ के तीनों रेजिमेंट के सिपाहियों ने बगावत का झंडा उठाकर दिल्ली कूच कर दिया। इसमें महिलाओं ने भी सहयोग दिया, ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी।
4: और दोस्तों, आज ही के दिन 1916 में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ऐतिहासिक शिपपोर्ट संग्रहालय खोला गया था।
5: और 1993 की बात की जाए तो संतोष यादव दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर दो बार पहुंचने वाली पहली महिला पर्वतारोही बनी थी।
4: बात है, साथ ही साथ दोस्तों 1994 में दक्षिण अफ्रीका में प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव के बाद नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी।
5: साल 2005 में भारत पाकिस्तान बस सेवा लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने पर सहमति बनी थी।
4: साथ ही साथ 2006 में चंद्रयान प्रथम इसरो और नासा ने भारत के चंद्रयान प्रथम मिशन के लिए सहमति पत्र पर सिग्नेचर किए थे।
5: जी, और ये थी कुछ इतिहास से जुड़ी बातें। अब एक गाना और फिर लौटेंगे उसके बाद बहुत सारी बातों के साथ।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों गुड मॉर्निंग, लखनऊ सुन रहे हैं आप, स्विच और विनय आपके साथ हैं। और दोस्तों आज लखनऊ में एक विशेष आयोजन हो रहा है रवींद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर, रवींद्र संध्या। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है बंगाली वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ की उपाध्यक्ष डॉक्टर सीमा सरकार जी।
3: जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हेलो।
4: हाँ जी
3: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है
2: जी। इस विशेष आयोजन के बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं कि रवींद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर ये जो आयोजन आपने आयोजित किया है वो कहाँ हो रहा है, क्या क्या होने वाला है।
4: जी गुड मॉर्निंग लखनऊ, और आप सभी का धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहूंगी कि आज हम लोग विश्वेश्वरैया ऑडिटोरियम जो की राजभवन के सामने है, ये रवींद्र संध्या सीजन 2 है, जिसमें जापान चित्रो जो दिल्ली की नाटक कंपनी है, नाटक संस्था है, उसके द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरी महामाया के ऊपर महामाया का मंचन होने जा रहा है बंगाली में। और चूंकि ये रविन्द्रनाथ जी की ही प्रस्तुतियां हम बंगाली में प्रस्तुत कर रहे हैं, कल हम लोग का जो रविन्द्र जयंती थी यानी कि पोचिशे बोईशाख बोलते हैं, अब चूंकि आज हम उसको संडे को कर रहे हैं, हमारी सारी अवेलेबिलिटी संडे की थी इसलिए आज हम संडे शाम को कर रहे हैं। और

0: में दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है वो है मिसेस श्रावणी सेन, जो कि कोलकाता की बहुत प्रतिष्ठित रविंद्र संगीत गायिका हैं, उनका पूरा पूरा संगीतमय कार्यक्रम है, वो अपने ट्रूप के संग आ रही हैं। इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चीज है वो है हम रविंद्र सम्मान देने जा रहे हैं, और इसमें जो हमारे लखनऊ के पद्मश्री अनिल रस्तोगी जी, डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी, उनको हम लोग ये रविंद्र सम्मान दे रहे हैं। इसके अलावा रविंद्र सम्मान एक हमारे बंगाली भी हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनको हम दे रहे हैं। और इसके बाद ये सब हमारा जो है पासेस के थ्रू है, और पासेस जो है आपका स्नैक्स और डिनर के साथ में है
1: जी।
0: और जो बाहर का एरिया है जहाँ के हमारा फ्री का एक्सेस है सभी के लिए, सभी लखनऊ वासियों के लिए यहाँ का आमंत्रण है, वो है आपके तीन बुक स्टॉल्स हमारे कोलकाता से आ रहे हैं, यानी कि आनंद पब्लिकेशंस एंड डे पब्लिकेशंस एंड एक और रामकृष्ण मठ का भी पब्लिकेशन हाउस है जो यहाँ पे स्टॉल्स लगा रहा है, और मुगल घराना करके चिकनकारी का बहुत ही सस्ते में, मतलब ये स्टॉल्स में आपको सामान मिल जाएगा, और एक जामदानी करके एक स्टॉल है वो भी बंगाली चीजों का, वो भी लग रहा है। तो ये सारे अट्रैक्शंस हैं जिसमें अगर आप बंगाली हैं तब तो आप इनसाइड बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे सारा शाम, आप 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक, और अगर आप बंगाली नहीं हैं तो आप आइए और बस यहाँ चारों तरफ घूमिए फिरिए, और बुक स्टॉल्स अगर आप बुक लवर्स हैं एंजॉय करिए, और इसके बाद आप घर जा सकते हैं।
1: मैम बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस विशेष आयोजन के लिए।
0: थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।
1: तो श्रोताओं, हमारे साथ ही बंगाली वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ की उपाध्यक्ष डॉक्टर सीमा सरकार जी।
2: जी, और अब 9:37 का वक्त हो चुका है दोस्तों, एक प्यारा सा ट्रैक आप सभी के बीच आ रहा है, और फिर लौटेंगे इस गाने के बाद।

0: क्या बात है इस बेहतरीन ट्रैक के बाद। दोस्तों अगर आप आज घूमने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपडेट सुनकर जाइए, क्योंकि कहीं आपके घूमने फिरने में कोई बाधा ना आए, उसके लिए हमारे साथ हर रोज मौजूद रहते हैं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह जी। सर गुड मॉर्निंग, लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज सर क्योंकि संडे का दिन है और संडे के दिन ट्रैफिक बहुत ही कम रहता है सड़कों पर, तो वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है। कहीं भी सर अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है। सर आपके माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे कि शाम को लगभग 3:30 बजे जनभवन में कार्यक्रम प्रस्तावित है सर, और इस कार्यक्रम के दौरान जो है हमारा लाल बत्ती से सिसंडी लाल बहादुर शास्त्री वाला जो मार्ग है, ये मार्ग जो है यातायात हेतु प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान आप यदि जो है मार्ग यूज करना चाह रहे थे तो कृपया आप वैकल्पिक मार्ग यूज करें। वैकल्पिक मार्ग के रूप में आप KKC होकर के अथवा बदरिया बाग होते हुए DSO होकर के जा सकते हैं, अथवा पार्क रोड का यूज कर सकते हैं। साथ ही इसके बाद जो है लोक भवन में कार्यक्रम प्रस्तावित रहेगा, और लोक भवन के कार्यक्रम के दौरान हमारा हजरतगंज से बापू भवन वाला जो रोड है, ये रोड जो है यातायात हेतु प्रतिबंधित रहता है। तो दौरान श्रोताओं से अनुरोध रहेगा कि आप शाम के समय में 3:30 बजे से लेकर के लगभग 5 बजे तक आप कृपया इन मार्गों का यूज करने से बचें, वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। यदि आपको कहीं अति आवश्यक है और लग रहा है कि आपको अविलंब पहुंचना जरूरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9454-5155 पर हमसे संपर्क कर हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यही अनुरोध रहेगा कि संडे के दिन सड़कें खाली रहती हैं, तो जो हमारे युवा बाइकर्स हैं और वाहन चलाने वाले हैं, इनके द्वारा थोड़ा सा रोड पर स्टंटिंग की जाती है, तो इस दौरान जो है हम लगातार ऐसे वाहन चालकों पर निगरानी किए हुए हैं और प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। परंतु सबसे उचित यही रहता है कि आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। आप कोशिश करें कि इस तरह से स्टंट करने से जहां एक तरफ आपके जीवन के लिए खतरा होता है, वहीं दूसरे तरफ जो इनोसेंट व्यक्ति रोड पर चल रहा होता है उसके भी जीवन को खतरा उत्पन्न होता है।
2: जी,
1: तो आप कृपया यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और एंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: जी धन्यवाद।
2: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ TSI विकास सिंह जी, जिन्होंने हमें हमारे शहर की ट्रैफिक अपडेट्स दी और बहुत सारी जानकारियों के साथ हम लौटेंगे इस गाने के बाद।

0: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
1: भाई अब मैच का क्या होगा?
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
2: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
8: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
9: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
8: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
10: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
11: या दोस्तों, गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो लेकर आज हाजिर है विनय और स्वेच्छा
12: जी, आपके संडे को और भी स्पेशल बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे नाम की जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया अपने जीवन काल में और आज ही के दिन वो इस दुनिया से विदा ले गए। तो अब उनका नाम शामिल कर लेते हैं। साल 2002 में आज ही के दिन कैफी आजमी जी का निधन हो गया था। वे हिंदी फिल्म जगत के प्रसिद्ध उर्दू शायर, गीतकार और साहित्य थे।
11: जी हाँ, उनका नाम हम सभी के जहन में आज भी है। उनकी शायरी जो बहुत ही सूदिंग थी। और साथ ही साथ दोस्तों, 2010 में मैकमोहन, ये एक ऐसा नाम है जिसे आप सांभा, जो शोले में किरदार था, उसके नाम से जानते हैं, तो ये भी आज ही के दिन हमारा साथ छोड़कर चले गए थे।
12: जी, साल 2020 की बात है। हरी वासुदेवन, एक प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार और शिक्षाविद, आज ही के दिन इनका भी निधन हुआ था।
11: दोस्तों, शिव कुमार शर्मा, जो भारत के महान संतूर वादक और संगीतकार थे, इन्होंने संतूर जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में नई पहचान दिलाई। तो इन सभी महान विभूतियों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
12: जी दोस्तों, और अब बात है आप सभी के मेल्स की। आप सभी के मेल्स को शामिल करने का वक्त आ गया है। गीता सेर हमें लिख कर भेजती है, उस माँ के लिए क्या लिखूं जिसका संसार ही ऋणी हो।
11: और साथ ही साथ दोस्तों, कमल पांडे जी ने हमें मेल किया है कि हमें सुप्रभात का है। साथ ही साथ कमल शंकर पांडे ग्राम मोहलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर से मेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आप सभी को हैप्पी मदर्स डे, और माँ ईश्वर का दूसरा रूप है, हम सब के साथ है, हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। माता पिता सेवा समाज को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि बेटा होने पर फ़र्ज निभाने के लिए करनी चाहिए। और बहुत सारी बातें लिखी हैं माता और पिता के सम्मान के प्रति। बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए।
12: जी, ये मिश्रा ब्रदर्स नाम से हमारे पास मेल आया है। हैप्पी बर्थडे मदर्स डे, इन्होंने हेडिंग डाली है, शायद इनकी माँ का बर्थडे भी हो। और लिखते हैं, सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी माँ सबसे न्यारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ।
11: साथ ही साथ वकील अहमद ने हमें फिर से मेल किया है, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, आवाज़ इन्हें अच्छी लग रही, मदर्स डे की सभी को शुभकामनाएं दे रही हैं। हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूं, जब हंसती है माँ तो मैं हर गम भूल जाता हूं। क्या बात
12: क्या बात है। यास्मीन बानो जी हमें लिखती हैं, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं, सीतापुर से मेल किया है, हैप्पी मदर्स डे। लिखती हैं, सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए।
11: वाह। साथ ही साथ जनवेश कुमार ने हमें गुड मॉर्निंग लखनऊ के साथ ही साथ हैप्पी मदर्स डे कहा है, और मदर्स

0: पर एक संदेश है कि माँ को देने के लिए हमारे पास कोई गिफ्ट नहीं है, एक चीज जरूर है हमारे पास, वो है उनकी सेवा और सम्मान करता हूँ जो भी है। जनवेश कुमार रसूलपुर पोस्ट सकरावा जिला कन्नौत से इन्होंने मेल किया है, पुष्पांजलि और सदाबहार गीत की तारीफ की है और हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद स्वेच्छा मैडम को कहा है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। राधेश्याम जी हमें लिखकर भेजते हैं कासगंज से मेल। गुड मॉर्निंग लिखा है, कार्यक्रम पसंद आ रहा है सभी को, इन्होंने मदर्स डे विश किया है। साथ ही लिखते हैं, माँ का प्यार वो फूल है जो कभी मुरझाता नहीं, वो लोग किस्मत वाले हैं जिनकी माँ मौजूद है, इसलिए उनका हमेशा रिस्पेक्ट करते रहिए और प्रोग्राम इन्हें बहुत पसंद आ रहा है।
0: साथ ही साथ गुलफ्सा सिद्दीकी ने हमें मेल किया है, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं आप दोनों को मेरा, यानी गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से है और ये कहती है कि मेरी अम्मी बहुत अच्छी है, लव यू मेरी अम्मी जान और अब मैं खुद अम्मी जान हूँ, तीन बच्चों की इनकी एक बेटी है और दो बेटे हैं और ये दिन मेरे लिए भी बड़ा खास है, ऐसा इन्होंने लिखा है।
1: जी नवीन मिश्रा ने हैप्पी मदर्स डे टू ऑल लिखा है और अर्पित शर्मा अनमोल नाम से मिला है, लिखते हैं, लवों पे उसकी कभी बदवा नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। इन्होंने बहुत खूबसूरत सा हमें मेल लिखकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: साथ ही साथ नीलू यादव जो हमें बंगला बाजार लखनऊ से मेल करती हैं, उन्होंने भी हमें मेल किया है, इन्हें प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं, इनकी प्यारी दो बेटियां हैं राधा और श्रेया भी सुन रही हैं, जय माता दी कहते हुए लिख रही हैं कि कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकते लेकिन उन्होंने माँ को बनाया जो निस्वार्थ प्यार और ममता की मूर्त है, मेरी हर कामयाबी मेरी एक हर खुशी की नींव मेरी माँ की दुआएं और उनके त्याग में शामिल है। और इन्होंने भी बहुत सारी बातें लिखी हैं अपनी प्यारी माँ के लिए, थैंक यू सो मच।
1: संध्या मिश्रा हमें अयोध्या से मेल कर रही हैं, फर्स्ट टाइम मेल कर रही हैं, गुड मॉर्निंग लिखा है, लाखों दिल की तरह एफएम रेनबो मेरे दिल में भी धड़कन, मेरे भी दिल की धड़कन है, मुझे सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और लिखती हैं, मॉम इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ वाओ, माँ के लिए कुछ भी कहा जाए कम है।
0: साथ ही साथ सिमरन सौरांजलि ने गुड मॉर्निंग कहा है और ये कह रही हैं कि स्वेच्छा मैम ये चॉकलेट आपके लिए, बहुत सारी चॉकलेट है और हैप्पी मदर्स डे सबको, कह रही है माँ घर का एक ऐसा फूल है जिसकी खुशबू से सारा घर महकता है और इन्होंने भी बहुत सी बातें लिखी हैं, थैंक यू सो मच सिमरन।
1: सुधांशु जी ने हमें बख्शी का तालाब लखनऊ से मेल किया है, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग लखनऊ, ना सिर्फ मनोरंजन तथा हमें अति महत्वपूर्ण जानकारियां भी देता है, सभी को इन्होंने मदर्स डे विश किया है, लिखते हैं, माँ तेरे चरणों की धूल भी चंदन से कम नहीं, तेरे साए में हर मुश्किल आसान लगती है, तू ही मेरी प्रेरणा और तू ही मेरी जन्नत है, माँ के आंचल में जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं।
0: और साथ ही साथ सुनील प्रांजल विकास नगर लखनऊ से मेल किया है, बहुत लंबी कविता माँ को समर्पित लिखी, कुछ लाइन जरूर पढ़ेंगे, माँ तुझे प्रणाम है, माँ धरती की भगवान है, बनाती बच्चों को इंसान है, माँ का दिल तो माँ के पास रहता है, मेरे दिल में माँ का दिल धड़कता है, बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी कर पूरी कविता नहीं पढ़ सकते।
1: और एक छोटे से ट्रैक का वक्त, प्यारा सा ट्रैक है, उसके बाद लौटेंगे हम आप सभी के बीच।

0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जी 9:55 का वक्त, और वक्त इतनी तेजी से भाग रहा है कि आप सभी के मेल्स को शामिल करने का वक्त आ गया है। अब एमके राज ने हमें, मुनीश कुमार राज ने लखीमपुर खीरी से मेल किया है, हैप्पी मदर्स डे लिखा है, कार्यक्रम पसंद आया, कुछ लाइन लिखी है, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, माँ से बढ़कर

0: कोई ना दूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मिलने
1: साथ
0: के
1: ही
0: लिए।
1: साथ बाबू अंसारी ने हमें मेल किया है। बाबू अंसारी ये हमें बाराबंकी से मेल कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और साथ ही साथ इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच।
0: वारिस अली खान ने अपनी जीवन से जुड़ी कुछ बातें लिखकर भेजी हैं और लिखते हैं, माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा, खुदा ने रख दी हो जिसके कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर पर काम क्या होगा। मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वारिस जी हमें इतनी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए।
1: और साथ ही साथ महेश बोहरा जी ने हमें मेल किया है, अजमेर राजस्थान से हमें ये सुन रहे हैं और इन्होंने हमें नमस्कार कहा है, आपको भी नमस्कार। आज मदर्स डे है और इस अवसर पर देश दुनिया की सभी मदर्स को शत शत नमन कर रहे हैं।
0: बाबू अंसारी हमें बाराबंकी से मेल करते हैं, गुड मॉर्निंग लिखा है, हैप्पी मदर्स डे लिखा है और लिखते हैं, माँ का प्यार अनमोल है।
1: और साथ ही साथ राममोहन गुप्ता जी ने फिर से चार लाइनें भेजी हैं तो हम जरूर पढ़ेंगे। लिखते हैं, माँ तो माँ ही होती है, इंसान हित सब कुछ कर जाती है, गीले पर सोना खाना। अच्छा, ये तो उसी की लाइनें आई थिंक। तो राममोहन गुप्ता जी लखीमपुर से इन्होंने मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। घनश्याम जी ने हमें फैजाबाद से मेल किया है, फैजाबाद रोड से मेल किया है और श्रद्धा पूर्वक सभी को मदर्स डे विश करते हैं।
1: नरेश जी ने हमें मेल किया, नरेश कुमार पारा लखनऊ से मेल कर रहे हैं, लिखते हैं, ए माँ तेरे लिए तो हर दिन मदर्स डे है क्योंकि आपका प्यार हर दिन मुझे संभालता है, या माँ मेरे लिए मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं, आपके साथ बिताया हर दिन खास है, या थोड़ा भावुक अंदाज में इन्होंने माँ के लिए बहुत सारे प्यार भेजा है।
0: जी जी। और हमारे आज के सेगमेंट का लास्ट मेल आ चुका है आयुषी मौर्य का, माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने तो पूरी जिंदगी लिख दी, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मॉम, उन्नाव से इन्होंने मेल किया है आयुषी मौर्य
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया लिसनर्स इतने सारे मेल भेजने के लिए और हमें इतना सारा प्यार करने के लिए।
0: और अब एक ट्रैक चलते चलते मैं स्वेच्छा आपसे विदा लेती हूँ, होगी किसी और दिन किसी और वक्त आपसे हमारी मुलाकात।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

श्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत परिवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रदेश के आगरा जिले के बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में 1 बच्चा और 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहे एक टैंकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें 3 लोग दब गए और मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में 2 अन्य व्यक्ति घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आईपीएल क्रिकेट में कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। 230 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम 152 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। गुजरात टाइटंस के लिए रशीद खान ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। राशिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल में आज चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम मोर पंख। अपरिचित सुप्रसिद्ध लेखक नाटककार उपन्यासकार मोहन राकेश की कहानी। वाचन संपादन और प्रस्तुति है सुरेंद्र राजेश्वरी जी की।

मोर पंख के आज की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओं, आइए आज आपको सुनवाते हैं सुप्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, उपन्यासकार, नाटककार मोहन राकेश की लिखी हुई एक कहानी, जिसका शीर्षक है अपरिचित।

कोहरे की वजह से खिड़कियों के शीशे धुंधले पड़ गए थे। गाड़ी 40 की रफ्तार से सुनसान अंधेरे को चीरती चली जा रही थी। खिड़की से सिर सटाकर भी बाहर कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर भी मैं देखने की कोशिश कर रहा था। कभी किसी पेड़ की हल्की गहरी रेखा ही गुजरती नजर आ जाती तो कुछ देख लेने का संतोष होता। मन को उलझाए रखने के लिए इतना ही काफी था। आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। गाड़ी को जाने कितनी देर बाद कहीं जाकर रुकना था। जब और कुछ दिखाई न देता तो अपना प्रतिबिंब तो कम से कम देखा ही जा सकता था। अपने प्रतिबिंब के अलावा और भी कई प्रतिबिंब थे। ऊपर की बर्थ पर सोए व्यक्ति का प्रतिबिंब अजब बेबसी के साथ हिल रहा था। सामने बर्थ पर बैठी स्त्री का प्रतिबिंब बहुत उदास था। उसकी भारी बल गई पल भर के लिए ऊपर उठती फिर झुक जाती। आकृतियों के अलावा कई बार नई नई आवाजें ध्यान बढ़ा देती जिससे पता चलता गाड़ी पुल से जा रही है या मकानों की कतार के पास से गुजर रही है। बीच में सहसा इंजन की चीख सुनाई दे जाती जिससे अंधेरा और एकांत और गहरे महसूस होने लगते। मैंने घड़ी में वक्त देखा 11:15 बजे थे। सामने बैठी स्त्री की आंखें बहुत सुनसान थी। बीच बीच में उनमें एक लहर सी उठती और विलीन हो जाती। वो जैसे आंखों से देख नहीं रही थी सोच रही थी। उसकी बच्ची जिसे फर के कंबलों में लपेट कर सुलाया गया था जरा जरा कुनमुनाने लगी। उसकी गुलाबी टोपी सिर से उतर गई थी। उसने दो एक बार पैर पटके अपनी बधी हुई मुठ्ठियां ऊपर उठाई और रोने लगी। स्त्री की सुनसान आंखें सहसा उमड़ आईं। उसने बच्चे के सिर पर रखी टोपी ठीक कर दी और उसे कंबलों समेत उठाकर छाती से लगा लिया। मगर इससे बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। उसने उसे हिलाकर और दुलारकर चुप कराना चाहा, मगर वो फिर भी रोती रही। इस पर उसने कंबल थोड़ा हटाकर बच्चे के मुंह में दूध दे दिया और उसे अच्छी तरह अपने साथ सटा लिया। मैं फिर खिड़की से सिर सटाकर बाहर देखने लगा। दूर बत्तियों की कतार नजर आ रही थी। शायद कोई आबादी थी या सिर्फ सड़क ही थी। गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी और इंजन बहुत पास होने से कोहरे के साथ धुआं भी खिड़की के शीशों पर जमता जा रहा था। आबादी या सड़क जो भी वो थी अब धीरे धीरे पीछे रही जा रही थी। शीशे में दिखाई देते प्रतिबिंब पहले से गहरे हो गए थे। स्त्री की आंखें मूंद गई थी और ऊपर लेटी व्यक्ति की बांह जोर जोर से हिल रही थी। शीशे पर मेरी सांस के फैलने से प्रतिबिंब और धुंधले हो गए यहां तक कि धीरे धीरे सब प्रतिबिंब अदृश्य हो गए। मैंने तब रुमाल निकालकर शीशे को अच्छी तरह पोंछ दिया। स्त्री ने आंखें खोल ली थी और एकटक सामने देख रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी रेखा फैली थी जो ठीक मुस्कुराहट नहीं थी। मुस्कुराहट से बहुत कम व्यक्त उस रेखा में कहीं गंभीरता भी थी और अवसाद भी। जैसे वह अनायास उभर आई किसी स्मृति की रेखा थी। उसके माथे पर हल्की सी सिकुड़न पड़ गई थी। बच्चे जल्दी ही दूध से हट गई। उसने सिर उठाकर अपना बिना दांत का मुंह खोल दिया और किलकारी भरती हुई मां की छाती पर मुट्ठियों से चोट करने लगी। दूसरी तरफ से आती एक गाड़ी तेज रफ्तार से पास से गुजरी तो वो जरा सहम गई, मगर गाड़ी के निकलते ही और भी मुंह खोलकर किलकारी भरने लगी। बच्ची का चेहरा गदराया हुआ था और उसकी टोपी के नीचे से भूरे रंग के हल्के हल्के बाल नजर आ रहे थे। उसकी नाक जरा छोटी थी पर आंखें माँ की ही तरह गहरी और फैली हुई थी। माँ के गाल और कपड़े नोच कर उसकी आंखें मेरी तरफ घूम गई और वो बाहें हवा में पटकती हुई मुझे अपनी किलकारियों का निशाना बनाने लगी। स्त्री की पलकें उठी और उसकी उदास आंखें क्षण भर मेरी आंखों से मिली रही। मुझे उस क्षण भर के लिए लगा कि मैं एक ऐसे क्षितिज को देख रहा हूं जिसमें गहरी सांझ के सभी हल्के गहरी रंग झिलमिला रहे हैं। बच्चे मेरी तरफ देखकर

बहुत हाथ पटक रही थी, इसलिए मैंने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए और कहा, आओ बेटा आओ। मेरे हाथ पास आ जाने से बच्चे के हाथों का हिलना बंद हो गया और उसके होंठ रुआंसे हो गए। स्त्री ने बच्चे के होंठों को अपने होंठों से छुआ और कहा, जा बिट्टू, जाएगी उनके पास। लेकिन बिट्टू के होंठ और रुआंसे हो गए और वो माँ के साथ सट गई। गैर आदमी से डरती है, मैंने मुस्कुराकर कहा और हाथ हटा लिए। स्त्री के होंठ भींच गए और माथे की खाल में थोड़ा खिंचाव आ गया। उसकी आंखें जैसे अतीत में चली गईं, फिर सहसा वहां से लौट आईं और वो बोली, नहीं डरती नहीं है, इसे दरअसल आदत नहीं है, यह आज तक या तो मेरे हाथों में रही या नौकरानी के। और वो उसके सिर पर झुक गई। बच्ची उसके साथ सटकर आंखें झपकने लगी। महिला उसे हिलाती हुई थपकियां देने लगी। बच्चे ने आंखें मूंद ली। महिला उसकी तरफ देखती हुई जैसे चूमने के लिए होंठ बढ़ाए उसे थपकियां देती रही। फिर एकाएक उसने झुककर उसे चूम लिया। बहुत अच्छी है हमारे बिट्टू, झट से सो जाती है, ये उसने जैसे अपने से कहा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उदास सा उत्साह भर रहा था। कितनी बड़ी है बच्ची, मैंने पूछा। 10 दिन बाद पूरे 4 महीने की हो जाएगी, वो बोली, पर देखने में भी उससे छोटी लगती है। मैंने आंखों से उसकी बात का समर्थन किया। उसके चेहरे में एक अपनी सी सहजता थी, विश्वास और सादगी की। मैंने सोई ही बच्ची के गाल को जरा सा सहला दिया। स्त्री का चेहरा और भावपूर्ण हो गया। लगता है आपको बच्चों से बहुत प्यार है, वो बोली। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी आंखें उसके चेहरे से हट गईं। बिजली की बत्ती के पास एक कीड़ा उड़ रहा था। मेरे, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, अभी तो कोई नहीं, मगर मतलब ब्याह हुआ है, अभी बच्चे बच्चे नहीं हैं। वो मुस्कुराई। आप मर्द लोग तो बच्चों से बचे ही रहना चाहते हैं ना? मैंने होंठ से कोड़ लिए और कहा, नहीं ये बात नहीं है, हमारे ये तो बच्चे को छूते भी नहीं। वो बोली, कभी 2 मिनट के लिए भी उठाना पड़ जाए तो झल्लाने लगते हैं। अब तो खैर वो इस मुसीबत से छूटकर बाहर ही चले गए हैं। और सहसा उसकी आंखें छलछला आईं। रुलाई की वजह से उसके होंठ बिल्कुल उस बच्चे जैसे हो गए थे। फिर सहसा उसके होंठों पर मुस्कुराहट लौट आई, जैसा अक्सर सोए ही बच्चों के साथ होता है। उसने आंखें झपकर अपने को सहेज लिया और बोली, वो डॉक्टरेट के लिए इंग्लैंड चले गए हैं, मैं उन्हें मुंबई में जहाज पर चढ़ाकर आ रही हूँ। वैसे 6-8 महीने की तो बात है, फिर मैं भी उनके पास चली जाऊंगी। फिर उसने ऐसी नजर से मुझे देखा जैसे उसे शिकायत हो कि मैंने उसकी इतनी व्यक्तिगत बात उससे क्यों जान ली। आप बाद में अकेली जाएंगी? मैंने पूछा। इससे तो आप अभी साथ चली जाती? उसके होंठ से कुड़ गए और आंखें फिर अंतर्मुख हो गईं। वो कई पल अपने में डूबी रही और उसी भाव से बोली, साथ तो नहीं जा सकती थी क्योंकि अकेले उनके जाने की भी सुविधा नहीं थी, लेकिन उनको मैंने किसी तरह भेज दिया। चाहती थी कि उनकी कोई तो चाह मुझसे पूरी हो जाए। देशी के बाहर जाने की बहुत इच्छा थी। अब 6-8 महीने में अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसा बचाऊंगी और थोड़ा बहुत कहीं से उधार लेकर अपने जाने का इंतजाम करूंगी। उसने सोच में डूबती उतराती अपनी आंखों को सहसा सचेत कर लिया और फिर कुछ क्षण शिकायत की नजर से मुझे देखती रही। फिर बोली, अभी बिट्टू भी बहुत छोटी है ना, 6-8 महीने में ये बड़ी हो जाएगी और मैं भी तब तक थोड़ा और पढ़ लूंगी। दीशी की बहुत इच्छा है कि मैं MA कर लूं, मगर मैं ऐसी जड़ और नकारा हूं, उनकी कोई भी चाह पूरी नहीं कर पाती, इसलिए इस बार उन्हें भेजने के लिए मैंने अपने सब गहने बेच दिए हैं। अब मेरे पास बस मेरी बिट्टू है और कुछ नहीं।

बाहर वही सुनसान अंधेरा था, वही लगातार सुनाई देती इंजन की भक भक। शीशे से आंख गड़ा लेने पर भी दूर तक वीरान की ही वीरान की नजर आती थी, मगर उस स्त्री की आंखों में जैसे दुनिया भर की वत्सलता सिमट आई थी। वो फिर कई क्षण अपने में डूबी रही, फिर उसने एक उसास ली, बच्ची को अच्छी तरह कंबल में लपेट कर सीट पर लेटा दिया। ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ आदमी खर्राटे भर रहा था। एक बार करवट बदलते हुए वो नीचे गिरने को हुआ, पर सहसा हड़बड़ाकर संभल गया। फिर कुछ ही देर में वो और जोर से खर्राटे भरने लगा। लोगों को जाने सफर में कैसे इतनी गहरी नींद आ जाती है, वो स्त्री बोली। मुझे दो दो रातें सफर करना हो तो भी मैं एक पल नहीं सो पाती, अपनी अपनी आदत होती है। हाँ, आदत की ही बात है, मैंने कहा। कुछ लोग बहुत निश्चिंत होकर जीते हैं और कुछ होते हैं कि बगैर चिंता के जी ही नहीं सकते। और वह हंसती, उसकी हंसी का स्वर भी बच्चों जैसा ही था। उसके दांत बहुत छोटे छोटे और चमकीले थे। मैंने भी उसकी हंसी में साथ दिया। मेरी बहुत खराब आदत है, वो बोली, मैं बात बेबात के सोचती रहती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। ये मुझसे कहते हैं कि मुझे लोगों से मिलना जुलना चाहिए, खुलकर हंसना और बात करना चाहिए, मगर इनके सामने मैं ऐसे गुमसुम हो जाती हूँ कि क्या कहूँ। वैसे और लोगों से भी मैं ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन इनके सामने तो ऐसी चुप्पी छा जाती है जैसे मुंह में जबान ही नहीं है। अब देखे ना, इस वक्त कैसे लतर लतर बात कर रही है। और वो मुस्कुराई, उसके चेहरे पर हल्के से संकोच की रेखा आ गई। रास्ता काटने के लिए बात करना जरूरी हो जाता है, मैंने कहा, खासतौर से तब जब नींद ना आ रही हो। उसकी आंखें पल भर फैली रही, फिर वो गर्दन जरा झुकाकर बोली, ये कहते हैं कि जिसके मुंह में जबान ही ना हो उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे काटी जा सकती है। ऐसे इंसान में और एक पालतू जानवर में क्या फर्क है। मैं हजार चाहती हूँ कि इन्हें खुश दिखाई दूं और इनके सामने कोई ना कोई बात करती रहूं, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। इन्हें फिर गुस्सा आ जाता है और मैं रो देती हूँ। इन्हें मेरा रोना बहुत बुरा लगता है, ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक आए, जिन्हें उसने अपनी साड़ी के पल्ले से पोंछ लिया। मैं बहुत पागल हूँ, फिर बोली, ये जितना मुझे टोकते हैं ना, मैं उतना ही ज्यादा रोती हूँ। दरअसल ये मुझे समझ ही नहीं पाते, मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता, फिर जाने क्यों ये मुझे बात करने के लिए मजबूर करते हैं। और फिर माथे को हाथ से दबाई हुई बोली, आप भी अपनी पत्नी से जबरदस्ती बात करने के लिए कहते हैं। मैंने पीछे टेक लगाकर कंधे से कोड़ लिए और हाथ बगलों में दबाई बत्ती के पास उड़ते कीड़े को देखने लगा। फिर सिर को जरा सा झटक कर मैंने उसकी तरफ देखा, वो उत्सुक नजर से मेरी

देख रही थी। मैंने मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा, मुझे ये कहने का कभी मौका ही नहीं मिल पाता। मैं बल्कि 5 साल से ये चाह रहा हूँ कि वो ज़रा कम बात किया करे। मैं समझता हूँ कि कई बार इंसान चुप रहकर ज़्यादा बात कह जाता है। जबान से कही बात में वो रस नहीं होता जो आँख की चमक से या होंठों के कंपन से या माथे की एक लकीर से कही गई बात में होता है। मैं जब उसे समझाना चाहता हूँ तो मुझे विस्तार पूर्वक बता देती है कि ज़्यादा बात करना इंसान के निश्चलता का प्रमाण है और कि मैं इतने सालों में अपने प्रति उसकी भावना को समझ ही नहीं सका। वो दरअसल कॉलेज में एक लेक्चरर है और अपनी आदत की वजह से घर में भी लेक्चर देती रहती है। वो थोड़ी देर दोनों हाथों में अपना मुंह छिपाए रही, फिर बोली, ऐसा क्यों होता है? ये मेरी समझ में नहीं आता। मुझे देशी से यही शिकायत है कि वो मेरी बात नहीं समझ पाते। मैं कई बार उनके बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर उनसे बात करना चाहती हूँ। कई बार उसके घुटनों पर सिर रखकर मुदी हुई आंखों से उनसे कितना कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं ये सब गुड़ियों का खेल है। उनकी पत्नी को जीता जागता इंसान होना चाहिए और मैं इंसान बनने की बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं बन पाती, कभी नहीं बन पाती। इन्हें मेरी कोई आदत अच्छी लगती ही नहीं है। मेरा मन होता है कि चांदनी रात में खेतों में घूमूं या नदी में पैर डालकर घंटों बैठी रहूं, मगर ये कहते हैं ये सब आइडियल मन की वृत्तियां हैं। इन्हें क्लब, संगीत सभाएं और डिनर पार्टी अच्छी लगती है। मैं इनके साथ वहां जाती हूं तो मेरा दम घुटने लगता है, मुझे वहां जरा भी अपनापन महसूस नहीं होता। ये कहते हैं कि तू पिछले जन्म में मेढकी थी, तुझे क्लब में बैठने के बजाय खेतों में मेढकों की आवाजें सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि मैं इस जन्म में भी मेढकी हूँ, मुझे बरसात में भीगना बहुत अच्छा लगता है और भीग कर मेरा मन कुछ न कुछ गुनगुनाने को करने

उस थोड़े से समय में ही मुझे उसके चेहरे का उतार चढ़ाव काफी परिचित लगने लगा था। उसकी बात सुनते ही मेरे मन पर हल्की उदासी छाने लगी। हालांकि मैं जानता था कि वो कोई भी बात मुझसे नहीं कर रही है, वो अपने से बात करना चाहती है और मेरी मौजूदगी उसके लिए सिर्फ एक बहाना है। मेरी उदासी भी उसके लिए ना होकर अपने लिए थी, क्योंकि बात उससे करते हुए भी मुख्य रूप से मैं सोच अपने विषय में रहा था। मैं 5 साल से मंजिल दर मंजिल विवाहित जीवन से गुजरता आ रहा था, रोज यही सोचते हुए कि शायद आने वाला कल जिंदगी के इस ढांचे को बदल देगा। सतह पर हर चीज ठीक थी, कहीं कुछ गलत नहीं था, मगर सतह से नीचे जीवन कितनी उलझनों और गांठों से भरा था। मैंने विवाह के पहले दिनों में ही जान लिया था कि नलिनी मुझसे विवाह करके सुखी नहीं हो सकी, क्योंकि मैं उसकी कोई भी महत्वाकांक्षा पूरी करने में सहायक नहीं हो सकता। वो एक भरा पूरा घर चाहती थी जिसमें उसका शासन हो और ऐसा सामाजिक जीवन जिसमें उससे महत्व का दर्जा प्राप्त हो। वो अपने से स्वतंत्र अपने पति के मानसिक जीवन की कल्पना नहीं करती थी। उसे मेरी भटकने की वृत्ति और साधारण का मोह मानसिक विकृतियां लगती थीं, जिन्हें वो अपने अधिक स्वस्थ जीवन दर्शन से दूर करना चाहती थी। उसने इस विश्वास के साथ जीवन आरंभ किया था कि वो मेरी त्रुटियों की क्षतिपूर्ति करती हुई बहुत शीघ्र मुझे सामाजिक दृष्टि से सफल व्यक्ति बनने की दिशा में ले जाएगी। उसकी दृष्टि में ये मेरे संस्कारों का दोष था जो मैं इतना अंतर्मुख रहता था और इधर उधर मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करता था। वो इस परिस्थिति को सुधारना चाहती थी, पर परिस्थिति सुधरने की जगह और बिगड़ती चली गई। वो जो कुछ चाहती थी वो मैं नहीं कर पा रहा था और जो कुछ मैं चाहता था वो उससे होता नहीं था। इससे हम में अक्सर चकचक होने लगती थी और कई बार दीवारों से सर टकराने की नौबत आ गई थी। मगर यह सब हो चुकने पर नलिनी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाती थी और उसे फिर मुझसे ये शिकायत होती थी कि मैं 2-2 दिन अपने को उन साधारण घटनाओं के प्रभाव से मुक्त क्यों नहीं कर पाता। मगर मैं 2-2 दिन क्या, कभी उन घटनाओं के प्रभाव से मुक्त ही नहीं हो पाता। और रात को जब वो सो जाती थी तो घंटों तकिए में मुंह छिपाए कराहता रहता था। नलिनी आपसी झगड़े को उतना अस्वाभाविक नहीं समझती थी जितना मेरे रात भर जागने को, और उसके लिए मुझे नर्व टॉनिक लेने की सलाह दिया करती थी। विवाह के पहले 2 वर्ष इसी तरह बीते थे और उसके बाद हम अलग अलग जगह काम करने लगे। हालांकि ये समस्या ज्यों की त्यों बनी रही और जब भी हम इकट्ठे होते वही पुरानी जिंदगी लौट आती थी। फिर भी नलिनी का यह विश्वास अभी कम नहीं हुआ था कि कभी न कभी मेरे सामाजिक संस्कारों का उदय अवश्य होगा और तब हम साथ रहकर सुखी विवाहित जीवन व्यतीत करेंगे। आप कुछ सोच रहे हैं, उस स्त्री ने अपनी बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैंने सहसा अपने को सहेजा और कहा, हाँ मैं आप ही की बात को लेकर सोच रहा था। कुछ लोग होते हैं जिनसे दिखावटी शिष्टाचार आसानी से नहीं उड़ा जाता, आप भी शायद उन्हीं लोगों में से हैं। मैं नहीं जानती, वो बोली, मगर इतना जानती हूँ कि मैं बहुत से परिचित लोगों के बीच अपने को अपरिचित, बेगाना और अनमेल अनुभव करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझ में ही कुछ कमी है। मैं इतनी बड़ी होकर भी

वो कुछ नहीं जान समझ पाई जो लोग छुटपन में ही सीख जाते हैं। देशी का कहना है कि मैं सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल मिसफिट हूँ। आप भी यही समझती हैं? मैंने पूछा। कभी समझती हूँ, कभी नहीं भी समझती, वो बोली। एक खास तरह के समाज में मैं जरूर अपने को मिसफिट अनुभव करती हूँ, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बीच जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्याह से पहले मैं दो एक बार कॉलेज की पार्टियों के साथ पहाड़ों पर घूमने चली गई थी। वहाँ सब लोगों को मुझसे यही शिकायत होती थी कि मैं जहाँ बैठ जाती हूँ वहीं के हो रहती हूँ। मुझे पहाड़ी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। मैं उनके घर के लोगों से भी बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती। एक पहाड़ी परिवार की मुझे आज तक याद है। उस परिवार के बच्चे मुझसे इतना घुल मिल गए थे कि मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें छोड़कर यहाँ चली आई। मैं कुल 2 घंटे उन लोगों के पास रही। 2 घंटे में मैंने उन्हें नहलाया धुलाया भी और उनके साथ खेलती भी रही। बहुत ही अच्छे बच्चे थे वो। हाय, उनके चेहरे इतने लाल थे कि क्या कहूँ। मैंने उनकी माँ से कहा कि वो अपने छोटे लड़के कृष्णु को मेरे साथ भेज दे। वो हंसकर बोली कि तुम सभी को ले जाओ, यहाँ कौन इसके लिए मोती रखे हैं। यहाँ तो 2 साल में इसकी हड्डियाँ निकल आएंगी, वहाँ खा पी कर अच्छे तो रहेंगे कम से कम। मुझे उसकी बात सुनकर रुलाई आने को हुई। माँ अकेले होती तो शायद कई दिनों के लिए उन लोगों के पास रह जाती। ऐसे लोगों में जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो आपको भी लग रहा होगा कि कितने अजीब हूँ मैं ना। ये कहा करते हैं कि मुझे किसी अच्छे मनोविद से अपना विश्लेषण कराना चाहिए, नहीं तो किसी दिन मैं पागल होकर पहाड़ों पर भटकती फिरूंगी। ये तो अपने अपनी बनावट की बात है, मैंने कहा। मुझे खुद आदिम संस्कारों के लोगों के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं आज तक एक जगह घर बनाकर नहीं रह सका और नहीं आशा है कि कभी रह सकूंगा। मुझे अपनी जिंदगी की जो रात सबसे ज्यादा याद आती है वो रात मैंने पहाड़ी गुजरों की एक बस्ती में बिताई थी। उस रात उस बस्ती में एक ब्याह था, इसलिए सारी रात वो लोग नाचते रहे गाते रहे।

आपको सचमुच हर तरह की जिंदगी अच्छी लगती है? उसने कुछ आश्चर्य और अविश्वास के साथ पूछा। आपको शायद खुशी हो रही है कि पागल होने के उम्मीदवार आप अकेले ही नहीं हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। वो भी मुस्कुराई। उसकी आंखें भावनापूर्ण हो उठी। उस एक क्षण में मुझे उन आंखों में न जाने कितना कुछ दिखाई दिया। करुणा, क्षोभ, ममता, आर्द्रता, ग्लानी, भय, असमंजस और स्नेह। उसके होंठ कुछ कहने के लिए कांपे, लेकिन कांप कर ही रह गए। मैं भी चुपचाप उसे देखता रहा। कुछ क्षणों के लिए मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है और मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा था और आगे क्या करना चाहता था। सहसा उसकी आंखों में फिर वही सोनापन भरने लगा और क्षण भर में ही वो इतना बढ़ गया कि मैंने उसकी तरफ से आंखें हटा ली। बत्ती के पास उड़ता कीड़ा उसके साथ सटकर झुलस गया था। बच्ची नींद में मुस्कुरा रही थी। खिड़की के शीशे पर इतनी धुंध जमा हो गई थी कि उसमें अपना चेहरा भी दिखाई नहीं देता। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो रही थी। कोई स्टेशन आ रहा था। दो एक बत्तियां तेजी से निकल गईं। मैंने खिड़की का शीशा उठा दिया। बाहर से आती बर्फानी हवा के स्पर्श से स्नायुओं को थोड़ा सचेत कर दिया। गाड़ी एक बहुत नीचे प्लेटफॉर्म के पास आकर खड़ी हो रही थी। यहां कहीं थोड़ा पानी मिल जाएगा, मैंने चौंककर देखा कि वो अपनी टोकरी में से कांच का गिलास निकालकर अनिश्चित भाव से हाथ में लिए है। उसके चेहरे की रेखाएं पहले से गहरी हो गई थीं। पानी आपको पीने के लिए चाहिए? मैंने पूछा। हाँ, कुल्ला करूंगी और पीऊंगी भी। न जाने क्यों होंठ कुछ चिपक से रहे हैं। बाहर इतनी ठंड है, फिर भी देखता हूं अगर यहां कोई नलवल हो तो। मैंने गिलास उसके हाथ से ले लिया और जल्दी से प्लेटफॉर्म पर उतर गया। न जाने कैसा मनहूस स्टेशन था कि कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही हवा के झोंकों से हाथ पैर सुन्न होने लगे। मैंने कोट के कॉलर ऊंचे कर लिए। प्लेटफॉर्म के जंगली के बाहर से फैलकर ऊपर आए दो एक पेड़ हवा में सरसरा रहे थे। इंजन के भाप छोड़ने से लंबे शूं की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद वहां गाड़ी सिग्नल न मिलने की वजह से रुक गई थी। दूर कई डिब्बे के पीछे एक नल दिखाई दिया, तो मैं तेजी से उस तरफ चल दिया। ईंटों के प्लेटफॉर्म पर अपने जूते का शब्द मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने चलते चलते गाड़ी की तरफ देखा। किसी खिड़की से कोई चेहरा बाहर नहीं झांक रहा था। मैं नल के पास जाकर गिलास में पानी भरने लगा। तभी हल्के से सीटी देकर गाड़ी एक झटके के साथ चल पड़ी। मैं भरा हुआ पानी का गिलास लिए अपने डब्बे की तरफ दौड़ा। दौड़ते हुए मुझे लगा कि मैं उस डब्बे तक नहीं पहुंच पाऊंगा और सर्दी में उस अंधेरे और सुनसान प्लेटफॉर्म पर ही मुझे बिना सामान के रात बितानी होगी। ये सोचकर मैं और तेज दौड़ने लगा। किसी तरह अपने डब्बे के बराबर पहुंच गया। दरवाजा खुला था और वो दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने हाथ

उठाकर गिलास मुझसे ले लिया। फुटबोर्ड पर चढ़ते हुए एक बार मेरा पैर जरा सा फिसला, मगर अगले ही क्षण मैं स्थिर होकर खड़ा हो गया। इंजन तेज होने की कोशिश में हल्के हल्के झटके दे रहा था और ईंटों के प्लेटफार्म की जगह अब नीचे स्पष्ट गहराई दिखाई देने लगी थी। अंदर आ जाइए, उसके ये शब्द सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे फुटबोर्ड से आगे भी कहीं जाना है। डब्बे के अंदर कदम रखा तो मेरे घुटने जरा जरा कांप रहे थे। अपनी जगह पर आकर मैंने टांगे सीधी करके पीछे टेक लगा ली। कुछ पल बाद आंखें खोली तो लगा कि वो इस बीच मुंह धो आई है। फिर भी उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा रही थी। मेरे होंठ सूख रहे थे, फिर भी मैं थोड़ा मुस्कराया। क्या बात है, आपका चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने पूछा। मैं कितनी मनहूस हूँ, कहकर उसने अपना निचला होंठ जरा सा काट लिया। क्यों, अभी मेरी वजह से आपको कुछ हो जाता तो? ये खूब सोचा आपने। नहीं, मैं हूं ही ऐसी, वो बोली। जिंदगी में हर एक को दुख ही तो दिया है, अगर कहीं आप ना चढ़ पाते तो? उसने होंठ जरा सिकुड़े। तो मुझे पता नहीं, पर उसने खामोश होकर आंखें झुका ली। मैंने देखा कि उसकी सांस जल्दी जल्दी चल रही है। महसूस किया कि वास्तविक संकट की अपेक्षा कल्पना का संकट कितना बड़ा और खतरनाक होता है। शीशा उठा रहने से खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। मैंने खींचकर शीशा नीचे कर दिया। आप क्यों गए पानी लाने के लिए, आपने मना क्यों नहीं कर दिया, उसने पूछा। उसके पूछने के लहजे से मुझे हंसी आ गई। आप ही ने तो कहा था, मैं तो मूर्ख हूँ, कुछ भी कह देती हूँ। आपको तो सोचना चाहिए था ना। अच्छा, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इससे उसके मुरझाए होंठ पर भी मुस्कुराहट आ गई। हाँ, आप भी कहेंगे कैसी लड़की है, उसने आंतरिक भाव के साथ कहा। सच कहती हूँ, मुझे जरा भी अकल नहीं। इतनी बड़ी हो गई हूँ पर अकल रत्ती भर नहीं। सच, मैं फिर हंस दिया। आप क्यों हंस रहे हैं, उसके स्वर में फिर शिकायत का स्पर्श आ गया। मुझे हंसने की आदत है, मैंने कहा। हंसना अच्छी आदत नहीं है, मुझे इस पर फिर हंसी आ गई। वो शिकायत भरी नजर से मुझे देखती रही। गाड़ी की रफ्तार फिर तेज हो गई। ऊपर की बर्थ पर लेटा आदमी सहसा हड़बड़ाकर उठ बैठा और जोर जोर से खांसने लगा। खांसी का दौरा शांत होने पर उसने कुछ पल छाती को हाथ से दबाए रखा, फिर भारी आवाज में पूछा, क्या बजा है। 12:45, मैंने उसकी तरफ देखकर उत्तर दिया। कुल 12:45, उसने निराश स्वर में कहा और फिर लेट गया। कुछ ही देर में वो फिर खर्राटे भरने लगा। आप भी थोड़ी देर सो जाइए, वो पीछे टेक लगाए शायद कुछ सोच रही थी या केवल देख रही थी। आपको नींद आ रही है ना, आप सो जाइए, मैंने कहा। मैंने आपसे कहा था कि मुझे गाड़ी में नींद नहीं आती, आप सो जाइए। मैंने लेटकर कंबल ले लिया। मेरी आंखें देर तक ऊपर की बत्ती को देखती रहीं, जिसके साथ झुलसा हुआ कीड़ा चिपक कर रह गया था। रजाई भी ले लीजिए, काफी ठंड है, उसने कहा। नहीं, अभी जरूरत नहीं है, मैं बहुत से गर्म कपड़े पहने हुए। ले लीजिए। नहीं, बाद में ठिठुरते रहिएगा। नहीं, ठिठुरूंगा नहीं, मैंने कंबल गले तक लपेटते हुए कहा। और थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होती रहे तो अच्छा लगता है। बत्ती बुझा दूं, कुछ देर बाद उसने पूछा। नहीं, रहने दीजिए। नहीं, बुझा देती हूँ, ठीक से सो जाइए, और उसने उठकर बत्ती बुझा दी। मैं काफी देर अंधेरे में छत की तरफ देखता रहा, फिर मुझे नींद आने लगी। शायद रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी जब इंजन के भौंपों की आवाज से मेरी नींद खुली। वो आवाज कुछ ऐसी भारी थी कि मेरे सारे शरीर में एक झुरझुरी सी भर गई। पिछले किसी स्टेशन पर इंजन बदल गया था। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी तो मैंने सिर थोड़ा ऊंचा उठाया। सामने की सीट खाली थी। वो स्त्री न जाने किस स्टेशन पर उतर गई थी। इसी स्टेशन पर न उतरी हो, ये सोचकर मैंने खिड़की का शीशा उठा दिया और बाहर देखा। प्लेटफॉर्म बहुत पीछे रह गया था और बत्तियों की कतार के सिवा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने शीशा फिर नीचे खींच लिया। अंदर की बत्ती अब भी बुझी हुई थी। बिस्तर में नीचे को सरकते हुए मैंने देखा कि कंबल के अलावा मैं अपनी रजाई भी लिए हूँ, जिसे अच्छी तरह कंबल के साथ मिला दिया गया है। गर्मी की कई एक सिरहने एक साथ शरीर में भर गईं।

अपरिचित। श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक, नाटककार, उपन्यासकार मोहन राकेश की लिखी हुई ये कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। अब मोर पंख के इस कार्यक्रम से सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, अगले अंक में फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोर पंख। अपरिचित सुप्रसिद्ध लेखक, नाटककार, उपन्यासकार मोहन राकेश की कहानी। वाचन, संपादन और प्रस्तुति थी सुरेंद्र राजेश्वरी जी की।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है रते आशिके जगा,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

दोस्तों 100.7 FM रेनबो पर आप है विनय के साथ, और आप जानते हैं कि आज है दिन रविवार। हेल्थ एंड फिटनेस का विशेष कार्यक्रम हम आपके लेकर आते हैं दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच, और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, डायबिटीज़ एवं हाइपरटेंशन। और इस विषय पर आप हमसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद रहेंगे दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर मोहम्मद तौफीक खान जी, जो कि MBBS MD है मेडिसिन विभाग से। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर है 0522-2238-852 और दूसरा नंबर है 0522-2238-845। इसी के साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं FM रेनबो हेल्पलाइन। दूसरा हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। तो इस कार्यक्रम से जुड़ना ना भूलें।

नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीला मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में बौद्ध दर्शन की हमें फिर से याद दिलाई है, हम सभी को प्रेरित किया है कि एक बार फिर से हम बौद्ध दर्शन को समझें और इसकी समसामयिकता क्या है ये जानें।

0: तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वो अंश जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बौद्ध दर्शन को एक बार फिर से हम सभी को याद दिलाया है।
1: साथियों, आज दुनिया जिस तरह के तनावों और संघर्षों से गुजर रही है, ऐसे समय में बुद्ध के विचार और भी अहम हो गए हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति हमारे भीतर से शुरू होती है। उन्होंने बताया है कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय होती है। साथियों, दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे ड्रपोन ओजेर रिनपोचे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। यह संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर गर्व होता है। भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है। दूर दराज के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। साथियों, बौद्ध परंपरा हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान एक वृक्ष के नीचे मिला था। प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटका में कर्मा मोनेस्ट्री इसका अच्छा उदाहरण है। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र है जो 100 एकड़ में फैला है। इस वन में 700 से अधिक देशी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। साथियों, बुद्ध का संदेश सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज भी प्रासंगिक है और भविष्य के लिए भी जरूरी है। हम अपने जीवन में शांति बढ़ाएं, करुणा अपनाएं और संतुलन के साथ आगे बढ़ें।
0: तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द। और आइए अब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने दो विशेषज्ञों को और इनके माध्यम से आज इस विषय के बारे में हम अपनी समझ बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत कर रही हूँ प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम जी का। आप बौद्ध अध्ययन विभाग नव नालंदा महाविहार संस्कृति मंत्रालय नालंदा में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं स्वागत कर रही हूँ सतीश कुमार जी का। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका है और बौद्ध दर्शन की जो शिक्षा है वो आप युवाओं तक पहुंचाते हैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। सतीश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत साधुवाद।
0: बौद्ध दर्शन की जो समसामयिकता है वो क्या है, और ये मैं जानना चाहूंगी प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम आपसे।
3: देखिए, बौद्ध दर्शन स्थान और समय के कारण परिवर्तित नहीं होता, ये समसामयिक है
0: जी।
3: जिसको हम कहते हैं कि स्पेसियो टेम्पोरल गैप के कारण इसमें कोई परिवर्तन आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अब हम बौद्ध दर्शन है क्या, इस पे बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करते ही कहा था, यदा हवे पातु भवंति धम्मा आता पिनो जायतो ब्राह्मणस्य अथस कंखा बपयंति सब्बा यतो पजानाति सहेतु धम्मं। मतलब, जब धर्म का सही स्वरूप किसी भी ध्यानी के समक्ष प्रकट होता है
0: जी,
3: तो उसकी सारी शंकाएं खत्म हो जाती है और वो जान जाता है कि सारी चीजें हेतुओं से उत्पन्न है, कारण से उत्पन्न है
0: जी।
3: दूसरी जगह उन्होंने कहा कि द्वे इमे भिक्खवे देशेमी दुखंच दुख निरोधंच। भिक्षुओं, मैं केवल दो ही बात करता हूँ, इस संसार में दुख है और उस दुख का समाधान है। इसके बाद उनके एक प्रमुख शिष्य ने भगवान की बात को अपने सहयोगियों के समक्ष रखा, वो था, ये धम्मा हेतु पहवा तेसंग हेतु तथागत हुआ
0: जी।
3: तेसंग च यो निरोधो एवं वादी महासमनोति। ये जितने भी इस दुनिया में जो भी कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं, जो निर्मित चीजें हैं, वो सभी हेतुओं पे, कारण पे आधारित है
0: जी।
3: उस कारण को समझ लो, जान लो, समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने ऐसा कुछ कहा जिसकी प्रासंगिकता हर युग में, हर काल में और हर स्थान पे उतना ही समीचीन है
0: जी। यानी हर जगह वो दर्शन अभी भी है, वो शिक्षाएं अभी भी हैं जी। तो सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आधुनिक युग है, इसमें कॉर्पोरेट को और कॉर्पोरेट कल्चर को ऐसा देखते हैं कि भागदौड़ भरा एक कल्चर है और बहुत ही प्रतिस्पर्धा है और जिसमें बस किसी भी तरह हम जो हैं बहुत ज्यादा मोनेटाइजेशन के बारे में सोचते रहते हैं। आप क्योंकि ट्रेनिंग देते हैं बौद्ध

0: टीचिंग्स की कॉर्पोरेट्स को, तो मैं जानना चाहूंगी आपका अनुभव कि किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिलती है और आपको क्या लगता है ये क्यों जरूरी है।
1: जिंदगी की भाग दौड़ और धन कमाने की आपाधापी में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वह मानसिक रूप से विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होता जा रहा है, जिसमें मानसिक तनाव का होना बड़ा ही सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन मानसिक तनाव विभिन्न प्रकार की बीमारियों का मूल कारण बन जाता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट डिजीजेज रही हो, यहां तक कि स्ट्रोक, और कई बार तो डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि हम घर परिवार और रोजगार में सामंजस्य स्थापित करने में हम असमर्थ महसूस करने लगते हैं। और केवल कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही नहीं, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी और परिवार को जाने और समझे तो हम पाते हैं कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी हम कई मूल समस्याओं का सामना करते हैं जो विशेष रूप से मानसिक रूप से जुड़ी हुई है। हम लोग इफेक्टिव पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस तरह के विचार, उस तरह के थॉट्स हमारे मन में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आज का जो दौर हो गया है, एक तरफ हमें धन कमाना है, दूसरी तरफ हमें बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखना है, तीसरी तरफ परिवार और परिवार के सदस्यों में आपस में संतुलन बनाए रखना है, तो इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब मैं धम्म की तरफ देखता हूं, बुद्ध की तरफ देखता हूं, बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि सबसे पहले मस्तिष्क में विचार ही आते हैं
0: जी।
1: ये जो विचार आते हैं, विचार मनुष्य को प्रेरित करते हैं कोई एक्शन लेने पर, कोई ना कोई तो एक्शन होगा, क्योंकि जो विचार है वो एक बीज के जैसा है, अगर उस बीज को सही पानी मिल जाए, सही मिट्टी मिल जाए, सही मौसम मिल जाए, तो वो एक जो बीज है वो पौधा बन सकता है। लेकिन समस्या ये है, क्या उस बीज को मैं पहचान पाया, क्योंकि अगर वो जहरीला बीज है तो वृक्ष भी जहरीला होगा, और अगर वह अमृत तुल्य बीज है तो अमृत से भरा हुआ होगा जो केवल हमारे परिवार का नहीं समस्त समाज का कल्याण कर पाएगा। तो वो जो विचार है वो विचार एक्शन में तब्दील होगा, और जब एक्शन होगा तो उसका प्रतिफल भी आएगा। तो प्रतिफल दो तरह के होंगे, या तो सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे। अगर तो नकारात्मक प्रतिफल है तो हमारा जो प्रोसेस है वहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर हमें सकारात्मक महसूस हो रहा है तो फिर मैं रिपीट करूंगा एक्शन को। लेकिन अगर शिक्षा लेने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है तो शिक्षा को भी मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो ऐसे में जब रिपीट एक्शन होता है तो वो आदतों में तब्दील हो जाता है, फिर ये आदतें लगातार बनी रहती हैं, तो ये आदतें आपके चरित्र का निर्माण कर देती हैं। जब चरित्र लगातार बना रहता है तो वह आपके भाग्य का निर्माण कर देता है। तो यही बुद्ध हमें समझा रहे थे कि मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं अगर वो शुद्ध हैं तो मेरा आने वाला भविष्य शुद्ध हो सकता, पवित्र हो सकता है, लेकिन अगर मेरे विचार अशुद्ध हैं तो मेरा भविष्य भी अशुद्धि की तरफ बढ़ रहा है
0: जी। यानी अपने विचारों को देखना हमें भगवान बुद्ध जो है वो सिखाते हैं जी। और कॉर्पोरेट में हर तरह के जो परिवार हैं वो जुड़े हैं और आप उनको ये सिखाते हैं
1: जी।
0: ये बातचीत जो है बहुत रोचक मोड़ पर है, और मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर इस मोड़ पर आप कौन सा गाना अपनी पसंद का हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
1: मैं यह बताना चाहूंगा कि गाना है, घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डामाडोल, तब मानव तो मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। अंगुलीमाल फिल्म का गाना है, 1960 में आया था
0: जी। बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना है।
2: जब दुख की घड़ियां

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं, बौद्ध अध्ययन विभाग से हैं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और साथ ही कॉरपोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से हैं सतीश कुमार जी। तो राणा पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की तो एक शब्द जो है वो सहज ही मन में आता है, शांति। जब कभी हम उनकी छवि भी देखते हैं तो वो इतनी शांत स्वरूप है कि उसको देखकर शांति का संचार होता है मन में। और आज का जो युग है आपाधापी का है और हम देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो संघर्षों में घिरे हैं और कई तरह की प्रतिस्पर्धाएं भी चल रही हैं, ऐसे में जो बौद्ध दर्शन है इसका क्या महत्व है और क्या ये आज ज्यादा जरूरी हो गया है या समय के साथ इसका प्रभाव कम होता गया है?
1: आपने अभी दो बिंदुओं पर प्रकाश डाला
0: जी।
1: एक व्यक्तिगत शांति की बात की और दूसरी बात आपने ये कहा है कि दुनिया में इतनी अशांति फैली हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। देखिए, दोनों दो बातें हैं। बुद्धिज्म में, बौद्ध दर्शन में और बौद्ध अध्ययन में इसके तीन सोपान हैं, पर्यत्ति, पटिपत्ति और पटिवेधन। पर्यत्ति के तहत हम थ्योरीज को जानते हैं, पटिपत्ति के तहत हम उसको अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं
0: जी।
1: और पटिवेधन के स्थिति में उस स्तर पे हम रियलाइज करते हैं। तो जब हम अपने मन को, ये चीज उपनिषद में भी है
0: जी,
1: जिसको हम कहते हैं नॉन माइंडिंग प्रोसेस, अमनी भाव। अमनी भाव में होता है कि जब आपका मन निरंतर चिंतनशील है
0: जी,
1: अगर आपके पास एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं है तो आपका चिंतन ज्यादातर निगेटिव दिशा में जाएगा। और

0: जब वो निगेटिव दिशा में जाएगा, नकारात्मक दिशा में जाएगा, तो वो आपके हर सेल को प्रभावित करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो निगेटिव आएंगे और आप पूरी तरह परेशान हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए और काउंसलिंग जो है स्पिरिचुअल काउंसलिंग होनी चाहिए
1: जी।
0: हमें किस तरह की चीज सोचना है, हमें क्या सोचना है, ध्यान कैसे करना है और चित्त में शांति कैसे बना के रखना है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक जगह और जब उनके धर्म को कंक्लूड किया गया
1: जी।
0: तो वहां कहा जाता है सब पापस अकरणं, हर तरह के पाप को छोड़ देना, नहीं करना
1: जी।
0: कुशलस्य उपसंपदा, मोरल टेंडेंसीज को बढ़ाना, सचित्त परियोधपनं, प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर ओन माइंड, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, सचित्त परियोधपनं, एतान बुद्धान शासनं, यही बुद्धों का शासन है। तो सील का पालन करते हुए, मोरलिटी का पालन करते हुए, मोरल प्रिसेप्ट्स का पालन करते हुए
1: जी।
0: आपको अपने कॉन्शियसनेस को, चित्त को परिशुद्ध कर लेना चाहिए। व्यक्तिगत शांति इसी में निहित है। आपकी दूसरी बात थी
1: जी,
0: विश्व में इतनी अशांति क्यों फैली हुई है। एक कॉन्सेप्ट है विपल्लास। विपल्लास जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं किसी चीज को उल्टा देखना। जिसमें अशांति है उसमें हम शांति ढूंढते हैं, जहां दुख है उसमें हम सुख ढूंढते हैं। आज पूरी दुनिया अगर मानवता पे केंद्रित हो जाए, ह्यूमन सेंट्रिक हो जाए, तो तरह तरह के जो विध्वंसक हथियार हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। कोई भी वैज्ञानिक जब कोई विध्वंसक हथियार बनाएगा उसके पहले सोचेगा इसका उपयोग कहाँ होगा। उपयोग मानवों के ऊपर होगा, क्षति किसकी होगी, मानव की क्षति होगी। वो उसी दिन उसको रुक जाना चाहिए। बनाना क्या चाहिए, ऐसी ऐसी दवाओं का आविष्कार करना चाहिए जिससे कि व्याधियों का नाश हो, दुखों का नाश हो। ऐसा तो हो नहीं रहा है। और हम जबकि जो भी चीजें हैं वो सब खत्म हो जाने वाली है
1: जी।
0: अगर हम टेरिटरी, आज इतिहास गवाह है, सिकंदर ने भी टेरिटरी जीता, सब ने टेरिटरी जीता, किसी के पास आज वो नहीं है। इस सत्य को, इस तथ्य को पूरे दुनिया के शासकों को ध्यान में रखना चाहिए। सभी चीजें नश्वर हैं, क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील है
1: जी।
0: इसीलिए अगर हम इन मुद्दों पे युद्ध की स्थिति लाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। एक मनुष्य का सम्मान करना चाहिए, समाज का सम्मान करना चाहिए और देश का सम्मान करना चाहिए। समस्याओं का समाधान बुद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध अध्ययन के अनुसार अपने आप खत्म हो जाएगा
1: जी। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत से अवसरों पर कहा है कि ये युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती है, ये कहा है। मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब हम कहते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है ये भारत से उपजा है और पूरी दुनिया में फैला है, हमने दुनिया को भगवान बुद्ध दिए, उनके दर्शन दिए, तो ऐसे में क्या वजह है कि हम दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वहां ये पाते हैं कि व्यवहार में जो बौद्ध दर्शन है उसकी सीख है, लेकिन भारत में कभी कभी हमारा अपना जुड़ाव जो है इनसे नहीं रहा है, क्या वजह आप पाते हैं?
0: देखिए ऐसा नहीं है, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है कि भारत में बौद्ध नहीं है
1: जी।
0: भारत की भूमि कभी भी बौद्ध विहीन नहीं रही है
1: जी।
0: आप जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जाते हैं सिक्किम में, मणिपुर के कुछ हिस्से में, लेह लद्दाख में, वहां की अधिकतम आबादी जो है वो बौद्ध आबादी है। एक तो ये बात
1: जी।
0: इसीलिए अगर ये हम कहते हैं, हाँ स्थान परिवर्तन हुआ है, शिफ्टिंग हुआ है
1: जी,
0: लेकिन खत्म नहीं हुआ है। दूसरी बात कि जब पूरे भारत में बौद्ध दर्शन, बौद्ध विचार लोगों के रक्त में समाया हुआ है
1: जी,
0: जब आप कोई भी अनुष्ठान करते हो तो आप बुद्ध का नाम लेते हो, बुद्ध को स्वीकार करता है, पूजन करता है, यजन करता है, तो इस तरह से देखेंगे तो पूरे भारत के मानस में भगवान बुद्ध समाये हुए हैं
1: जी।
0: और कुछ ज्योग्राफिकल एरिया है जहां बुद्धिज्म प्रत्यक्ष रूप से आदिकाल से आज तक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बुद्धिज्म यहाँ व्यवहारिक नहीं है, प्रायोगिक नहीं है। हम तो सील का पालन करते हैं, हर भारतीय सील का पालन करता है, हर भारतीय समाधि का अभ्यास करता है, योग का अभ्यास करता है, हर चीज का अभ्यास करता है।

0: जी
1: हम कैसे मान लें कि बुद्धिज्म यहाँ व्यवहारिक नहीं है? है
0: यानी हमारे व्यवहार में है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो अच्छी बात हम फॉलो करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सहज शब्दों में हमें मिली है, वो असल में बौद्ध दर्शन का हिस्सा है।
1: बौद्ध दर्शन का भी
0: जी
1: हिस्सा है, क्योंकि ये अच्छी बातें, क्योंकि भारत का जो दर्शन है, जो सनातन शब्द है, जो सनातन परंपरा है,
0: जी
1: ना ही बेरेन बेरानी सम्मंतिद कुदाचनंग अबेरेन च सम्मंति एस धम्मो सनंतनो। बैर से कभी बैर शांत नहीं होता, मित्रता से बैर शांत होता है। अब इसको किसी धर्म विशेष में बांधना उचित नहीं है। भगवान
0: जी
1: बुद्ध के मुंह से भी यही बात निकला है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये बात भी आती है। तो
0: जी
1: भारत की भूमि ही ऐसी है,
0: जी
1: हमने कभी टेरिटरी नहीं जीता है, हमने तो सिर्फ विचार फैलाया है, शांति फैलाई है,
0: जी
1: शील फैलाया है, समाधि और प्रज्ञा का विस्तार किया है। इसीलिए हम पर पूरी दुनिया, मानवता का इतिहास ये आरोप नहीं लगा सकती कि मैंने शस्त्र बल से कहीं कुछ भी जीता है।
0: जी
1: तो भारत की भूमि तो ऐसी भूमि है।
0: तो जो नैतिक मूल्य हमें चाहे वो जातक कथाओं से मिले या माता पिता द्वारा सुनाई गई कहानी से मिले या बचपन में हम छोटी छोटी जो पुस्तकें पढ़ते हैं कहानियों की, कथा कहानियों की, उनसे मिले, वो बौद्ध दर्शन की भी बातें करती हैं और हमारे अन्य जो सनातन धर्म से जुड़े हुए अन्य जो दर्शन हैं उनकी भी बातें करती हैं। मैं यहाँ ये बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखूंगी। आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
1: चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा जाए।
0: बहुत ही प्यारा सा गाना आपको सुनवा रहे हैं।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार जी। तो मैं सतीश जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो आप देते हैं उसमें आपने हमें बताया कि बौद्ध दर्शन जो है उससे बहुत सारी चीजें लेते हैं और उन्हें कैसे हम प्रैक्टिकली अपना सकते हैं, अपने व्यवहार में उतार सकते हैं, ये आप सिखाते हैं। तो आपके सेशंस होते हैं अलग अलग जो विभाग हैं उनमें, मैं ये जानना चाहूंगी कि सेशन तो एक दिन का हुआ, दो दिन का हुआ, कैसे आप ये श्योर करते हैं कि जो आपने सिखाया है वो लोगों को समझ में आ गया है और उसके बाद वो व्यवहारिक तौर पर उसे फॉलो भी कर रहे हैं और इसका लाभ मिल रहा है उन सभी को?
1: मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बौद्ध दर्शन को या धम्म के सिद्धांतों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। रीजन क्या है, वो बिजनेस वर्ल्ड है और बिजनेस वर्ल्ड में जो हमारी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले प्री टेस्ट होता है, तो सर्टेन टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पोस्ट टेस्ट होता है, तो पोस्ट टेस्ट में ये क्लियर हो जाता है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उनके क्या अंक रहे और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद उनके अंक क्या रहे। अगर अंक बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हाँ उन्होंने कुछ सीखा है, और अंक नहीं बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शायद वो समझ नहीं पाए हैं। तो ये तो एक सिद्धांत हुआ छोटा सा जिससे अंदाजा लगाया गया, परंतु धम्म की जो शिक्षाएं हैं उनको दो दिन में अगर सीख जाए ऐसा संभव नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि धम्म के सिद्धांतों को समझने के लिए उसे रेगुलर अभ्यास में लाना अति आवश्यक है। मुख्य रूप से हम कोई भी कार्य अगर करना चाहते हैं तो मानसिक शांति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है
0: जी।
1: और मानसिक शांति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम विचार शून्य ना हो जाएं, और विचार शून्य होने के लिए हमें विपश्यना साधना करनी चाहिए। विपश्यना साधना बहुत बड़ी होती है लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आनापाना सति, सांस का लेना और सांस का छोड़ना और मस्तिष्क का ध्यान केंद्रित करना सांस की आवन जावन के ऊपर। उससे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली मस्तिष्क को स्थिर करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि जो मस्तिष्क है एक ऐसा जंगली घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे वो हमारे घर भी जा सकता है, वो बैठे बैठे वो बाजार में चला जाएगा, वो किसी मित्र से मिलने लगेगा। ऐसे में हमारा जो ध्यान है वो ध्यान नियंत्रित नहीं रह पाता। तो ध्यान को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी काम करें। मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटा था स्कूल जाता था तो मेरी माँ मुझे कहती थी बेटा ध्यान से स्कूल जाना। मम्मी ने कभी भी नहीं कहा कि बेटे ज्ञान से स्कूल जाना। जब स्कूल में हम पेपर दे रहे होते थे एग्जाम के समय, जो टीचर पूरे साल ज्ञान पढ़ाता था वो एग्जाम के समय कहता था बेटे ध्यान से पेपर करना। तो जब मैंने अध्ययन किया धम्म को तो मुझे पता चला कि ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का गुरु ध्यान है। मैं कुछ कह रहा हूं अगर आपका मेरी बातों में ध्यान नहीं है तो मैंने क्या कहा आपको समझ नहीं आएगा। हम कोई मूवी देखने गए और मूवी में हमारा ध्यान नहीं है तो मूवी में चल क्या रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसके कौन कौन से कलाकार क्या क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने अगर ध्यान नहीं दिया तो समझ नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं और माल बेचने की बात होती है या माल बेचने के बाद किसी समस्या के समाधान की बात होती है या फिर कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस की बात होती है या किसी टेक्निकल थिंग की बात होती है, तो ऐसे में व्यक्ति को ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ओनली कि जो है आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और सांस की आवन जावन पे ध्यान लगाएं, ये तो मस्तिष्क को स्थिर करने का एक प्रैक्टिस है, बट रोज आना आपको एक काम कर रहे हैं तो

0: काम करते समय उसी में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए फोकस, ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए कंसंट्रेशन, ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, जो चल रहा है उसकी मुझे समझ तो हो।
1: क्योंकि यानी जो बातें हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा मानते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग का हिस्सा मानते हैं कि बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप कुछ करें और सहज भाव से, सजग भाव से करें और शांत भी रहें, चीजों को समझें, है ना, और अपने आप को भी जो है वो जज करते रहें, सेल्फ ग्रूमिंग करते रहें, वो सब जो है इनके बीज आप कह रहे हैं कि वो ध्यान में है और ध्यान जो है वो धम्म से जुड़ा है। तो ये शिक्षाएं जो है आप इस तरह से युवाओं तक पहुंचाते हैं। जी, मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जो है वो, अगर हम बुद्धिस्ट स्टडीज की बात करते हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, तो इसे रिलीजन स्पेसिफिक मानते हैं, कैसे बौद्ध दर्शन जो है वो धर्म से अलग है?
0: धम्म की जो शिक्षाएं हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी एस धम्मो सनंतनो, ये एक्चुअली धम्म है, धर्म है ही नहीं। जो धम्म है वो धर्म से बड़ी चीज है। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात, सूर्य दिखे तो दिन है वरना काली रात। तो लोगों को धर्म ऐसा लगता है कि पूजा पद्धति धर्म है
1: जी।
0: लोगों को लगता है परंपराएं निभाना, रूढ़िवादिताओं को निभाना, संस्कारों को निभाना, परंपराओं को निभाना, उन्हें लगता है वो धर्म है। असल में धर्म बिल्कुल अलग चीज है
1: जी।
0: जिस तरह से अग्नि जलाने का काम करती है, पानी शीतलता देने का काम करता है, तो पानी का धर्म है शीतलता देना
1: जी,
0: अग्नि का धर्म है वो गर्माहट देती है। ठीक उसी तरह से जो मनुष्य का धर्म है
1: जी,
0: वो है करुणा, मैत्री, बंधुत्ता, उसके आचरण में, उसके व्यवहार में मानवता परिलक्षित होनी चाहिए। जब मनुष्य के मस्तिष्क की वो पराकाष्ठा उत्पन्न होने लगे जहां मनुष्य केवल मनुष्य प्रतीत होता है, जहां लिंग भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां जाति भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां भाषा भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां क्षेत्रवाद समाप्त हो जाता है, जहां रंग भेद समाप्त हो जाता है, जहां विभिन्न प्रकार की व्याधियां स्लोली एंड ग्रेजुअली समाप्त हो करके मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराती है, तो उस समय हम धम्म की गंभीरता को आचरण में धारण करने का कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य होने के बाद मुझे एक मनुष्य छोटा प्रतीत होने लगता है, तो वहां मिलावट आ जाती है, वो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, वहां पर उसकी मानसिक अवस्थाएं विकृत हो जाती है, विभिन्न प्रकार की जो व्याधियां समाज में उपलब्ध हो रही हैं, बढ़ रही हैं या बढ़ाई जा रही हैं, उनका समापन ही धम्म की तरफ हमें लेकर के जाता है
1: जी। तो समसामयिकता उसकी ये है कि जो सामाजिक कुरीतियां उस वक्त थी उनको दूर करने के लिए धम्म जो है वो शुरू हुआ, और आज भी जो सामाजिक कुरीतियां हम अपने आसपास देखते हैं उनका निवारण हम इस दर्शन में पाते हैं जी। बहुत अच्छे से आपने समझाया। यहाँ मैं आपकी पसंद का एक और गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
0: इकबाल फिल्म का एक गाना है आशाएं
1: जी, ये आपको पसंद है गाना
0: जी?
1: अच्छा। बहुत ही अच्छा सा गाना है, एकदम से मूड जो है वो बहुत अच्छा कर देता है। तो हमारे सभी श्रोताओं को हम ये गाना सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार हमारे विशेषज्ञ हैं और हम अपने विशेषज्ञों से ये जान रहे हैं, हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज, इनसे हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह से बौद्ध दर्शन जो है वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बना रह सकता है और कैसे हम अपने रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान बौद्ध दर्शन से भी निकाल सकते हैं और वो समाधान हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अब राणा पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की तो एक शब्द बार बार हमें सुनाई देता है, हम पढ़ते हैं मध्यम मार्ग। आज का जो युग है, एक तो इस पर बहुत ज्यादा दबाव हम महसूस करते हैं अपने आप को हर पल साबित करने का, ये टेक्नोलॉजी जो है वो हर समय हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती है, पीयर प्रेशर एक महसूस होता है, ग्लोबल विलेज में हम जी रहे हैं, हम AI जो है अब जीवन का हिस्सा बन गया है, तो जहाँ कृत्रिम बौद्धिकता जो है उस पर हमारी डिपेंडेंसी हो रही है, वो हमारे जीवन को कहें कि कंट्रोल करती जा रही है, वहां पर मध्यम मार्ग जो है उसे हम कैसे अपना सकते हैं और इसका क्या लाभ हमें होगा?
1: देखिए, मध्यम मार्ग जो है वो एक तरह से बौद्ध दर्शन का मेरुदंड है।
0: जी,
1: भगवान बुद्ध ने अपनी ही वाणी में कहा था कि मझिमा पट्टी पटी पदाति चक्षु करनी यान करनी, ये जो मध्यम मार्ग है यह आंख देने वाला है, आई ऑफ विजडम देने वाला है और ये हमें नॉलेज देने वाला है। क्योंकि द्वे अंते भिक्खवे पब्बजितेन न सेवितब्बा यो चायं कामे सुकाम सुखल्लिकानु योगो हीनो गम्मो पुथुज्जनिको अनरियो अनर्थ संगितो, यह हमें दो अंतों को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो मध्यम मार्ग, अब जैसे देखिए आपकी चर्चा में, परिचर्चा में कॉरपोरेट शब्द बार बार आ रहा है। मध्यम मार्ग में एक सोपान है सम्मा आजीवो, राइट लाइवलीहुड। इसमें बताया गया है कि किस तरह की आजीविका हमें स्वीकार करनी चाहिए, किस तरह के आजीविका पे हमें जीवन जीना चाहिए
0: जी।
1: और यही सारी चीजें आगे बढ़

0: ते हुए सुमाकर की एक किताब आई थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें उन्होंने बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स शब्द को क्वाइन किया था
1: जी।
0: और आज ये जो है बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एक अल्टरनेटिव सिस्टम बन चुका है पूरे विश्व में और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा भी शुरू हो गई है। अगर इसी मध्यम मार्ग को हम उठाए मेडिकल साइंस के फील्ड में ले चलते हैं तो वहां भी जो माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं उसकी वहां पे बहुत प्रासंगिकता बढ़ गई है
1: जी।
0: अभी 7 टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं जो काउंसलिंग एंड साइकोथेरापी के टेक्निक्स हैं जो पूरी तरह बौद्ध दर्शन पे आधारित है, माइंडफुलनेस पे आधारित है, जो मेडिकल साइंस की बात है
1: जी।
0: शिक्षा में हम अपने मेंटल कैपेसिटी को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे मजबूत करें जिससे कि हमारा जो एक ह्यूमन कैपेसिटी है वो विकसित होकर सामने आए
1: जी।
0: रही बात जो मैकेनाइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया का, हम जो मशीनों पे आश्रित हो रहे हैं, तो देखिए मशीन को चलाएगा कौन? मशीन को मनुष्य चलाएगा, मनुष्य को उसका मन उसको गाइड करता है। चूंकि आपने धम्मपद में देखा होगा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, अब AI कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। हम AI के माध्यम से हर चीज को देखें समझें, लेकिन उसके जड़ में नैतिकता शब्द का होना बहुत जरूरी है। हम किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हमें नैतिक होना बहुत आवश्यक है
1: जी।
0: और नैतिक सील समाधि और प्रज्ञा, हमें सील का पालन करते हुए समाधि पे चलते हुए प्रज्ञा हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम वायरस पे बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और हमें हमारे अंदर सील की भावना है, हम सील का विकास कर रहे हैं, सील का अभ्यास कर रहे हैं, हम कभी ऐसा वायरस नहीं बनाएंगे जिससे कि कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी
1: जी।
0: हमें उन चीजों का आविष्कार करना है जो मानव के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, देश और राष्ट्र के लिए जो उपयोगी हो
1: जी।
0: हम मस्तिष्क और मशीन का इस्तेमाल दवाओं के लिए करेंगे, मनुष्य के मनुष्यता के विकास के लिए करेंगे, न कि ध्वंस के लिए करेंगे
1: जी।
0: तो यहाँ पे बुद्ध की वाणी, बुद्ध का दर्शन समीचीन है कि मनुष्य का मशीन का इस्तेमाल मनुष्य नैतिकता के साथ करे और अपने आप को नियंत्रित रखे और इस सिद्धांत को रखे, सदैव सामने रखे, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा स्वचित्त परियोधपनं एतान बुद्धान शासनं। इसको ध्यान में रखे, कोई पाप न होने पाए, चित्त परिशुद्ध हो जाए, कुशल वृत्तियों का विकास हो और हम जीवन में आगे बढ़ते रहें, पूरे मानवता की शांति होगी, विश्व शांति होगी
1: जी। यानी बौद्ध दर्शन में जो है वो इस तरह की बातें हैं कि व्यवहारिक तौर पर हम अपना सकते हैं और ये हमें कहीं आगे बढ़ने से नहीं रोकती। हम आधुनिकता शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं तो हम लगातार आधुनिक हो सकते हैं, अपने आसपास की चीजों से, समसामयिक समाज से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये दर्शन हमें हमारे अंदर एक तरह का नैतिक मूल्य जो है वो हमेशा रखेगा, जो हम काम करेंगे वो सही दिशा में जाएगा।
0: बिल्कुल
1: जी। मैं यहाँ आपसे वर्तमान समय की जो चुनौतियां हैं उनकी बात करना चाहूंगी। पर्यावरण हमारे सामने एक चुनौती है। हम लगातार बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, हम बात करते हैं कि परिवार जो हैं वो अब धीरे धीरे एकल परिवार होते जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और रोजगार एक समस्या है युवाओं के सामने। और अगर है भी रोजगार उनके पास, तब कहीं ना कहीं वो आत्मसंतुष्टि जो है वो भाव कम होता जा रहा है, प्रतिस्पर्धा है, एक भाव मन में हमेशा रहता है असंतुष्टि। और ऐसा माना गया है कि आप असंतुष्ट होंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपको प्रयास के लिए प्रेरित करेगी असंतुष्टि आपकी। बौद्ध दर्शन इन सब के बीच कैसे हमें संतुलित रहना सिखाता है?
0: यहाँ भी आपने कई बिंदुओं पे एक साथ प्रकाश डाला है
1: जी।
0: सबसे पहले आपने पर्यावरण के ऊपर प्रश्न किया है, दूसरा प्रश्न है आपका परिवार टूट रहा है
1: जी,
0: तीसरा प्रश्न है बेरोजगारी और संतुष्टि। पर्यावरण को लेके बौद्ध दर्शन में एक नई विधा की शुरुआत हो गई है 90 के दशक के बाद या 90 के दशक के आसपास, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। हमें पर्यावरण को कैसे बचाना है? जब हम तृष्णा का त्याग कर देंगे
1: जी,
0: अगर थोड़े से प्रकृति के दोहन से हमारा काम चल जाता है, लेकिन हम तृष्णा के कारण जो है प्रकृति का दोहन असीमित रूप से करते हैं
1: जी।
0: यहाँ पे बौद्ध दर्शन में वृक्ष को कैसे बचाना है, जल की शुद्धता को कैसे मेंटेन

0: मेंटेन करना है, वायु की शुद्धता को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें मिलती हैं और ये सब मिलकर के एक नए विषय का जन्म देता है, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसमें जो बौद्ध साहित्य है उसमें स्थान स्थान पर इस बात पे प्रकाश डाला गया है कि कौन व्यक्ति नीच है जो बीज को नष्ट करता है, जो पौधे को नष्ट करता है, जो वृक्ष को नष्ट करता है, उसी को हम नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण के लिए बुद्धिज्म में, और इसका परिणाम है कि आज थाईलैंड में भिक्षु जो है वो जब पेड़ कटने जाते थे तो भिक्षु उनको पकड़ लेते थे या पेड़ को चीवर पहना के उसको भिक्षु का स्वरूप दे देते थे जिससे पेड़ कटना बंद हो जाता था। उसी तरह की चीज हमारे यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा करते थे, चिपको आंदोलन, वो जाके पेड़ से चिपक जाते थे
1: जी।
0: ये हमारे रक्त में बसा हुआ है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, और बौद्ध दर्शन और बौद्ध सिद्धांत तो इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे भारत हो। दूसरा प्रश्न आपने किया था कि परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि हम स्वार्थी होते जा रहे हैं
1: जी।
0: स्व के लिए जीना पसंद करते हैं, हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने समाज को नहीं देख पाते हैं। अगर हम सबको एक साथ देखना शुरू करें, समेकित रूप से देखना शुरू करें, तो परिवार टूटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सबकी भूमिका इस समाज में, इस परिवार में निर्धारित है। हम अपनी भूमिका के तहत चलें, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा। हम एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे को समझ के जिए, एक दूसरे को समझने के लिए जिए, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा, समाज कभी नहीं टूटेगा। और तीसरी बात आपने कहा, बेरोजगारी और असंतुष्टि। संतुष्टि परमंग धनंग की बात बुद्धिज्म में कही गई है। सबसे पहले बुद्धिज्म में एक चीज बौद्ध दर्शन में बताया गया है कि सभी चीजें नष्ट हो जाने वाली है, क्षण क्षण परिवर्तित होने वाली चीजें हैं। तो जो चीजें नष्ट होने वाली है उससे मोह क्या नहीं। रही बात बेरोजगारी की, तो हम जब अपनी आवश्यकताओं को न्यून कर लेंगे तो हमें बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं होगी, हम अपना एक आदर्श जीवन जी पाएंगे और यहाँ पे हमें तृष्णा से मुक्ति मिलेगी, हम तृष्णा से दूर हो जाएंगे, हमारा समाज भी एक उज्जवल, एक उत्कृष्ट समाज में परिवर्तित हो जाएगा, परिवार परिवर्तित हो जाएगा और व्यक्ति परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार जो है बौद्ध दर्शन पर्यावरण से लेकर के सामाजिक प्रदूषण से लेके और व्यक्तिगत प्रदूषण, हर स्तर पे हमें पूरी तरह से नियंत्रित करने की, नियंत्रित रखने की बात करता है
1: जी। और जो ये कहा जाता है कि हम असंतुष्ट रहेंगे वो प्रेरणा बनेगी आगे बढ़ने के लिए, इस बात को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, असंतुष्ट रहेंगे कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और इस कारण से हम अब खुद को दबाव में रखेंगे
1: जी,
0: हर समय दबाव में रखेंगे कि जो मिला नहीं उससे ज्यादा मिलना चाहिए। हम अपने बच्चों को दबाव में रखेंगे कि तुम जितना पढ़ रहे हो उससे काम नहीं चलेगा, और अधिक पढ़ो
1: जी।
0: बच्चों को दबाव में रखेंगे, समाज को दबाव में रखेंगे। जब आप असंतुष्ट हैं, आपसे जुड़ा हुआ समाज भी असंतुष्ट होगा, परिवार भी असंतुष्ट होगा। इसीलिए ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें संतुष्ट होकर जीवन जीना चाहिए। लेकिन अब आप कहती हैं कि असंतुष्टि जो है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, नहीं। भारत में एक एक क्षण के इस्तेमाल की बात की जाती है, और जब हम उपलब्ध एक एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं तो हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके लिए संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, संतुष्ट होने की जरूरत है और एक एक क्षण का सही अर्थ में सदुपयोग करने की जरूरत है।
1: संतुष्ट होकर हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, और जैसा कि सतीश जी ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट करते वक्त हमें पूरी तरह वहां पर उपस्थित रहना है, सतर्क होकर और ध्यान से काम करना है।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: बिल्कुल।
1: तो कौन सा गाना आप सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को?
0: हमको मन की शक्ति दे, मन विजय करे, दूसरों के जय से पहले खुद की जय करे।
1: जी, गुड्डी फिल्म का बहुत ही प्यारा सा ये गीत है, और सच में ये हमारे मन को जो है वो बहुत ही बलशाली बना देता है। ये गाना सुनकर ही अंदर जो है वो भाव इस तरह का पैदा होता है। आपको सुना रहे हैं गुड्डी फिल्म का गीत।

इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ में, जो कि हमने बचपन से सुना है और हमारे स्कूलों में जो है ये प्रार्थना भी होती रही है, तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। चलते चलते सतीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बौद्ध दर्शन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कोई भी परिस्थिति है ही नहीं जिसकी बौद्ध दर्शन बात ना करता हो। हम चाहे पर्यावरण की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, या हम व्यक्तिगत स्वभाव की बात करें, और या फिर हम आध्यात्मिक उत्थान की बात करें, अपदीपो भव वाला भाव भी हमें सिखाता है बौद्ध दर्शन। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम बुद्धिज्म को, बौद्धिक जो स्टडीज हैं, इन सब को धर्म से अलग देख लेते हैं, मान लेते हैं, उसके बाद अगर हमारे युवा साथी कुछ पढ़ना चाहें, इस तरह के कोई मोटिवेशनल जो क्लासेस होती हैं, सेशन

0: होते हैं वो करना चाहें तो कैसी अप्रोच उन्हें करनी चाहिए, कहां से वो ये सब पढ़ें जानें?
1: सबसे पहले तो मैं यहाँ ये सजेशन देना चाहूँगा कि विपश्यना साधना के सेंटर्स पूरे भारत में हैं
0: जी,
1: जो आपको रीचेबल हो वहाँ 10 दिन का कोर्स होता है एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन वहाँ स्टे भी फ्री होता है और खाना पीना भी फ्री होता है, उसके लिए देर इज नो चार्ज। तो विपश्यना साधना में जाएं, वहां जाकर हमें धम्म के मूल सिद्धांत समझ में आते हैं, क्योंकि जो धम्म है, धम्म अनुभव करने की चीज है, अभ्यास करने की चीज है। तो एक तो यहां से कर सकते हैं, दूसरा हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक रूप से कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रतिपादित कई बुक्स हैं, उनमें एक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, उस पुस्तक में धम्म को लेकर के बहुत अच्छी जानकारियां उपलब्ध हैं।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये कामना करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं और हमारे जेनजी जो श्रोता हैं वो बहुत सारी जानकारी रखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम समय में वो अपने आप को बहुत ज्यादा परिपक्व करने की प्रयास में लगे होते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जैसे वो समय का सदुपयोग करते हैं, उसी सदुपयोग के माध्यम में वो ये पुस्तकें भी पढ़ेंगे, किसी ना किसी माध्यम से उन्हें प्राप्त हो ही जाएंगी। और हमें बताया राणा पुरुषोत्तम जी ने कि किस तरह से हम अपने व्यवहार में बौद्ध दर्शन जो है उसे शामिल कर सकते हैं, और जीवन की उस तरह की कोई समस्या है नहीं जिसका समाधान हमें बौद्ध दर्शन से न प्राप्त हो, बस हमें स्वयं पर काम करने की आवश्यकता है। और हमें सतीश कुमार जी ने बताया कि ये 2 दिन में या किसी एक सेशन से नहीं होगा, निरंतरता इसमें जरूरी है। लगातार जब हम प्रयास करते रहेंगे तो हम अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बना पाएंगे, और बेहतर व्यक्ति से बेहतर समाज बनेगा, और बेहतर समाज से हमारा राष्ट्र और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये मूल्य जो है वो जाते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप दोनों ने हमें बौद्ध दर्शन जो है उसे समझाया है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे श्रोता जो हैं इसके बारे में जो भी जाना है उसे अपनाएं और उनका लाभ हो। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम, बौद्ध अध्ययन विभाग, नव नालंदा महाविहार, संस्कृति मंत्रालय, नालंदा से आप जुड़े हैं, और लगातार जो है वो बौद्ध दर्शन आपके माध्यम से प्रसार भी पाता है, और आज हमारे स्टूडियो में भी आप आए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार जी आपका, कॉरपोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका है, और आपके माध्यम से हमारे युवा साथी जो हैं वो बौद्ध दर्शन को समझ पाते हैं और प्रयास कर पाते हैं उसे अपने व्यवहार में उतारने का। आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत साधुवाद।
0: तो श्रोताओं, आज हमने पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में बौद्ध दर्शन की समसामयिकता समझी। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक, साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़ी की समाप्ति के दो दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले

महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के प्रवक्ता संवर्ग के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का दूसरा चरण जारी है। आज की पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है तथा पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कल शाहजहांपुर में शहर की ट्रैफिक, पार्किंग और सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्य मार्गों पर दुकानों के बाहर सामान रखने और अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री खन्ना ने कहा कि रात 10 बजे के बाद DJ बजाने पर पहले जुर्माना लगाया जाए, फिर भी नियम न मानने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक में रेडी ठेला संचालकों को वेंडिंग जोन में भेजने और सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए। उत्तर मध्य रेलवे के जौनपुर सेक्शन में चल रहे तकनीकी और रखरखाव कार्य के कारण मानिकपुर जंक्शन से गुजरने वाली 3 ट्रेनों का मार्ग अस्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया गया है। इनमें सुपरफास्ट ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस और एक विशेष ट्रेन शामिल है। मानिकपुर स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक शिवेश मालवीय ने बताया कि ये ट्रेनें मानिकपुर जंक्शन के बजाय ओहन बांसा बाईपास मार्ग से चित्रकूट, बांदा और कानपुर होते हुए प्रयागराज की ओर जाएंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति और रूट की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 1 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।

0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: जब स्वास्थ्य साथ होता है तो हर सपना आसान लगता है, लेकिन जब यही सेहत साथ छोड़ दे तो जिंदगी कठिन परीक्षा बन जाती है।

0: नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका वीकली हेल्थ शो हेल्थ एंड फिटनेस। श्रोताओं, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने काम, जिम्मेदारियों और सपनों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी सेहत को ही पीछे छोड़ देते हैं। और शायद यही वजह है कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां धीरे धीरे बिना आहट के लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। लेकिन अच्छी बात है ये कि अगर जागरूकता हो, जानकारी हो और सही वक्त पर सही गाइडेंस हो तो इन बीमारियों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसी थॉट के साथ, इसी सोच के साथ आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है आपकी बेहतर सेहत और बेहतर जीवन को। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन यानी मधुमेह और उच्च रक्तचाप की। और इन महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान, चरक के मेडिसिन विभाग से। डॉक्टर साहब, एफएम रेनबो लखनऊ के इस मंच पर आपका दिल से स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से जुड़े कुछ सवालों की, उसके बारे में जानने की। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए अपने शो पे।
0: तो श्रोताओं, ये तो आप जानते ही हैं कि एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो अगर आपके मन में डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो बिना झिझक हमें कॉल करिए। हमारे फोन नंबर वही पुराने वाले 0522-223-8852 और 0522-223-8845। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। दोपहर 1 बजे तक हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप डायरेक्टली डॉक्टर खान से बात करें और अपने सवालों के जवाब पाएं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, जो कि एक टाइम ये बोला जाता था कि बहुत कम लोगों में होने वाली बीमारी है, कुछ लोग इसे हंसते गाते हुए बहुत सोफिस्टिकेटेड बीमारियों में से भी गिनते थे, ये आज इतनी कॉमन कैसे हो गई है?
1: देखिए, इसका मुख्य कारण जो इस वक्त हमें देखने को मिलता है वो ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा रोज़मर्रा की जो जीवन शैली है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। जैसे बहुत देर तक ऑफिस में बैठे रहने से, जिसे हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, या कोई भी ऐसा मेहनत वाला काम जिससे हमारा पसीना बहे शरीर से, वो अब कम हो गया है। लग्जरीज या विलासिता जिसे कहें, वो हमारे जीवन में ज़्यादा आ गई है, जिस वजह से ये सारी बीमारियों का जो प्रेवलेंस है, जो इंसिडेंस है, वो पिछले कई सालों से, पिछले 2 डेकेड से बढ़ गया है।
0: तो डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या होते हैं? कई बार पता ही नहीं चलता है, कहा जाता है कि साइलेंट किलर्स होती हैं ये बीमारियाँ, क्योंकि आप ठीक ठाक हैं, आप काम भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर एक दिन आपको पता चलता है कि आपको तो हाइपरटेंशन है या आप तो डायबिटिक हो गए। तो क्या लक्षण होते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी
1: जी,
0: है?
1: जी देखिए, अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, मधुमेह की बात करें, तो इसमें जो सबसे सबसे ख़तरनाक लक्षण या शुरुआती लक्षण जिसे हम कह सकते हैं, वो ज़्यादा यूरिन होना, ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा भूख लगना, और ज़्यादा भूख लगने के बावजूद भी शरीर का वज़न कम होना, और ज़्यादा प्यास लगना, इंस्पाइट कि हम एडिक्वेट अमाउंट में हम पानी पी रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें ज़्यादा प्यास लगना, ये कुछ शुरुआती लक्षण हैं डायबिटीज़ के। जल्दी थक जाना, कई बार गांव के जो हमारे श्रोता जो गांव में हैं, उन्होंने अक्सर ये चीज़ को नज़रअंदाज ना करें कि अगर वो वॉशरूम जाते हैं, अगर उनके यूरिन में चींटियाँ लग जाती हैं, तो ये संकेत देता है कि आपको डायबिटीज़ है, आपको मधुमेह है, और आप तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से जाके अपने शुगर की जांच जितनी जल्दी हो सके वो कराएं। और अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें, तो हाइपरटेंशन में जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, जो आज के समय में हमें देखने को मिलता है, वो स्ट्रेस है, तनाव है, नींद का पूरा ना होना है, और बाहर का जो प्रोसेस्ड फूड है। मैं ये नहीं कहता कि बाहर का खाना गलत है या ख़राब है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना, स्पाइसी फूड खाना, ये धीरे धीरे हमारे शरीर में हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे रक्तचाप को बढ़ा देता है।
0: डॉक्टर साहब, बहुत

0: सारी कॉल्स हमें आ रहे हैं और इससे पहले कि हम अपने पहले कॉलर से बात करें, एक बहुत छोटा सा इम्पॉर्टेंट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हमारे पहले कॉलर से कनेक्ट होते हैं।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट दोई रोड दुबग्गा।
3: स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड। कीप लिस्निंग टू FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: आपको अपडेटेड रखने के लिए, आपकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए ही तो लेकर आते हैं हम ये प्रोग्राम हर संडे। ये प्रोग्राम यानी कि हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें खास तौर पर आप ही के लिए तो हम इनवाइट करते हैं एक्सपर्ट को, एक ऐसे एक्सपर्ट को जिनसे आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं, अपनी शंकाओं के समाधान जान सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान और डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो चलिए जानते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है और उनका क्या सवाल है। हेलो
4: हेलो मैम, नमस्ते। पूरी टीम को हम श्रद्धा पूर्वक नमस्कार कर रहे हैं।
0: धन्यवाद, आपने इतना इंतजार किया। आप अपना सवाल पूछें सर।
4: हाँ मैम, हमारा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि जो हाइपरटेंशन है, ये लाइफ स्टाइल की बीमारी डॉक्टर साहब बता रहे हैं
0: जी,
4: इसमें डॉक्टर साहब हम क्या अंतर खाएं मुख्य रूप से, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। और लाइफ स्टाइल तो हम गांव में रहते हैं, ताजी हवा रहती है हम लोगों के आसपास और कोई खास दिक्कत नहीं है, कोई नशा पत्ती भी भगवान की दया से नहीं है।
0: नहीं तो आपको हाइपरटेंशन है क्या, क्या डायग्नोज हुई है आपको हाइपरटेंशन?
4: बहुत ज्यादा 190 बता रही रीडिंग। अब हम यहाँ कार्डियोलॉजी में भी
0: जी
4: कराया और यहाँ अपने सतीपुर में भी सरकारी अस्पताल में
0: जी।
4: तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाए डॉक्टर साहब, क्या चीज हम न खाएं जिससे कि ये हाइपरटेंशन?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है, आप एक बार अपनी उम्र भी बता दीजिए डॉक्टर साहब को।
4: हमारी उम्र 50 से ऊपर है, 52-53 साल है डॉक्टर।
0: ओके सो सर, 52-53 इयर्स की एज, और जैसा कि आपने शुरू में बोला कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं। अब हम इनकी बात करें तो गांव में रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, किसी तरह का व्यसन नहीं है, हेल्दी खाते हैं, हेल्दी हवा में सांस लेते हैं, उसके बाद भी हाइपरटेंशन हो गई, अब ऐसे में क्या किया जाए?
5: जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा इनका सवाल है कि ये गांव में रहते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी भी है इनकी। देखिए मात्र काम करना, जो फार्मर्स है, जो हमारे किसान भाई हैं, जो खेतों में काम करते हैं, इसको हम एक उसमें नहीं ले सकते, व्यायाम की श्रेणी में नहीं ले सकते। जो बताया गया है उस व्यायाम के लिए, उसको ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग ऐसा है कि इतना चलना, इतना तेज़ चलना, अपनी कदम ताल को इतना तेज़ चलना कि चलते चलते हल्की सी सांस आपकी फूलने लगे। आप इतना चलें, इतना इतनी अपनी स्पीड को रखें कि आप, कहते हैं हम लोग समझाने के लिए कि आप गाना ना गा सकें। मैं FM रेडियो पे हूँ तो गाने से रिलेटेड ही बता रहा हूँ कि आप इतना चलें कि आप तेज़ी से चलें कि आप गाना ना गा सकें, इसको ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि खाने में, ख़ास करके आप किसान भाई हैं हमारे जो हैं, जो गांव में रहते हैं, तो जैसे पापड़ हो गया, नींबू हो गया, अचार हो गया, ये चीज़ों का सेवन कम करें या ना करें। तीसरी चीज़ जो हाइपरटेंशन से रिलेटेड रहती है वो जेनेटिक्स रहती है। कई बार कुछ बीमारियां हमें विरासत में, जैसे हमारे क्या कहते हैं कि केवल प्रॉपर्टी ही नहीं विरासत में मिलती, बीमारियां भी मिलती हैं। तो हाइपरटेंशन कई बार, जिसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, वो जेनेटिक भी होता है। वो चूंकि हमारे फैमिली हिस्ट्री रहती है, हमारे परिवार में हमारे माता पिता को किसी को रही होती है, वो हमारे जीन्स में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अपना ख्याल ना रखें, अपना देखभाल ना रखें तो ये हो जाएगी। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे हम बचाव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने आमतौर पे मरीज़ों से जब हम देखते हैं तो सुनने में मिलता है कि ऊपर से नमक डालने की एक प्रचलन है, ख़ास करके गांव में, कि जो खाना बनाए, जो

0: भोजन बना है उसमें नमक जो पड़ता है वो पड़ता है, उसके ऊपर से एक्स्ट्रा नमक जिसे कहते हैं वो डाल देते हैं, ये चीज़ नहीं करनी है। भाई साहब आपने बिल्कुल आपने अच्छा काम किया कि अपने नज़दीकी स्वास्थ्य में जाके अपने आप को दिखाया, और मेरी यही कामना है कि आप दवाओं से और जो मैंने बताया एक्सरसाइज के नाम पे, जैसे योगा है, योगा का बहुत अच्छा प्रभाव आता है हमारे शरीर पे बीपी को कंट्रोल करने में, ख़ास करके जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, इनहेल एक्सहेल करना, ख़ास करके सुबह में अगर 10 से 15 मिनट अगर हम रेगुलर करेंगे तो इससे हमारे शरीर के अंदर मन शांत रहेगा, जब मन शांत रहेगा तो चीज़ें भी हमारी बीपी भी कंट्रोल रहेगा। धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब, आपको और भी कई उपाय बताएंगे जिससे कि आप कंट्रोल कर सकें अपने बीपी को, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक बजे तक लगातार आपके साथ हम बने हुए हैं इन द प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ हैं, तो चलिए जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो
2: हेलो
1: जी नमस्कार।
2: हेलो
1: जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। इनका फ़ोन तो कट गया, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि जो रेगुलर काम आप करते हैं, गांव में गए खेत पर काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि भाई हमारा तो घर 3 मंजिल का है, हमने 3 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ ली, हमारी एक्सरसाइज हो गई, इतना काफ़ी नहीं है, तो क्या कॉन्शियसली सोच करके पूरी प्लानिंग से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या उसका दूसरा असर होता है शरीर के ऊपर?
0: नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए बीपी और शुगर ये जो बीमारियां हैं
1: जी,
0: तो जैसे कि मैंने कहा कि ये कुछ जेनेटिक्स से भी रिलेटेड है, इंस्पाइट कि हम सारा प्रिकॉशंस लेते हैं उसके बावजूद भी ये बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि ब्रिस्क वॉक की मैंने बात करी, साथ में ही एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जो नया ट्रीटमेंट का गाइडलाइंस आया है उसमें ये है कि 150 मिनट्स टोटल पर वीक, यानी डेली 20 से 25 मिनट व्यायाम करना, करने से हम डायबिटीज़ और बीपी के ऊपर, हाइपरटेंशन के ऊपर काबू पा सकते हैं।
1: तो सीधी सी बात है ये कि रेगुलर जो आप काम करते हैं उसे एक्सरसाइज में बिल्कुल मत गिनिए, सोच कर समझ कर जितना डॉक्टर साहब कह रहे हैं उतना टाइम ज़रूर डिवोट करिए एक्सरसाइज के नाम। डॉक्टर साहब एक और कॉलर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इनसे बात करने से पहले हम ले लेते हैं एक बहुत छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।
3: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
4: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: 12:19 और ठीक 45 सेकेंड्स, प्रोग्राम का नाम हेल्थ एंड फिटनेस, चैनल का नाम FM रेनबो, मेरा नाम ज्योति, और आज खास तौर पर आपके लिए, जी हाँ आप ही के लिए हमने इनवाइट किया है हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान जी को, जो कि बात कर रहे हैं डायबिटीज और हाइपरटेंशन से जुड़े हुए आपके सवालों के बारे में, आपकी शंकाओं के समाधान कर रहे हैं, आपके सवालों के लगातार जवाब दे रहे हैं। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है हमें जल्दी से डायल करिए 2238852 पर या फिर 2238845 पर। इन नंबर से पहले जो लखनऊ का कोड है 0522, इसको ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल इनकी ही तरह। हेलो
5: हेलो
1: जी नमस्कार, नाम बताएं और अपना सवाल पूछें।
5: नमस्कार मैम जी, हम जगमोहन बोल रहे हैं।
1: जी जगमोहन साहब
5: जी, हम ये जानकारी चाहते हैं
1: जी
5: कि जैसे शरीर में मोटापे की भी कमी ज्यादा चल रही है, और जब शरीर ठीक ठाक है और चलने में जैसे थकान से महसूस होती है और नसें जो हैं
1: झटक
5: की आवाज आती है,
1: मतलब आपको थकान सी महसूस होती है, अपनी उम्र भी बता दीजिए एक बार आप।
5: हमारी उम्र 18 वर्ष है
1: जी। कितनी है आपकी उम्र?
5: जी 18 वर्ष की उम्र है, और हड्डियां जैसे लगता है कि कमजोर होती है।
1: तो 18 साल की उम्र में ही आपको बहुत लो एनर्जी फील होती है, हड्डियों में तकलीफ महसूस होती रहती है, और भी कोई परेशानी है जगमोहन जी?
5: जी और तो कोई परेशानी नहीं है
1: जी, बहुत अच्छी बात है कि

0: और कोई परेशानी नहीं है, डॉक्टर साहब हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? 18 साल की उम्र में तो ये बोला जाता है कि इस एज में एक्सेसिव एनर्जी रहती है बच्चों में, स्पेशली जो प्री टीन्स हैं या टीनएजर्स हैं या यूथ, वो तो बबल करता है एनर्जी से। और अगर इसी उम्र में आपको ये महसूस होने लगे कि ताकत ही नहीं है, बड़ी थकान हो रही है, हड्डियाँ तकलीफ दे रही हैं, तो क्या वजह हो सकती है?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, जगमोहन जी जो उन्होंने अपनी उम्र बताई 18 साल, तो काफ़ी यंग है। लेकिन हमें एक चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि चाहे हम डायबिटीज़ की बात करें, चाहे हाइपरटेंशन की बात करें, ये कहीं नहीं लिखा है कि ये यंग्स में नहीं हो सकता है। जगमोहन जी ने बताया कि उनके हड्डियों में दर्द रहता है, उनको थकान सी, जिसको हम बोलते हैं मैलेज एंड फटीग बोलते हैं, तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिए जगमोहन जी। आप अपना एक रूटीन चेकअप करा लीजिए। रूटीन चेकअप में आप अपना एक रैंडम ब्लड शुगर या फास्टिंग शुगर एंड पोस्ट प्रैंडल शुगर, खाना खाने के डेढ़ घंटे बाद का शुगर, और एक HbA1c, और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से जाके अपना एक BP नपवा लें। इन जांचों को कराने का मकसद ये है कि हम आप में शुगर और हाइपरटेंशन के लक्षण, क्योंकि ये लक्षण और भी कई बीमारियों में आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये अगर ये सिर्फ हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ के ही लक्षण हैं, और भी कोई शरीर में, चूँकि आप यंग है, हो सकता हो कैल्शियम की कमी हो, तो अपने विटामिन डी लेवल्स भी करा लें, क्योंकि विटामिन डी लेवल का भी डायबिटीज़ से रिलेशन देखा गया है। तो आप विटामिन डी लेवल्स करा लें, अपने HbA1c लेवल्स हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग एंड पोस्ट प्रैंडल शुगर्स हैं, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से अपना BP नपवा लें, और इन रिपोर्ट्स को अपने जो भी डॉक्टर को आप दिखाना चाहें या चारक अस्पताल आना चाहें, बिल्कुल आ सकते हैं। उन रिपोर्ट्स के आधार पर फिर आपके डायग्नोसिस या आपके आगे का इलाज किया जाएगा।
0: तो जगमोहन जी, बिल्कुल इग्नोर मत करिए अपने लक्षणों को, जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर से सलाह लें और बहुत जल्दी से आप अच्छे हो जाए, ये हमारी शुभकामना है। हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाएं, आपकी आवाज़ बड़ी हल्की आ रही है।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ, अब बेटर है। हाँ जी, बताएं।
2: मेरा सवाल ये है कि डायबिटीज कैसे हो जाती है, अगर हो भी जाती है तो उससे बचने के लिए उपाय क्या है?
0: आपकी उम्र कितनी है?
2: उम्र है 16।
0: और आपको कोई परेशानी तो नहीं है? स्वास्थ्य एकदम ठीक है आपका?
2: हाँ, स्वास्थ्य तो ठीक है,
0: लेकिन हमारे जागरूक श्रोता होने के नाते ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि डायबिटीज हो क्यों जाती है?
1: जी देखिए, डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण ये है कि जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, उससे हमारे शरीर में ग्लूकोस लेवल बढ़ जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इन साहब की उम्र 16 साल है, काफ़ी यंग है। तो डायबिटीज़ कि जो एक मिथ्या है कि डायबिटीज़ केवल बूढ़े अधेड़ उम्र के लोगों में होती है, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ इन यंग भी होती है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, और ये टाइप 2, मैं अपने श्रोताओं से बताना चाहूँगा कि ये टाइप 1 ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आपको आपकी उम्र कम है, मतलब 25 साल के नीचे हैं, और आपको ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा पेशाब, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा पानी पीने की वो हो रही है जबकि आप पी रहे हैं पानी, शरीर का वज़न कम होना, जल्दी थकान आना, सांस का फूलना, तो उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए। इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, और ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जैसा कि भाई साहब का सवाल था कि ये हो कैसे जाती है, तो जब इंसुलिन की मात्रा, जो कि हमारा बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज रिलीज़ करता है, ये शरीर में कम होने लगता है, तब शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए खान पान पर ध्यान रखना रहता है, और व्यायाम करना पड़ता है, और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना होता है।
0: डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर हैं। हालांकि मैंने आपका गाना बिल्कुल क्यू कर रखा है, आपने दो बेहद खूबसूरत गानों की फरमाइश की हुई है, तो वो गाने ज़रूर प्ले किए जाएंगे। लेकिन हमारे ये श्रोता जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, इनसे हम बात कर लें उसके बाद। हेलो जी, बताएं। नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना सवाल भी पूछें प्लीज।
3: विमल सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी सिंह साहब,
3: मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे पेट में दर्द है, खाना खाता हूँ तब भी दर्द है, नहीं खाता हूँ तब भी दर्द है, ये लैटिन कई बार कमजोरी बहुत ज्यादा है।
0: उम्र कितनी है आपकी?
3: हमारी
0: 29 ईयर्स की एज। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, पेट में दर्द रहता है।

0: खाना खाते हैं तब भी, नहीं खाते हैं तब भी, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है आज के टाइम ये।
1: जी जी जी तो मे भी हो सकता हो कि पेट में इन्फेक्शन हो गया हो, पेट में इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है, जैसे कि आजकल मौसम भी बहुत बदल रहा है, कभी गर्मी हो जाती है और कभी अचानक से टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इन कारणों से भी खान पान के उस पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और जब हम इसे खा लेते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अभी पानी जितना पी सकें वो पिएं, और अल्ट्रासाउंड हो गया और जो इससे रिलेटेड जांचें हैं वो आप

0: हम इसे खा लेते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अभी पानी जितना पी सकें वो पिएं, और अल्ट्रासाउंड हो गया और जो इससे रिलेटेड जांचें हैं वो अपने डॉक्टर को दिखा के फिर उसके बाद उसको आगे वो करें, इलाज करें अपना जो है।
1: तो दोस्तों, आपका ख्याल रखने के लिए, आपकी सेहत अच्छी रहे, इसलिए हम लेकर आते हैं हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें आज आपके साथ हैं जाने माने डायबिटीज और हाइपरटेंशन एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान साहब। आपके जो भी सवाल हैं आप डायरेक्टली इनसे पूछ सकते हैं, कोई भी शंका है उसका समाधान चाहते हैं, कोई सुझाव चाहते हैं तो भी आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स हमारे वही पुराने 223-8852 और 223-8845। तो डॉक्टर साहब तो आपसे बात करेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने इनको एक प्रॉमिस किया था कि आपकी पसंद का सॉन्ग ज़रूर आज FM रेनबो पर प्ले होगा। तो डॉक्टर साहब बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं और क्यों सुनना चाहते हैं?
0: देखिए, आज चूँकि मदर्स डे है तो मैं मदर्स डे के उपलक्ष्य में मैं एक गाना मेरी माँ, अपनी माँ को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि माता ही एक जीवन में एक ऐसा इंसान के वो रहता है कि जो उसके पूरे फ्यूचर को शेप करता है। तो आज मदर्स डे के, हालांकि हर दिन हमें मदर्स डे मनाना चाहिए, पर चूंकि एक स्पेशल डे है तो मैं जो गाना मैंने बताया आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके लिए बजा दिया जाए।
1: तो डॉक्टर साहब की माता जी को हम सब की तरफ से भी मदर्स डे की ढेर सारी बधाइयाँ, और डॉक्टर साहब के साथ साथ हम सब की भी तरफ से मदर्स डे का ये प्यारा सा गिफ्ट।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
3: आपकी धड़कन हेल्दी रहे, आप स्वस्थ रहे, इसीलिए तो हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जरूर जो आपको अवेयर करें, आपको अपडेटेड रखें और आपकी लाइफ की क्वालिटी को सुधारने में मदद करें। हमारे साथ एक कॉलर बड़ी देर से हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या सवाल है। हेलो।
4: हेलो
3: जी, नमस्कार।
4: मैम नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
5: नमस्कार नमस्कार।
4: मास्टर राधेश्याम बोल रहे डिस्ट्रिक्ट कारसन से।
3: जी राधेश्याम जी बताएं।
4: मुझे डायबिटिक है।
3: ओके।
4: मैं उसकी सुबह एक गोली लेता हूँ जो जेमर टू, और शाम को जल्ला ट्राई टेबलेट लेता हूँ।
3: ओके।
4: मेरा जो पीपी शुगर तो 121.3 है, लेकिन मेरे जो शरीर में हर समय जो थकान और कमजोरी बनी रहती है।
3: अच्छा, आपका ईमेल भी आया हुआ है राधेश्याम जी।
4: हाँ जी जी जी
3: जी। अच्छा हुआ आपका फोन लग गया, मैं बस आपका ईमेल लेने ही वाली थी।
4: चलो कोई बात नहीं, थैंक्स मैम।
3: तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे राधेश्याम जी को?
5: जी राधेश्याम जी, आपका पीपी तो ठीक है, आपने बताया 121 है तो ठीक है। जो थकान और कमजोरी की बात चल रही है, तो देखिए डायबिटीज का मतलब भूखे रहना नहीं होता है। ये हमारे समाज में एक कॉमन वो है कि हम भूखे रहेंगे तो शुगर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है। डाइट में आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखनी है एज कम्पेयर टू दी कार्बोहाइड्रेट। अब सवाल उठता ये है कि प्रोटीन में आता क्या है? तो अगर आप शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, तो शाकाहारी में जैसे पनीर हो गया और सोयाबीन हो गया, है ना, तो और जैसे सादा दही हो गया, है ना, बिना शक्कर वाला जो सादा दही घर का है, ये सारी चीज़ें प्रोटीन से रिलेटेड हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेड मीट को अवॉइड करना है एंड फिश जो है फिश ज़्यादा मात्रा में लेनी है। तीसरी जो बात आती है कि विटामिन डी लेवल्स देखा गया है, जो भी स्टडी हुई है रिसेंटली, कि विटामिन डी लेवल्स कम पाए गए हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, तो विटामिन डी लेवल का कम होना भी एक कारण हो सकता है आपको थकान और कमजोरी लगना। तो मेरा आपसे जो आपको सजेशन रहेगा, सुझाव रहेगा, वो ये है कि अपनी प्रोटीन डाइट को बढ़ा दें, अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करा लें, अगर वो कम है तो उसकी दवाई आती है उसको लेंगे तो इससे आपको मदद मिलेगी।
3: डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो।
6: हेलो नमस्कार मैडम
3: जी, कौन बोल रहे?
6: मैडम संजय बोल रहे।
3: संजय जी एक रिक्वेस्ट करूं?
6: हेलो
3: संजय जी एक रिक्वेस्ट करूं, मानेंगे आप?
6: हाँ बताइए मैडम।
3: प्लीज रेडियो से दूर हो जाइए।
6: ठीक मैडम, हाँ दूर हो
3: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपना सवाल पूछें प्लीज।
6: मैडम हमको डाटा से डाटा, गुड आफ्टरनून।
5: गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून
6: डॉक्टर। हमको आपसे ये सवाल पूछना है कि जैसे बीपी का जो एक नॉर्मल रेंज कितना होता है और कितने के बाद वो रिस्की हो जाता है
5: जी।
6: और दूसरा क्वेश्चन ये है कि शुगर जो आजकल बहुत एक कॉमन बीमारी हो गई है
5: जी।
6: तो इसका क्या ये प्रोग्रेसिव बीमारी है कि रिवर्सिबल होती है अगर एक बार हो जाती है तो?
5: अच्छा,
3: दोनों ही सवाल बहुत अच्छे हैं इनके कि क्या शुगर हो गई या हाइपरटेंशन हो गई तो क्या सारी जिंदगी वो रहती है? बहुत अच्छे सवाल आपके।
6: इसका रेंज क्या है बीपी का जो है?
5: जी जी जी, देखिए मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जो नॉर्मल बीपी हम लोग मानते हैं वो 120/80, 120 ऊपर, जैसे हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, एंड 80 जो नीचे का डायस्टोलिक होता है, तो इसकी एक रेंज होती है।

0: 100 टू 120 एंड 60 टू 80 डायस्टोलिक जो है. तो जब बीपी हमारा 120 अबव 120 और 130 की रेंज में रहता है तो ये नॉर्मल हम मानते हैं. यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर 126, 128, 129 या 130 तक आ रहा है तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं कि भाई बीपी आपका सही चल रहा है. जब बीपी आपका जो है 130 अबव होने लगता है धीरे धीरे, तब जो है आप खतरे के उसमें आते हैं. तो एकदम से अगर बीपी आपका 130 अबव आ रहा है तो दवा देने की जरूरत नहीं है. उसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और डाइट पे, इन सब पे ध्यान दे के हम बीपी को वापस कंट्रोल कर सकते हैं. और दूसरा सवाल जो आपका था कि शुगर क्या प्रोग्रेसिव बीमारी है. बिल्कुल, शुगर जो है, देखिए शुगर और नॉर्मल हो जाती है. बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें आप दवा लेते रहें और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं. दवा की डोज कम हो जाती है, दवा की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वो आप कम मात्रा में लेते रहे, परहेज करते रहे, शुगर कंट्रोल रहेगी और अपना जीवन व्यापन आराम से कर सकते हैं.
1: मतलब आपको अपनी लाइफ को लीड करने में कोई समस्या नहीं होगी डॉक्टर साहब, लेकिन दवा लेते रहना जरूरी है.
0: दवा लेते रहना जरूरी है जी.
1: लेकिन डॉक्टर साहब, एक बार अगर इनमें से कोई बीमारी हो जाती है तो मन में तो आ ही जाता है कि भाई अब समस्या हो गई है ना.
0: जी जी जी, असल में एक जहन में ये आ जाता है कि अब हम बीमार रहने लगे हैं. तो इसका यही मैं कहना चाहूँगा कि घबराएं नहीं, अपने मन में कोई कुंठा ना रखें. ये जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप परहेज रखेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल रखेंगे, खान पान का रखेंगे, तो आपको जीवन व्यापन में कोई दिक्कत नहीं होगी. बहुत नामी क्रिकेटर वसीम अकरम हैं, वसीम अकरम पाकिस्तानी बॉलर रहे, उनको भी डायबिटीज़ थी. हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सोनम कपूर हैं, उनको तो टाइप 1 डायबिटीज़ थी. लेकिन देखिए, सभी अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है.
1: तो बजाय ये सोच के कि अरे मुझे तो समस्या हो गई, उस समस्या को कंट्रोल करने की कोशिश करिए. जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, दवा सही समय पर लीजिए, डॉक्टर की सलाह लेते रहिए और एक्सरसाइज ज़रूर करिए. डॉक्टर साहब एक और कॉलर वेट कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रेक लेना तो बहुत ज़रूरी है.
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा.
1: 12:39, वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहते हैं ना, अभी भी अच्छी खबर है ये कि हमारे पास 20 मिनट से ज़्यादा है. तो हमें जल्दी से आप कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान साहब से, जो कि जाने माने डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एक्सपर्ट हैं. तो चलिए जानते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन है और इनका क्या सवाल है. मुझे लगता है कि इनका कनेक्शन थोड़ा सा परेशान कर रहा है, बट नेवर माइंड. चलिए एक और ब्रेक ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे साथ कौन लाइन पर है.
4: बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर.
5: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर.
4: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए.
5: चरक हॉस्पिटल दुबग्गा हरदोई रोड लखनऊ. कॉल 666-4444.
1: तो चलिए जाने हमारे साथ अभी कौन फोन लाइन पर कनेक्ट हुए हैं. हेलो हेलो.
6: अस्सलाम वालेकुम
1: जी. नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
6: और डॉक्टर भाई को, तौसीफ भाई को अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम सलाम बहन, बताएं.
6: और बताइए भाई, आप कैसे हैं? ज्योति मैम आप बताइए कैसे.
1: जी हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी भी सेहत फर्स्ट क्लास बनी रहे और इसीलिए तो.
6: मैम हमारी आपसे बात नहीं हुई थी और काफी दिनों से, तो मेरा सवाल कोई नहीं है, मैंने कॉल किया आपको, बुरा लगा हो अगर, इसके लिए सॉरी.
1: अरे नहीं, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया. बस यूं ही कनेक्टेड रहिए.
6: डॉक्टर भाई और बताइए.
0: जी बहन मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ. और अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखें.
1: बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कॉल किया. बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता हमें इतने ध्यान से सुनते हैं, हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. और ये भी जानकर अच्छा लगा कि इनका कोई सवाल नहीं है. इसका मतलब हमारा देश स्वस्थ हो रहा है और हमारे देश को स्वस्थ रखने के लिए तो हम करते हैं ये छोटा सा

0: जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस, जिसे हम बुलाते हैं हमारे देश के सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हेल्थ शोज में से एक। मोनू सेठ जी का ईमेल है मेरे सामने, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं खेल और व्यायाम में काम में दिन बीत जाता है, खूब पसीना बहाते हैं, तो क्या हमें फिर भी बीमारी हो सकती है?
1: देखिए, सवाल इनका बहुत ही उचित है कि वही खेल और व्यायाम दोनों करते हैं उसके बावजूद भी बिल्कुल हो सकती है, ना होने का मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है। लेकिन ये कि ध्यान रखें अपना, फलों का सेवन ज़्यादा करें, बाहर का खाना कम खाएं, आप व्यायाम करते ही हैं, खेलते भी हैं, मे बी प्रोलोंगेशन हो सकता है कि प्रोलोंगेशन ऑफ द डिजीज़ के आपको ना हो, मतलब अगर होना है तो 20-25 साल 30 साल बाद हो सकती है, लेकिन अगर ये लाइफस्टाइल रही तो शायद ना भी हो जाए।
0: तो सीधी सी बात है कि हम ये प्रोग्राम इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप जागरूक हों, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को बीमारी होगी ही या फिर नहीं होगी, लेकिन अगर हो ही जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, मेडिकल साइंस की फील्ड में ज़बरदस्त R&D हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और उस वजह से बीमारियाँ बहुत जल्द काबू में आ रही हैं, बहुत जल्द उनके निदान हो रहे हैं। तो तकलीफ को अपने तक समेट कर रखने की बजाय डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, समय पर लीजिए और सलाह को फॉलो भी करिए। हमारे साथ अब कौन फोन लाइन पर है? नमस्कार।
2: नमस्ते मैम, ओम बाबू बोल रहे हैं।
0: ओम जी नमस्कार, सवाल पूछे अपना।
2: दूसरे गंजे पर केटे गाँव है, वहाँ से बोल रहे हैं
0: जी।
2: ये मैम, ये हमारे जो है 3 साल पहले पता चला था कि हमें शुगर है, और जब HbA1c और ये टेस्ट कराए तो करीब 13 के आसपास निकला था, और उसके बाद अपने खान पियन में थोड़ा सुधार किए और कुछ दिन तक 6 महीने के आसपास दवा चली, उसके बाद अब दवा नहीं खा रहे हैं, लेकिन हर 3 महीने पे HbA1c टेस्ट कराते हैं तो वही 7 के आसपास आती है, 7-7.5 के आसपास आती है, और 125 या 120 115 के आसपास।
0: तो दवा खाना बंद जो आपने की है वो क्या किसी के सलाह पे की है, या फिर आपका शुगर कंट्रोल हो गया था तो आपने अपने आप से ये डिसीजन लिया?
2: हम कंट्रोल हो गया था तो अपने आप कर दिए, लेकिन इस समय ये ऐसी पोजीशन है, क्या इसमें उचित है दवा खाना कि थोड़ा और सुधारना है अपने खाने पीने के क्षेत्र?
0: बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप दवा लेना शुरू करते हैं तो फिर कंट्रोल में आ जाती है शुगर, तो उस टाइम ये क्वेश्चन आता है कि अब हम दवा क्यों खाएं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं यही अपने श्रोताओं को सलाह देना चाहूंगा कि खुद डॉक्टर ना बने, कृपा करके डॉक्टर जब कहे तभी अपनी दवा को बंद करें। भाई साहब का HbA1c 13 point something था और वो घट के 7-7.5 आ गया, इसका मतलब है कि उन्होंने भी मेहनत की और आपके डॉक्टर ने भी मेहनत की, लेकिन अब आपने अपने मन से दवा बंद कर दी और आपका HbA1c 7-7.5 है। भाई साहब को ये नहीं मालूम कि 6.5 अबव जो है पेशेंट डायबिटिक कहलाता है, 6.5 अबव है तो पेशेंट जो है डायबिटिक, प्री डायबिटिक, डायबिटिक रेंज में आ जाता है। HbA1c लेवल शुड बी लेस देन 6.5। अब इनका HbA1c 7-7.5 आ रहा है तो इनको दवा की ज़रूरत है, लेकिन कम डोज की ज़रूरत है। ये कब बढ़ जाएगा इनको पता भी नहीं चलेगा। HbA1c यूजुअली हमारा 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज बताता है, तो कृपा करके मेरा सुझाव ये है कि जिन डॉक्टर साहब को आप दिखा रहे थे उनको वापस जाएं और उनसे सलाह लें। अगर मान लीजिए आप पहले 2 दवा खा रहे थे, हो सकता हो आपको एक गोली आधी गोली खानी पड़े, लेकिन आप अपने मन से दवा कृपा करके ना बंद करें।
0: डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्लीज़ अपने डॉक्टर खुद ना बने, क्योंकि ये वाकई ख़तरनाक हो सकता है। डोज एडजस्ट की जा सकती है, लेकिन शुगर की दवा और हाइपरटेंशन की दवा डॉक्टर साहब रोकनी नहीं चाहिए,
1: बिल्कुल नहीं रोकनी,
0: बिल्कुल भी नहीं रोकनी चाहिए, और ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ है, ईमेल्स भी ढेर सारे आ रहे हैं, लेकिन अगर मैंने आपकी पसंद का एक और गाना नहीं सुनाया तो मुझे बहुत अफसोस हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो कम्युनिकेशन आपका और मेरा हुआ था उसमें आपने कहा था कि आपको 2 गाने सुनने हैं, एक मम्मी के लिए और एक अपनी बेटर हाफ के लिए। तो इससे पहले कि मैं गाना प्ले करूँ, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं ये सॉन्ग अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहूँगा, और बस और मैं क्या
0: कहूँ। ऑलराइट, ये गाना ही सब कुछ कह देगा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी बेटर हाफ ये प्रोग्राम सुन रही होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं ये खूबसूरत गाना, और हमारे जो कॉलर इंतज़ार कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इंतज़ार और प्लीज़।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा

0: सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: 12:49 और ठीक 56 सेकेंड्स। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस, और आज हमने हमारे स्टूडियोज में बुलाया है खास तौर पर डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान साहब को, जो कि जाने माने डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एक्सपर्ट हैं। ये आज आपके सवालों के खुद जवाब दे रहे हैं। तो आपका कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं डॉक्टर साहब से हमारे फ़ोन नंबर्स के ज़रिए। हमारे फ़ोन नंबर्स वही पुराने 223-8852 और 223-8845। आप इनके ज़रिए जुड़ सकते हैं डॉक्टर साहब से और अपना सवाल पूछ सकते हैं बिल्कुल इनकी तरह। नमस्कार, नमस्कार दोस्त। हेलो जी, कौन बोल रही है? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी जी, अपना सवाल पूछिए।
3: मेरे पेशाब बहुत लगती है बाथरूम में, जब तक जाएं जब तक हमारे पेशाब हो जाते हैं।
2: कितनी उम्र है आपकी?
3: 40 साल की है उम्र।
2: और कब से ये समस्या है?
3: ये हमारा ऑपरेशन हुआ था, 2-3 साल हो गए हैं। पित्त का ऑपरेशन हुआ था, पथरी का। जी, हमारा शुगर था, लेकिन दवाई के जरिए से दवाई कंट्रोल कर लिया गया था।
2: तो उसके बाद आप शुगर की दवा ले रही हैं कोई?
3: इस टाइम हम कोई शुगर की दवा नहीं ले रहे हैं।
2: जी
4: देखिए, आपका सवाल है कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है और पेशाब आप रोक नहीं पाते हैं, तो ये भी लक्षण हो सकता है वापस शुगर का ब्लड लेवल में बढ़ना। तो इसमें मैंने आपको काम ये करना है कि अपना ब्लड शुगर नपवाना है खाली पेट, जिसे हम फास्टिंग कहते हैं, पोस्ट प्रैंडियल यानी खाना खाने के 1.5 घंटे बाद, और अपना एक HbA1c लेवल आपको चेक कराना है। साथ ही में अपने पेशाब की जांच आपको भेजनी है, जिसको हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी या यूरिन RM भी कहते हैं। ये जांच देखने के बाद अगर इसमें कुछ गड़बड़ आती है तो उसी हिसाब से नियमावली आपका इलाज

0: किया जाएगा, तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके ये जांचें करा लें और अब तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें, ये ठीक हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो जी। हेलो
2: हेलो हेलो हेलो
1: जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं प्लीज।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी।
2: शुगर है मतलब मेरे
0: जी,
2: तो मतलब रहता है 125-130 रहता है, लेकिन खाने पीने से बाद में बढ़ जाता है
0: जी। तो आपने अपना आपने HbA1c लेवल अपना कराया है?
2: जी करवाया है।
0: कितना है
2: ये तो मुझे नहीं पता, रिपोर्ट में होगा।
0: अच्छा अच्छा, देखिए भाई, आपका जो बता रहे हैं ना कि आपका शुगर लेवल वैसे 120-125 रहता है और खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, तो हो सकता हो कि अभी शुरुआत हो आपको डायबिटीज़ की, और इसमें एक HbA1c लेवल आपने करा लीजिए, उसकी रेंज को देखते हुए ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, व्यायाम करने से, डाइट पे ध्यान रखने से ये कम हो जाएगा, या आपको एक गोली की ज़रूरत पड़ेगी। मे भी हो सकता हो आपको कम डोज में आपको ज़रूरत पड़े, तो अपना एक HbA1c लेवल लेके अपने अपने नज़दीकी डॉक्टर साहब से संपर्क करें।
1: डॉक्टर साहब, मुनेश कुमार राज का ईमेल आया हुआ है भानपुर हरोआ जिला लखीमपुर खीरी से। ये पूछ रहे हैं कि अगर शुगर है तो क्या ग्लूकोज की ड्रिप चढ़वाना, आयरन सुक्रोज चढ़वाना, या फिर मीठी सिरप, विटामिन की गोली लेना ठीक रहेगा?
0: बिल्कुल नहीं। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ है, या आप दवाओं पे कंट्रोल है, तो कोई भी मीठा किसी भी प्रकार में, चाहे वो आप IV से लें, चाहे वो आप ड्रिंक्स में लें, बिल्कुल। आयरन सुक्रोज की जो आपने बात करी, तो देखिए आयरन सुक्रोज एक अलग ये प्रकार है आयरन प्रिपरेशन का, जो हम चढ़ाते हैं उन पेशेंट्स को जिनको आयरन की शरीर में कमी है। सुक्रोज का मतलब हर जगह, मैंने वही कहा कि डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है, आयरन सुक्रोज, सुक्रोज से कन्फ्यूज़ ना हो, सुक्रोज यहाँ पर मीठा नहीं है, ये आयरन प्रिपरेशन है जो हम अनीमिया के पेशेंट्स में जिनको खून की कमी है उनको चढ़ाते हैं। और जहाँ तक रही बात शुगर ड्रिप की, तो ये नहीं चढ़ाना है, मीठा पानी नहीं पीना है और किसी भी प्रकार का मीठे का सेवन नहीं करना है।
1: डॉक्टर साहब, एक और सवाल इन्होंने पूछा है कि कौन से ब्लड ग्रुप में शुगर जल्दी हो जाता है?
0: नहीं, ऐसा कोई ब्लड ग्रुप अभी तक ऐसा नहीं है,
1: तो ये मिथ है।
0: ये मिथ है। शुगर जो होती है वो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड, जेनेटिक्स होती है, जेनेटिक्स अगर फैमिली हिस्ट्री है माता पिता को, तो आप में चांसेस हैं कि आपको हो सकती है, आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो डिपेंड करता है वो आपके लाइफस्टाइल पे, खान पान पे, पूरी नींद पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है।
1: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: 12:55 और 27 सेकंड हो चुके हैं, लगातार आपके कॉल्स आ रहे हैं, लगातार आपके ईमेल्स आ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश हो रही है कि हम आपके कॉल्स, आपके ईमेल्स को शामिल कर सकें। तो डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना।
2: नमस्ते मैम, रामू बोल रहे हैं मैम
1: जी,
2: से बक्सी तालाब से।
1: अपनी समस्या भी बता दें।
2: समस्या मैम ये है कि हमको कभी कभी घबराहट लगने लगती है।
1: उम्र कितनी है आपकी?
2: 40 वर्ष मैम।
1: घबराहट के अलावा और भी कोई समस्या है?
2: और मैम कोई समस्या नहीं है, जैसे कि डॉक्टर साहब से परामर्श लेना है।
1: घबराहट किस वक्त ज्यादा होती है? जब ज्यादा काम कर लेते हैं, ज्यादा सोच लेते हैं?
2: नहीं मैम, काम करते हैं जैसे दिन भर मजदूरी, तो शाम को घबराहट में।
1: अच्छा, थकान के बाद।
0: देखिए घबराहट के, आपका जो सवाल है कि आप दिन भर काम करते हैं उसके बाद भी घबराहट, तो मे भी हो सकता हो आपको एंग्जाइटी के सिम्टम्स हो सकते हैं, और मे भी हो सकता हो कोई हार्ट रिलेटेड दिक्कत हो, तो ये बता पाना जो है आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह करें, उसको अपने पूरे लक्षण बताएं, अपनी समस्याएं बताएं, इसका निवारण हो जाएगा, इसे घबराने की बात नहीं।
1: डॉक्टर साहब, एक ईमेल हमारे सामने आया हुआ है सुनीता का, लखनऊ से। सुनीता पूछ रही है कि Type 1 diabetes, जिसमें इंसुलिन लेनी ही लेनी पड़ती है, क्या उसमें किसी तरह इंसुलिन से छुटकारा मिल सकता है?

0: क्योंकि वो कम उम्र में होती है और बच्चों को एक्टिव रहना पड़ता है, मेरे बेटे को है, और मुझे ये लगता है कि अगर कल को नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में उसे बाहर जाना पड़ा तो वो कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि अभी तो मेरे साथ है, मैं किसी तरह मैनेज कर रही हूँ।
1: जी जी बहुत बहुत मैं रेडियो के माध्यम से आप पूरे रेडियो स्टेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो ईमेल आया है, देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमें ये जानना कि डायबिटीज़ के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों या कम उम्र के लोगों में देखी जाती है। इसमें शरीर की रक्षा प्रणाली गलती से इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को, जिसे हम बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास कहते हैं, वो नष्ट करने लगती है। तो इंसुलिन इसका इलाज है और इंसुलिन लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं सारे श्रोताओं से कहूँगा इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन लेने से कोई प्रभाव नहीं आता है और इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी प्रोफेशनली भी पर्सनली भी आराम से व्यतीत कर सकता है, हंसते खेलते व्यतीत कर सकता है।
0: और डॉक्टर साहब एक सवाल और भी है मेरे सामने, ईमेल आया हुआ है रिंकी का। रिंकी जानना चाहती है कि हाइपरटेंशन क्या टेंशन की वजह से हो जाती है?
1: जी नहीं, हाइपरटेंशन की वजह से नहीं हो जाती। ब्लड प्रेशर, बॉडी में जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो लगातार बहुत समय तक अगर आर्टरीज में बढ़ा हुआ रहता है, देन द पेशेंट स्टार्ट्स टू डेवलप हाइपरटेंशन। और इसकी कई वजहें होती हैं, जैसे कि तनाव का होना, प्रोसेस्ड फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, प्रॉपर स्लीप ना लेना, अत्यधिक मात्रा में एक्सेसिव अल्कोहल लेना, ये सारे कारण हैं जिससे कि हमें डायबिटीज़ हो सकता है।
0: तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, इन दोनों के लिए आपने कहा कि अगर एक बार हो गई है तो दवा ज़रूर लें, दवा अपने आप बंद ना करें। डॉक्टर साहब समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अंत में मैं चाहूँगी कि संक्षेप में आप हमारे श्रोताओं को अगर कुछ कहना चाहें तो।
1: देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी सावधानी और नियमित जांच और सही जीवन शैली, यही डायबिटीज़ और बीपी से बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है।
0: तो बस अपना ध्यान रखिए, और जैसे कि आज की चर्चा से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर आप अपने स्वास्थ्य पर टाइम खर्च करते हैं या फिर पैसे खर्च करते हैं तो ये दरअसल कोई खर्च नहीं है बल्कि जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा निवेश है। तो दोस्तों अपने शरीर को समय दीजिए, नियमित जांच कराइए, तनाव से दूरी रखिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान साहब आज अपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
0: आप सबको याद दिला दूं कि ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया आकाशवाणी लखनऊ से। मार्गदर्शन सुश्री सुमोना एस पांडे जी का रहा, जो कि हमारी कार्यक्रम प्रमुख हैं। प्रोड्यूसर हैं श्री कुंवर बहादुर सिंह जी, और सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद विनय जी को। अगले रविवार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो लखनऊ 100.7 MHz।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ

मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। खेल एक भारत एक श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है। श्री योगी ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 की प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1,400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज अयोध्या में बताया कि राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कार सेवकों की स्मृति में मंदिर परिसर में एक शहीद स्तंभ बनाया जा रहा है जिसके 15 जून तक तैयार होने की उम्मीद है। श्री मिश्र ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। वहीं ट्रस्ट कार्यालय और अत्याधुनिक म्यूजियम का निर्माण भी जारी है। मंदिर परिसर में जल्द फसाइड लाइटिंग का कार्य भी शुरू होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉइंट का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग के बीच होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। वहीं कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। 230 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम 152 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। गुजरात टाइटंस के लिए राशिद खान ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। राशिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
1: पुरानी जींस और गिटार
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर फिर रात को फुर्सत के वो पल
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीभा हाशमी से। मरकजी हुकूमत ने लेबर कोड के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इससे मरकजी वजारतों, महकमों, खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर के इकदाम में काम करने वाले आउटसोर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन के तहफ्फुज़ को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक, साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: मरकजी हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2025 के फातहीन का ऐलान कर दिया है। पूरे मुल्क से चुनी गई 42 पंचायतों को ये इनामात दिए जाएंगे। वजारत पंचायती राज ने बताया कि इनामात का तकसीम प्रोग्राम 3 जून को नई दिल्ली में मुनक्किद किया जाएगा। वजारत के मुताबिक कर्नाटक से सबसे ज्यादा 6 गांव पंचायतों को अवार्ड के लिए चुना गया है। दरियासना आगरा जिले की बिरहारू गांव पंचायत भी अवार्ड की फहरिस्त में शामिल है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के पार्टी के बानी सी जोसेफ

0: विजय को आज सुबह वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया गया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जनाब विजय के साथ नौवुजरा ने भी हलफ लिया। लोकसभा में इस बेख्तलाफ पार्टी के लीडर राहुल गांधी और तमिल फिल्मी दुनिया के कई हस्तियां हलफबरदारी तकरीब में मौजूद रहीं। अयोध्या में राम मंदिर तामीर कमेटी की खसूसी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर तामीर को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर का खसूसी तामीराती काम अब मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मुहिम में अपनी जानों को कुर्बान करने वाले कार सेवकों की याद में मंदिर अहाते में एक अजीमुशान शहीद स्तंभ बनाया जा रहा है, जिसके 15 जून तक तैयार होने की उम्मीद है। वजीर बराए मालियात और पार्लिमानी उमूर सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में शहर के ट्रैफिक, पार्किंग और सफाई इंतजाम को लेकर अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने खसूसी रास्तों पर सामान रखने और गैरकानूनी पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए। जनाब खन्ना ने कहा कि 10 बजे के बाद DJ बजाने पर पहले जुर्माना लगाया जाए, फिर भी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठेला रेहड़ी वालों को वेंडिंग जोन में भेजने और सड़कों पर तजावजात को हटाने के भी अहकाम दिए। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज के जरिए लेक्चरर ग्रेड के 18 मौजों के कुल 624 ओहदों के लिए 2 रोज़ा तहरीरी इम्तिहान कल से शुरू हो गया। पहले रोज़ इम्तिहान 2 मीटिंगों में मुनक़िद हुआ। इम्तिहान के मद्देनज़र इंतजामिया अलर्ट रहा। आज इम्तिहान का दूसरा मरहला मुनक़िद हो रहा है। पहली मीटिंग में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान समेत 5 मौजों का इम्तिहान हो चुका है, जबकि दूसरी मीटिंग में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और आर्ट समेत 4 मौजों का इम्तिहान मुनक़िद होगा। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में 1 बच्चा और 2 खवातीन समेत 3 अफराद जां बहक हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया, जिसमें 3 अफराद दब गए और मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में 2 दीगर अफराद के जख्मी होने की भी खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। IPL क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के दरमियान चेन्नई में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के दरमियान रायपुर में 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: जगह।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहे।

0: ये FM Rainbow 100.7 MHz FM Rainbow धड़कन लखनऊ की
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI इससे बेहतर कुछ नहीं
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें
3: स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड कीप लिसनिंग टू FM रेनबो धड़कन लखनऊ की
4: एक बजकर 17 मिनट और ठीक 45 सेकंड्स एक बार फिर आपके साथ आपकी अपनी दोस्त ज्योति मिश्रा प्रोग्राम का नाम प्रोग्राम वही जिसमें है आपकी बात आपके जज्बात लेकिन मेरी आवाज यस होठों पे तेरी बात प्रोग्राम का नाम और आज मदर्स डे है तो मैं बहुत क्लीशे टाइप का कोई टॉपिक नहीं लेने वाली मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी मम्मी ने जो आपको ताने दिए अब ये मत कहिएगा कि मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं मम्मी है तो कुछ तो कहेंगी है ना तो मम्मी का दिया हुआ कोई ऐसा ताना या कोई ऐसा डायलॉग जो आपको बिल्कुल रटा हुआ हो जो आपकी निगाहों में आपकी मम्मी की पहचान बन गया हो उसे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जैसे मेरी मम्मी का फेवरेट डायलॉग पता है क्या है मेरी मम्मी का फेवरेट डायलॉग है फॉर एवरीथिंग बस फोन में घुसी रहो मेरी तबीयत खराब हुई तो फोन मार्क्स कमाए तो भी फोन थकान हो गई तो फोन पिंपल है तो भी उसकी वजह से फोन फोन फोन फोन फोन फोन फोन तो आपकी क्यूट सी मम्मी का क्यूट सा डायलॉग क्या है मुझे जल्दी से बताइए और करना क्या है आपको आपको मुझे ईमेल करना है जल्दी करिए ज्योति बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है आपके ईमेल्स का तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं एक खूबसूरत गाना

0: 1:19 हो गए हैं और 7 में हो गए हैं ठीक 32 सेकेंड्स. ज्योति बड़ी बेसब्री से आपकी ईमेल्स का इंतजार कर रही है. ईमेल आईडी हमारा वही पुराना वाला FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com. इससे पहले कि मैं आपकी ईमेल्स लेना शुरू करूं, मैं एक बार फिर बता दूं कि माँ तो बड़ी क्यूट होती है ना. कुछ भी कहे कुछ भी करे, उसकी हर अदा उसका हर अंदाज दुनिया से अलग होता है. और मुझे लगता है कि एक सुपर पावर होती है हर माँ के पास, वो सुपर पावर जिसे वो पलक झपकते ही जान लेती है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है. मतलब CID से भी ज़्यादा ज़बरदस्त काम करने वाली है आपकी और मेरी माँ. लेकिन ये मम्मियाँ ना इतने डायलॉग और यही डायलॉग से इन्हें बनाते हैं दुनिया से ज़्यादा क्यूट. तो मैंने अपनी मम्मी का डायलॉग आपसे शेयर किया क्योंकि उनके हिसाब से दुनिया में जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं फ़ोन ले करके बस बैठी रहती हूँ. आपको क्या लगता है, आपकी मम्मी के दिए हुए कोई ऐसे ताने या फिर मम्मी के कोई ऐसे डायलॉग, प्लीज डू शेयर विद मी.
1: ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठी है. तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: एक बजकर 25 मिनट और ठीक 48 सेकंड्स आप हैं इन द प्रोग्राम HPTB यानी कि होटो पे तेरी बात। गुलफशा सिद्दीकी जी का ईमेल आया है, संडीला से लिख रही हैं, मेरी अम्मी मेरे सोने से बहुत परेशान रहती है। जब मैं कहती हूँ कि थोड़ी तबीयत खराब लग रही है तो मेरी अम्मी कहती है और सो जाओ, सोने से थकान रहती है। ओके, ये तो भाई मैंने भी बहुत ज्यादा सुना है। अगर मम्मी ये बोल दे ना सो जाओ ठीक हो जाओगी, तो बस आप समझ लीजिए भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। अब मतलब जबरदस्त ऐसी पढ़ने वाली कि बस पूछो ही मत। आगे लिखती है गुलफशा सिद्दीकी कि अब मैं खुद 3 बच्चों की अम्मी हूँ तो दिन में नहीं सो पाती हूँ, तो अपनी अम्मी को कहती हूँ अब खुश, अब आपकी नवासे लोग सोने ही नहीं देते मुझे, अब आप खुश, तो अम्मी हंसने लगती हैं। अच्छा, एक और बड़ी क्यूट सी बात होती है मम्मियों की, अपने टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट होंगी, एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट कि भाई आप पूछो मत, किसी ने अगर कह दिया कि मम्मी आ रही है तो बिल्कुल खौफ, और जहां

वो नानी बनेंगी या दादी बनेंगी, तो आप देखिए भैया बिल्कुल 100% उनका ये तेवर ही बदल जाएंगे, पूरी तरह से जेंटल पेरेंटिंग उनको याद आ जाएगी। बात बात में कहेंगी अरे अरे डांटने से बच्चे ढीठ हो जाते हैं, डांटा नहीं जाता। ऐसे में दिमाग में आता है कि मम्मी ये जेंटल पेरेंटिंग तब कहाँ थी जब हम छोटे छोटे मासूम बच्चे हुआ करते थे। बट जो भी है जैसे भी है ये ज़रूर कहेंगे कि माँ के होने से कितनी खूबसूरत हो जाती है दुनिया, है ना।

जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। लबों पे उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था जब माँ ने मुझे गोद में उठाकर प्यार किया था। रुकती है मेरी कलम तो सिर्फ एक बात पर, क्या लिखूं मैं उस माँ पर जिसने मुझे खुद लिखा है। ज्योति जी, मैं भगवान ओके मैं ये मानता हूँ कि माता पिता ही मेरे भगवान हैं। That's so sweet. लेकिन जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें तो हम अपनी मम्मी से ऑफ कोर्स करेंगे आज के दिन, और आज के दिन क्या दिन ही करते हैं, उनको हक करेंगे, उनको अच्छी अच्छी सी बातें कहेंगे, उनको फूल ला के देंगे, उनको गिफ्ट्स भी देंगे। लेकिन ऐसे में चलिए थोड़ा सा चटपटा ट्विस्ट भी देते हैं इस प्रोग्राम को, याद करते हुए वो डायलॉग्स जो कि मम्मी स्पेशल है। एक और डायलॉग मेरी मम्मी का, शक्ल देखते ही सब कुछ समझ जाना और फिर ये कहना, ये मत कहो कि सब ठीक है, यूं ही धूप में बाल सफेद नहीं किए मैंने। वैसे मैंने कभी मम्मी के सर पर एक भी सफेद बाल नहीं देखा, ट्रूली स्पीकिंग। फिर भी ये डायलॉग बार बार लगातार आता ही रहा है। आपकी मम्मी का कौन सा खास डायलॉग है मुझे बताइए, आपको बस ईमेल करना है और ज्योति आपकी मम्मी के सुपर डुपर हिट डायलॉग को करेगी एयर।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: एक बजकर 33 मिनट और 54 सेकेंड्स हो गए हैं। आप हैं ज्योति के साथ इन द प्रोग्राम HPTV और आज ज्योति आपसे बोल रही है कि आपकी मम्मी का ऐसा कौन सा डायलॉग है जो कि मतलब बिल्कुल उनका ट्रेडमार्क है। रामपुर से चंदन टुरेहा ने लिखा है, दवा जब काम नहीं आती तो वो नजर उतार देती है। माँ है साहब, वो हार कर भी मुझे जीत का उपहार देती है। भाई वाह, जन्नत की हर गली का रास्ता शायद उसकी दुआओं से होकर गुजरे। वो अपने आंचल में ही अपनी पूरी कायनात उतार देती है। रामेश्वर जी का ईमेल है, ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से। रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कठेरिया पुत्र वधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार ने मिलजुल कर ईमेल किया है। प्रोग्राम इन्हें अच्छा लग रहा है भाई, और अच्छा लगता है जब आप कोई बढ़िया सा एकदम ढिंचक वाला मैसेज भेजते हैं। श्यामू चौहान जी का भी ईमेल आया है। सुधाकर जाधव जी का एक और ईमेल ये लिख रहे हैं, माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, और ये बात साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि जब आप स्ट्रेस में हों और ऐसे में अगर आप अपनी मम्मी की आवाज़ सुन लेते हैं, अपनी मम्मा से बात कर लेते हैं, उनके पास बैठ जाते हैं, भले ही आप उन्हें अपने दिल की बात ना कहें, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी ऐसे हॉर्मोन्स को रिलीज़ करती है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल का लेवल यानी जो स्ट्रेस हॉर्मोन होता है ना वो कंट्रोल्ड हो जाता है। तो ये मैं नहीं कहती, ये एक प्रूवन ट्रूथ है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि माँ का नाम ही इतने सुकून का एहसास देता है कि भाई क्या कहे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि माँ तो माँ है, और जब माँ ज़बरदस्त टाइप के डायलॉग्स मारती है तो भाई वाह, उसके बिना तो बचपन हमारा अधूरा सा रहता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक आध और ईमेल ले लेते हैं। एक और ईमेल आया है हमारे पास में रश्मि का, वो लिख रही है कि एक डायलॉग सुनते सुनते सुनते सुनते इतनी बड़ी हो गई, घर है कोई धर्मशाला नहीं कि तुम्हारे हिसाब से चलेगा। भाई ये भी एकदम सुपर डुपर हिट डायलॉग है, मम्मियों का नो डाउट कहीं पर बोला जाता है कि होटल समझ रखा है क्या, जब भी मन किया घर चले आए, कहीं कहा जाता है कि धर्मशाला बना कर रखा हुआ है। बट यस, ये डायलॉग भी बड़ा फेमस है जो मुझे लगता है यूनिवर्सल टाइप का है, सदियों से मम्मियां बोलती रही हैं और सदियों तक शायद आगे भी बोलती रहे हैं ना। तो आपकी मम्मी का अगर कोई खास डायलॉग है जो कि आपको याद आ रहा है तो प्लीज प्लीज प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। हमारा ईमेल आईडी वही पुराना, fmakashwani@gmail.com। मेरा नाम ज्योति मिश्रा और आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो।

ढेर सारे ईमेल्स मेरे सामने आ गए हैं। बाबू अंसारी जी का ईमेल है देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से। ये लिख रहे हैं कि प्रोग्राम पसंद आ रहा है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि आई लव माई मॉम। जी हाँ, माँ से तो हम सभी प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ है तभी तो हमें, माँ की ही वजह से तो हम इस दुनिया में आए। और मुझे लगता है हर रिश्ते से 9 महीने पुराना होता है ये रिश्ता, और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा पुराना, क्योंकि हम अपनी माँ के ख्वाबों में, उसके ख्यालों में तो इस दुनिया में आने के बहुत पहले से आ जाते हैं, है ना। एमन नवाब का भी ईमेल है, इन्होंने लिखा है मेरी मम्मा का फेमस डायलॉग, ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं सुनती है, अभी इसको मारेंगे। अगर पढ़ती भी नहीं दिखाई दी तो इसके स्कूल बैग में आग लगा देंगे। और जब प्यार आ गया तो मेरा राजा बेटा, मेरा अनु। दैट्स सो स्वीट। यही होता है ना कि मतलब मम्मी के तो चैनल इतनी तेजी से चेंज होते हैं कि पूछो मत। पहले नाराज हो गई तो कहिए आपको पता नहीं क्या क्या सुना दिया, हो सकता है कि मतलब डिशुम भी कर दें, और 5 मिनट के अंदर खुद ही रोना भी शुरू कर दें, है ना। क्योंकि जब हमें दर्द होता है ना तो दरअसल चोट तो मम्मी को लगी होती है। एम के राज यानी मुनीश कुमार राज जी का ईमेल आया है, इन्होंने लिखा है माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, माँ से बढ़कर कोई ना दूजा, गीले में सोकर सूखे में सिलाती है, आप चाहे भूल जाओ मगर माँ नहीं भुलाती है, तुम्हारे दर्द को देखकर खुद के दर्द को भूल जाती है, कुछ भी हो जाए मगर माँ को कभी ना भुलाना, इसके बराबर किसी की नहीं हो सकती तुलना। बिल्कुल सही बात आपने कही। माँ का रिश्ता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, ये सबसे अलग होता है, सबसे जुदा होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि सिर्फ मीठी मीठी बातें अगर हम करते रहें तो फिर मतलब थोड़ा सा तो चटपटा, थोड़ा सा तो स्पाइसी होना चलता है, बनता है ना। तो अगर आपकी मम्मी का कोई ख़ास ऐसा डायलॉग है जो कि आपको लगता है कि एकदम ज़बरदस्त है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक और भी डायलॉग है जो कि रुखसार ने शेयर किया है हमारे साथ, वो है कि जब मैं नहीं होंगी ना

माँ की कद्र पता चलेगी। जी हाँ, ये भी एक यूनिवर्सल डायलॉग है जो तकरीबन हर घर में माँ बोलती है। और जैसे ही ये डायलॉग मम्मी के मुंह से आता है ना, हम एकदम इमोशनल हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं, लगता है अरे मम्मी आप जो कह रही हैं हम बस वही कहेंगे और वही करेंगे, बस आप ऐसी बात मत करिए। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या?

एक और भी बात होती है मम्मियों की बड़ी स्पेशल, खुद अपने बच्चे को कुछ भी कह लें लेकिन अगर किसी और ने कुछ कह दिया फिर आप देखिए, क्योंकि उनके लिए तो उनका बच्चा, उनका राजा बेटा, उनका जिगर का टुकड़ा, उनकी रानी बेटी, उनकी चांद सितारा सब कुछ होती है ना, भले ही

उससे में वो कुछ कहे कुछ करे लेकिन दिल से तो वो यही चाहती है ना कि कोई और उनके बच्चे को कुछ और ना कहने पाए कुछ और करने ना पाए। इसीलिए मतलब कहते हैं ना कि जिसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं ना दुनिया उसके लिए बड़ी जेंटल हो जाती है। अगर आप अपने माता पिता से डांट खा लेते हैं तो दुनिया आपकी बड़ी इज्जत करती है क्योंकि आप में अच्छी आदतें पड़ जाती हैं। तो मम्मी के हर ताने के पीछे हर डायलॉग के पीछे कितनी बड़ी कहानी होती है कभी सोच करके देखिएगा। क्योंकि दिल से तो वो हर वक्त यही चाहती है ना कि सारी दुनिया में मेरे बच्चे का नाम हो हर कोई इसकी इज्जत करे उस तक कोई भी परेशानी पहुँचने ना पाए और इसीलिए तो जन्म लेते हैं ऐसे ऐसे डायलॉग्स है ना। एक ये डायलॉग तो छूट ही गया था। सुधाकर जाधव जी बोल रहे हैं कि बचपन में हमने बहुत मम्मी की चिल्ला चिल्ली सुनी है। ये भी सुना है कि बच्चों ढींगा मस्ती मत करो किताबें ठीक से पढ़ो तुम्हारे पापा को आने दो। ओके ये वाला डायलॉग तो भाई मैंने भी बहुत सुना है कि आने दो पापा को देखती हूँ फिर। और सच जानिए कभी पापा ने कुछ भी नहीं कहा लेकिन मम्मी का ये डायलॉग सुनते ही कुछ ऐसी गिग्गी बनती थी कि जो भी मम्मी को कराना होता था मतलब पढ़ाई हो घर के काम हो कमरे की सफाई हो बस इस डायलॉग के थ्रू करा लेती थी। आज बैठ करके जब सोचती हूँ तो लगता है कि ये डायलॉग इतना वर्क क्यों करता था भाई। पापा ने तो कभी आवाज ऊंची करके भी बात नहीं की लेकिन फिर भी आने दो अपने पापा को आज तो बस तुम देखना। ये डायलॉग भी एक यूनिवर्सल डायलॉग है जो मुझे लग रहा है कि सालों से काम करता रहा है। राग रामेश्वर जी का ईमेल है, इन्होंने लिखा है माँ के लिए आलोक श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक गजल बड़ी मुझे पसंद है। धूप हुई तो कोने कोने आंचल बनकर छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा, आतिश अंगारे झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। भाई वाह क्या बात है, कितना प्यारा कितना मीठा लिखा है आलोक श्रीवास्तव जी ने। मोनू सेठ जी लिख रहे हैं, माँ दिवस पर बस रोना आता है, सबकी स्टोरी में माँ साथ है लेकिन मैं अपनी स्टोरी कैसे लगाऊं। मोनू जी दिल में झांक कर देखिए, माँ हमेशा आपके साथ है, आपकी हर बात में आपके संस्कारों में आपके ख्यालात में हर चीज़ में आपकी माँ हमेशा आपके साथ रहने वाली है। और अगर हमें कभी ये महसूस होने लगे ना कि माँ साथ नहीं है तो उस वक्त अपने किसी भाई बहन का चेहरा थोड़ी देर देख लीजिएगा, किसी में तो माँ की झलक ज़रूर मिल जाएगी, हो सकता है आप ही में हो वो झलक, है ना। मुनेश कुमार राज ने लिखा है मेरी माँ की बात याद आ गई और ये कि जब कभी बर्तन तेज पटक रही है तो मतलब बहुत ही गुस्सा है। और हाँ ये वाला डायलॉग बहुत अच्छी बात आपने लिखी है, इन्होंने लिखा है कि पैसे पेड़ पर नहीं फलते जब कभी कमाओगे तब पता चलेगा। भाई हाँ ये तो भूली पड़ी थी मैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने याद दिला दिया मुनेश कुमार राज जी। ये भी डायलॉग हम सब ने अपनी मम्मी से सुना है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते जब कमाओगे ना जब खुद मेहनत करनी पड़ेगी तब पता चलेगा। नीलू शर्मा ने रूपपुर चंदेला से लिखा है हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूँ, जब हंसती है माँ तो हर गम भूल जाता हूँ, माँ की ममता अनमोल रतन उसे रोशन मेरा तन मन, दर्द छुपा ले मुस्कुरा कर रख दे खुशियां बिछा कर, वो माँ के ही आंचल के तले जन्नत है। सारे सुनने वालों को नीलू शर्मा सारा पीहू रोशनी और बबीता को भी एंड मैथ्स दी, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ इसको जो आपने लिखने की कोशिश की है शायद सही पढ़ा है, हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी आप सबको भी ढेरों ढेर शुभकामनाएं। प्रवीण जी मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं, ये रहे आंखें हैं या बटन। भाई भाई भाई क्या याद दिला रहे हैं आप, मतलब ये भी बहुत बहुत बहुत ही कॉमन डायलॉग है, देर से नहाएगा तो तेरे कपड़े नहीं धुलूंगी, खाना क्यों नहीं खा रहा, नहा ले नहीं तो चेहरे पर फुंसियाँ हो जाएंगी। कितने सारे डायलॉग आपने लिख दिए प्रवीण जी और सभी एक से बढ़कर एक। और ये वाले जो है ना कि आंखें की बटन, भाई मुझे लगता है पता नहीं मम्मियों में ऐसा क्या होता है कि जो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं मिल रही होती है सेम जगह आप 10 बार देख चुके होते हैं।

अचानक मम्मी आएगी और वहीं से वो चीज़ दे देगी। ऐसे में मम्मी का इरिटेट होना तो बिल्कुल लाजमी है ना, लेकिन मम्मी कहाँ से पा जाती है वो चीज़ें, ये सीक्रेट अनकोड करना मतलब डीकोड करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। पिंकू सोनी परिजात धाम टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे बोल रहे हैं सबको। तो जी हम सब की भी तरफ से आप सबको ढेरों ढेर बधाइयां आज के खास दिन की। तो चलिए बस इसी के साथ भी प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो चला है, 1:53 और ठीक 24 सेकंड्स होने वाले हैं। अपनी अपनी घड़ियां मिला लीजिए, अभी आपके साथ कई घंटे रहने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये जो कुछ घंटों का आपका और मेरा साथ है ये बहुत खूबसूरत साबित होगा। अगले पूरे घंटे हॉटमेल में आपकी ईमेल्स पढ़ूंगी और उसके बाद सतरंगी दुनिया में आज का रंग होगा थोड़ा स्पेशल, थोड़ा सा डिफरेंट, बिल्कुल क्लीशे टाइप का नहीं होगा। तो प्रोग्राम ज़रूर सुनते रहिए क्योंकि आज ज्योति लेकर आई है आपके लिए बहुत कुछ बेहद ख़ास।

0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: है जगह,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार और सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था से कहीं अधिक कारगर है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में रायबरेली स्थित आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना में जनभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। विभिन्न सत्रों में आयोजित चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हमें अपने अनुभवों का उपयोग समाज कल्याण के लिए करना चाहिए। गुजरात में आयोजित चिंतन शिविरों के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन व्यवहारिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा एवं क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में आज मेरठ में जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इसमें सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों, स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक अध्याय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर सभी अमर शहीदों और वीर क्रांतिकारियों को विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, ये महासमर परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने का साहसिक और संगठित प्रयास था, जिसने संपूर्ण राष्ट्र में आजादी की अलख जगाई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के प्रवक्ता संवर्ग के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का दूसरा चरण जारी है। आज की पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है तथा पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रदेश में आज हुए अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आगरा में सुबह एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों में से पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर हापुड़ में गंगा एक्सप्रेस वे पर एक टैंकर के डिवाइडर से टकराने से 2 महिलाओं समेत 8 माह के बच्चे की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अयोध्या में राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य

तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज कहा कि राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राण न्योछावर करने वाले कारसेवकों की स्मृति में मंदिर परिसर में एक शहीद स्तंभ बनाया जा रहा है जो 15 जून तक तैयार हो सकता है। श्री मिश्र ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। ट्रस्ट कार्यालय और अत्याधुनिक म्यूजियम का निर्माण भी जारी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 3 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

107 FM रेनबो पर अब वो वक्त जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और वे क्यों ना करें। 2:04 हो चुके हैं और 3 बजे तक का टाइम है बस आपके नाम। आपके नाम बोले तो बस आपकी ही पसंद के सॉन्ग्स प्ले होने वाले इस पूरे घंटे, आपके ही ईमेल्स पढ़े जाने वाले हैं। इन अदर वर्ड्स दरअसल इस प्रोग्राम के स्टार तो आप ही होने वाले हैं। तो भाई जल्दी जल्दी ईमेल्स भेजते रहिए और ज्योति क्या करेगी, ज्योति पढ़ेगी उन ईमेल्स को, सुनाएगी आपकी पसंद के गाने भी। fmakashwani@gmail.com ये है हमारा ईमेल आईडी और ये सॉन्ग जो कि आप फिल्म प्रेम रोग से सुन रहे हैं इसकी फरमाइश आप ही में से किसी ने की है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, इस पूरे घंटे सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंद के गाने विद योर मैसेजेस।

ऐसे कैसे कोई नहीं ऑफ कोर्स हम हैं ना हमेशा आपके साथ आज भी कल भी हर वक्त और सुबह 6 से रात के 12 बजे तक तो यूं भी आपके साथ बने रहते हैं हम यानी 107 एफएम रेनबो जो कि है ना सिर्फ धड़कन लखनऊ की बल्कि धड़कन आपके दिल की भी है ना ढेर सारे ईमेल्स हैं मेरे सामने तो चलिए भाई सिलसिला शुरू किया जाए वकील अहमद साहब का ईमेल है इन्होंने लिखा है बस स्कूल से आए और मोबाइल देखने लगे ये डायलॉग मेरी माँ का है आगे इन्होंने लिखा है बड़े से बड़ा मकाम छुआ उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर से रामपुर से चंदन टुरेहा ने लिखा है दवा जब काम नहीं आती तो वो नजर उतार देती है माँ है वो साहब हार कर भी जीत का उपहार देती है बाबू अंसारी साहब लिख रहे हैं गाने की फरमाइश की है और साथ में लिखा है कि प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज गाना सुना दीजिए भाई इतना प्लीज प्लीज प्लीज मत लिखिए हम प्लीज हैं कि आपने अपना टाइम निकाला हमें ईमेल किया और गाने की फरमाइश की क्योंकि आप हैं तभी तो ये प्रोग्राम है ना

I am Umrah Ansari, Huzba Ansari, Srinagar, Lakhimpur से. ओके, तो दो लोगों ने मिलकर के किया है और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है. रविंद्र मोहन जी ने लिखा है, कोई भी गाना सुना दीजिए. किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी ने मिल करके हमें ईमेल किया है. सोमदत्त जी का भी ईमेल है, नाभा जिला पटियाला पंजाब से. सोमदत्त कह रहा है, ज्योति रानी मतलब मेरी हम नाम, गुरमंत कौर मनु, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है. बोधराज खोरवाल का भी ईमेल आया है. कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश के साथ मिलजुल कर. धर्मेंद्र कुमार का भी ईमेल है, प्रजापति धर्मेंद्र कुमार प्रजापति. शबनम कुमार महकमीना प्रजापति. मीरकपुर दरियाबाद जिला बाराबंकी से इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है. तो भाई, फरमाइशें पूरी करने की पूरी कोशिश होगी, बस थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस. और फिलहाल जो गाना आप तक पहुंच रहा है वो है फिल्म सत्यमेव जयते से, और इसकी फरमाइश भी आप ही में से किसी ने की है. 2:14 और ठीक 8 सेकंड्स हो रहे हैं. अगर आप भी कोई खास गाना सुनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं. अगर यूं ही दिल की कोई बात साझा करना चाहते हैं तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है वही पुराना जो कि आपको अब तक रट गया होगा, fmakashwanilakhnow@gmail.com. मेरा नाम है ज्योति और हम मिले हैं FM रेनबो पर.

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप एंड कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, इन सब ने मिल करके मेल किया है और एक गाने की फरमाइश की है। भाई आपकी गाने की फरमाइश तो फॉर श्योर पूरी होगी होगी, लेकिन मज़ा तब आता है जब आप कुछ बड़ा मज़ेदार से लिख करके भेजते हैं अपने ईमेल्स में। मतलब ये कोई लतीफ़ा हो सकता है, कोई कोट हो सकता है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, किसी की कहीं बात हो सकती है, कुछ भी ऐसा मज़ेदार जिसे कह के आपको अच्छा लगे और सुनकर हमारे श्रोताओं को मज़ा आ जाए, है ना। ठीक है, इतनगर बाराबंकी से मेल कर रहे हैं पिंकू सोनी जी। लिखते हैं कि मेरा बस इतना कहना है कि आप कभी वो बातें किसी और से ना कहिए जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, बहुत छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी, बहुत ही गहरी। कुलदीप जी उधौली से और आकाश जी मूरापुर दरियाबाद से, इन सब के साथ मिलकर के इन्होंने ईमेल किया है। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, इन्होंने भी ईमेल किया है गाने की फरमाइश के साथ। सोनू परवाना लिखते हैं, आज रोटी के पीछे भागता हूँ तो याद आता है माँ, रोटी खिलाने के लिए माँ मेरे पीछे भागती थी, बस यादें हैं, अब मेरी माँ मेरे पास नहीं। सोनू जी आई टोटली अंडरस्टैंड, ये माँ ही है जिसे हर वक्त ये चिंता होती है मेरा बच्चा सोया कि नहीं, मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, मेरा बच्चा किसी तकलीफ में तो नहीं। बाकी तो अब क्या बोले, इतनी तेज जिंदगी भाग रही है कि किसको किसी के लिए सोचने की फुर्सत है। मैनुद्दीन अंसारी जी ने ईमेल किया है, साथ में है साजिदा अंसारी, जिया अंसारी, आतिका अंसारी, सलमा अंसारी, फजिया अंसारी। प्रोग्राम में मज़ा आ रहा है जी, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है आप सब से बात करके, आप सब की बातें करके। प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज, अंशुमन ओवी, इन सबके साथ मिल करके ये ईमेल किया है प्रकाश बोरगांवकर जी ने। और आशीष यादव जी का ईमेल है, माँ ऐसी शख्सियत होती है हमारी जीवन में जिस दिन नहीं रहेगी सारी जिंदगी सूनी हो जाएगी। आई लव यू मॉम, इसीलिए तो कहते हैं कि जब माँ सामने है तभी उसकी कद्र करिए, सिर्फ उसके साथ सेल्फी डाल करके स्टोरी लगा देना ही मदर्स डे सेलिब्रेट करना नहीं है। माँ को ये एहसास दिलाना कि वो आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है ये भी तो ज़रूरी है ना। अच्छा होता क्या है कि हम जिंदगी में जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अक्सर उन्हें ही बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कुछ भी हुआ था मम्मी तो मुँह से निकलता है, लेकिन कभी मम्मी से नहीं पूछते कि मम्मी तुम्हें क्या चाहिए, मम्मी तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मम्मी क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा क्यों, हम क्यों किसी ख़ास लम्हे का, किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार करते हैं कि फला फला दिन हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ये तो ठीक नहीं है, है ना। तो भाई किसी इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, इसी लम्हे को ख़ास बनाइए, मम्मी के गले लग जाइए और कहिए माँ आप जितना प्यार मुझसे करती हैं उतना प्यार करना तो मुझे पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, बट ट्रस्ट मी आई लव यू अ लॉट।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा।

0: नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
3: दो बजकर 29 मिनट और ठीक 14 सेकेंड। वो कहते हैं ना कि तेरे साथ आके मेरा वक्त गुजर जाता है। आपके साथ जब होती हूँ तो कितनी तेजी से टाइम बीतता है कि बस पता ही नहीं चलता। आधा घंटा प्रोग्राम का पूरा हो चुका है और आपके बड़े शिकायती मैसेजेस आ रहे हैं। भाई नाम पढ़ दीजिए, गाना प्ले कर दीजिए, पूरा नाम पढ़िए, पूरा मैसेज लीजिए। जी पूरी कोशिश हो रही है, पूरी कोशिश हो रही है, थोड़ा सा पेशेंस। तुलसी मस्कीन जी का ईमेल है, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशव रिधान खुराना, हैप्पी मदर्स डे बोल रही हैं। ये ताज मोहम्मद साहब का ईमेल आया है, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। बड़ी दूर दूर से आप सब ईमेल्स करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों की खुशी के लिए अपने अनगिनत सपनों और सुखों का त्याग कर देती है ममता की छांव। भाई वाह, तुलसी मस्कीन का एक और ईमेल अभय प्रताप सिंह ने लिखा है, प्यार करके वो कभी बेवफा नहीं होती, एक वही है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। मैं समझ रही हूँ अपनी माँ की बात की है ना। अभय सिंह कल्याणपुर लखनऊ से ईमेल आया है, हमें भी शामिल करें, इंतजार कर रहे हैं। जी हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आपका ईमेल पढ़ सके। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ू कोलर कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, इन सब ने मिलजुल कर ईमेल किया है। दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह का भी ईमेल आया है, मुंदी चक भागलपुर बिहार से, आंज एंड एंड एंड सुजीत केशरी जी लिख रहे हैं, हम आपके नए लिसनर हैं, कुछ ही दिन हुए हैं रेडियो सुनते हुए जी, बहुत अच्छा लगा कि आप हमसे जुड़े। आगे लिख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पिपरिया से ईमेल किया है सुजीत केशरी, सुनील केशरी, झिलमिल केशरी, कृष केशरी अपना नाम सुनने का इंतजार कर रहे हैं। ये लीजिए जी, इंतजार आपका पूरा हुआ है ना। कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिस्तान रानी, नंदिनी और अंजलि का भी ईमेल आया है। एंड रमाकांत सिंह जी बोलते हैं, मातृ दिवस को साल में एक दिन नहीं हर दिन मनाएं, जीवन भर मातृ दिवस और पितृ दिवस होना चाहिए, तभी मातृ और पितृ दिवस सार्थक होंगे। मदनपुर जिला लखीमपुर खीरी से ईमेल किया है इन्होंने, ज्योति बहना शामिल कर लीजिए, कह रहे हैं सतीश अनेजा जी चंडीगढ़ सिटी से विमला अनेजा के साथ, गाने की फरमाइश भी इन्होंने की है। नैनन में है जलभरा आंचल में आशीष, तुमसा दूजा नहीं यहाँ तुम्हें नवावे शीश, रही लहू से सींचती काया तेरी देन, संस्कार सारे दिए अद्भुत तेरा प्रेम, माँ का प्यार दुनिया की सबसे सच्ची दुआ है, माँ घर नहीं पूरी दुनिया होती है, रातों को भी जाग कर हमें लिया है पाल, ऋण तेरा कैसे चुके सोचे तेरे लाल। मोनू सेठ जी ने ये खूबसूरत ईमेल किया है और एकदम सही बात आपने कही है, बहुत बड़ी बात कही कि दरअसल माँ के होने से ही घर घर जैसा लगता है। अब देखिए ना, हम जब छोटे भी होते हैं घर आए और अगर मम्मी नहीं है तो कैसा फील होता है, एकदम इनकम्प्लीट, पूरे टाइम बस ये लगा करता है कि बस मतलब कुछ भी हो मम्मी आ जाए, अगर मम्मी नहीं है तो घर आकर के फायदा ही क्या है ना। सयारा फिल्म का सॉन्ग बर्बाद, आप ही में से किसी एक की फरमाइश पर, आपके नाम आपके पास।

ज्योति सिस्टर को प्यार भरा नमस्कार आदाब। शेरवानी स्कूल गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी ने मिलकर के ईमेल किया है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यार भरा ईमेल पहुंचा है। जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मिर्जा, रिजवान भाई, सबसे पहले ज्योति बिटिया को प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। माँ तो माँ होती है, आगे शब्द नहीं है। धन्यवाद। इतनी मोहब्बत आप सबसे मिलती है, कोई इतने प्यार से बिटिया बोलता है, कोई इतने प्यार से बहन बोलता है, कोई इतने प्यार से दोस्त बना लेता है, कोई इतनी इज्जत देते हुए मैम लिख देता है। सच कभी कभी लगता है कि कितनी खूबसूरत जिंदगी है ना, और कोई क्या चाह सकता है अपने जीवन से। तो आप अगर मेरी बात कहें तो मैं बस स्पीचलेस हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आप सबकी मोहब्बत के लिए। लेकिन हाँ, कभी कभी बड़े गुस्से वाले भी ईमेल आ जाते हैं। आपको ईमेल पसंद नहीं आया क्या? आपने सिर्फ नाम लिया, आपने हमारी पसंद का गाना नहीं प्ले किया। अरे भाई, ठहरिए ठहरिए, रुकिए थमिए। जो मैंने पहला गाना प्ले किया था जिनकी पसंद का था, वो अभी बार बार उसी वाली, मतलब प्रेम रोग फिल्म का ये गली है चौबारा, बार बार बार बार मुझे ईमेल कर रहे हैं कि आपने गाना प्ले नहीं किया। अब आप ही बताइए, ये गाना प्ले हुआ है ना? सबसे पहले प्ले हुआ है, मुझे लगता है आपने सुना ही नहीं। कभी कभी बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपने हमारी जगह का नाम नहीं लिया। भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त की कमी होती है या फिर जगह का नाम छूट जाता है। और हाँ, ये वाली

दैट आपने हमारा ईमेल नहीं पढ़ा. जी कभी जानबूझकर ऐसा नहीं होता. होता क्या है कि इस प्रोग्राम में इतने सारे ईमेल आते हैं कि कभी कभी कोई कोई ईमेल मिस हो जाता है. हालांकि आप जानते हैं लास्ट में मैं सबके नाम लेने की कोशिश करती हूँ. फिर भी अगर बाई चांस आपका नाम मिस हो गया तो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, है ना. वैसे अभी इसके बाद भी मुझे आपके साथ बने रहना है पूरे 4 बजे तक. तो अगले प्रोग्राम में मेल कर सकते हैं, मैं उस प्रोग्राम में भी ईमेल ले लूंगी. फाइन, चलेगा ना. थैंक यू. इसी को तो कहते हैं दोस्ती, इसी को तो कहते हैं मोहब्बत, इसी को तो कहते हैं प्यार. राजकुमार डूडी का भी ईमेल आया है. प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी के साथ मिल करके संदीप मक्कड़ जी ने, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरिया, जलंधर से ईमेल किया है. एमके राज साहब का एक और ईमेल. तकरीबन हर प्रोग्राम में ये ईमेल करते हैं. इन्होंने लिखा है, कम से कम एक गाना तो माँ के नाम बजा दीजिए. भाई आपने गुड मॉर्निंग में भी ढेर सारे गाने सुने माँ के नाम, और अभी आप बाकी के बचे टाइम भी ढेर सारे गाने सुनेंगे माँ के नाम, है ना. फिर भी आपने कहा है तो मैं कोशिश जरूर करूंगी. वैसे आपको याद दिला दूं कि रात का भी प्रोग्राम अभी बाकी है, तो वही वही गाने के आप बार बार सुनना चाहेंगे, नहीं ना. एंड यस, आपने जो कहा कि एक गाना तो बजा दीजिए, हेल्थ एंड फिटनेस में जो पहला गाना बजा था ना, वो था मम्मा, याद आया. आगे लिखते हैं, माँ का कर्ज कभी अदा नहीं होगा, माँ का ऐसा रिश्ता है कि फिर कभी कोई जुदा नहीं होगा. गाने डेडिकेट कर रहे हैं मुझे और मेरे साथ साथ और भी ढेर सारे लोगों को. ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी ने ईमेल किया है. हिंदुस्तान रेडियो मित्र, बन्ने बुजुर्ग, पलेरा टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से. तो चलिए अब रुकते हैं, थमते हैं और आप भी से किसी एक ही पसंद का ये गाना प्ले करते हैं. फिल्म का नाम सपने साजन के. इस गाने का खूबसूरती, मतलब इस प्रोग्राम की यही तो ब्यूटी है, यही तो खूबसूरती है कि कई बार ऐसे गाने सामने आ जाते हैं जिन्हें शायद हम भूल चुके थे.

भाई भूलने की तो कोई बात ही नहीं है। कैसे भूल सकती हूँ कि टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आपके ढेर सारे ईमेल्स मेरे सामने, कुछ ईमेल्स काफी नाराजगी के भी हैं। मेरा मेल कहाँ गया, शामिल करें, काफी देर हो गई। ये कह रहे हैं नबी हसन साहब। तो जी आपकी नाराजगी सर आंखों पर, पूरी कोशिश हो रही है आप सबके ईमेल्स को पढ़े जाने की। ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं, ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं, जो दिल करे मोहब्बत वो दिल तेरे पास नहीं। अगर मैं होता बादशाह तो कानून ऐसा बना देता कि दिल तोड़ने वाले को सजाए मौत सुना देता। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे ये सारी बातें मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी, बहुत ही जबरदस्त। वकील अहमद साहब लिख रहे हैं, मदर्स डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, माँ साथ है तो उसकी कदर क्या करो। फुरकान अली मोहम्मद उमर जी, बिल्कुल ठीक बात है, माँ की तो कद्र करनी ही चाहिए। जावेद अख्तर साहब का भी ईमेल आया हुआ है और ये कह रहे हैं रेशमी नगरी मुबारक पुर आजमगढ़ से शमसुल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा शाहीन तूबा आफरीन शमीम अख्तर अंसारी के साथ ईमेल कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। डीकेपी परिहार, कार्यक्रम हॉटमेल, समय 2:45, मैसेज भेजा फिक्स 2 बजे, कोई अता पता नहीं आखिर कितना इंतजार करें और कितने मैसेज भेजने पड़ेंगे। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, आखिर में हमें सिर्फ मायूसी मिलती है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार, भाई

ये बात तो ठीक नहीं है, नॉट फेयर। आपके ईमेल तो डेली पढ़े जाते हैं, आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं दोस्त, कैसे ऐसी बात कर सकते हैं। सुनील पाठक जी का भी ईमेल आया हुआ है, ये लिख रहे हैं किसके साथ मिलजुल कर कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक जी लिखा है, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, आपका दिल से शुक्रिया। अरे ज्योति मैम, मेरा मेल भी शामिल करो, हम भी सुन रहे हैं। ये लिख रही है साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, मैक अंसारी, ममता, निशा अंसारी, संदीला से। भाई ईमेल ज़रूर शामिल हो रहे हैं और होंगे। अब देखिए, जावेद अख्तर साहब ने ईमेल पहले भी किया था, उनका ईमेल पढ़ा गया, फिर इन्होंने भेज दिया। इसमें होता क्या ना कि कई बार ईमेल्स नीचे कहीं खो जाते हैं, तो तभी तो कहती हूँ कि एक बंदा अगर एक ही ईमेल करे तो सबको मौका मिले, है ना। गावन थाना से पंजाब हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी कहते हैं खुश रहो और खुशियां बांटो। जी बहुत खूबसूरत बातें आपने कही हैं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं खुश रहने की और आपको भी खुशियां बांटने की। कितना सक्सेसफुल हुए ये तो आप ही बताएंगे। फिलहाल एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, आप ही में से किसी का फरमाइश किया हुआ ये गाना फ्रॉम द मूवी खलनायक। अब मत कहिएगा कि माँ के ऊपर तो आपने कोई गाना ही नहीं प्ले किया। अब भाई माँ के नाम एक गाना क्या प्ले किया जाए, भाई माँ तो पूरी कायनात है ना। लेकिन फिर भी गाने तो आप तक पहुंच रहे हैं, माँ के भी, बच्चों के भी, हम सब के भी।

कितनी सही बात है ना अपना बच्चा तो हर माँ को बहुत प्यारा होता है सिर्फ माँ ही है जिसका प्यार कहा जा सकता है कि बिल्कुल सेल्फलेस होता है ना तो एक बार फिर से हम सबको मातृ दिवस की मदर्स डे की ढेर सारी बधाइयाँ टाइम बहुत कम बचा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके नाम पढ़ लूँ धर्मेंद्र छिपा जी नॉट फेयर नॉट फेयर बिल्कुल ठीक बात नहीं है आपका नाम आपका मैसेज शामिल हुआ है डी के पी परिहार राधे कुमार लोकेश संतोष एंड सुधाकर जाधव और विजय महोबिया रोजी डी कैस्ट्रो साई गायकवाड़ रमेश कुमार योगमाया राजू मिगलानी

नवि हसन, शाहरुख नूर अंसारी, हीरमणि वर्मा, नीलू शर्मा, विजय महोबिया, कमलकांत गुप्ता, धर्मवीर भारती, गुलफशा सिद्दीकी, रोहित सक्सेना, दीपेश वर्मा, लोकेश संतोष काले, उत्तम कुमार भगत, आफताब अंसारी, सुजीत केशरी, लुबना अंसारी एंड संतोष काले जी, डीकेपी परिहार, वंस अगेन टीडी मल्होत्रा, अहमद फूल वाले, संदीप मक्कड़ जी, आंचल सेठ, मोइनुद्दीन अंसारी, अशोक कुमार जी, वकील अहमद, सदानंद मंदूरकर, सतीश अनेजा, रेणु मल्होत्रा, कृष्णकांत सिंह, आफताब अंसारी, दिनेश वर्मा, सफरुद्दीन अंसारी, राहत हुसैन, आफताब अंसारी, अजीत भावस्कर एंड दीपेश वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ईमेल्स के लिए। भाई देखिए, हो सकता है आपका ईमेल डिटेल में ना पढ़ा जा पाया हो, क्योंकि प्रोग्राम तो एक ही घंटे का होता है ना, हो सकता है कि आपकी पसंद का सॉन्ग भी आज प्ले ना हो पाया हो, बट इस प्रोग्राम के ज़रिए आप और हम एक दूसरे से जुड़े, मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड आई एम श्योर आपने भी इंजॉय किया होगा। तो अगली बार पूरी कोशिश की जाएगी कि जिनके ईमेल्स आज शामिल नहीं हुए या जिनकी पसंद के गाने आज प्ले नहीं हो पाए, उनको मौका मिले। ओके डील। तो बस इसी के साथ ज्योति जाती है इजाज़त इस वाले प्रोग्राम से। ये खूबसूरत गाना फिल्म हिना का आप ही में से किसी एक की फरमाइश पर मैं थोड़ी देर में फिर मिलूंगी लेकर सतरंगी दुनिया मदर्स डे स्पेशल। मदर यानी एक ऐसा ऐप जो कभी नहीं मांगता अपडेट।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का अब से थोड़ी देर बाद विस्तार किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। राज्य सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद के अनुसार लखनऊ के जनभवन में दोपहर 3 बजे से शपथ ग्रहण होगा। 403 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में मंत्रिपरिषद में 60 सदस्य हो सकते हैं। फिलहाल 6 पद रिक्त हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज मदर्स डे के अवसर पर जनभवन से श्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत यात्रा आनंदी माँ एक जीवन बचाओ अभियान का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। रैली के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य, कैंसर जागरूकता एवं स्वस्थ भारत के संकल्प को लेकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य केवल परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मजबूती का आधार है तथा समय पर जांच एवं जागरूकता से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम संभव है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग के 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आज दूसरा चरण जारी है। पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है तथा पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से जारी है। इसी क्रम में हमीरपुर में जनगणना 2027 के अंतर्गत मीडिया डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों एवं पत्रकारों ने स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि वे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर

जो उल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र है और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनेडिला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। हंता वायरस से संक्रमित होने पर रोगी को सांस से जुड़ी हुई समस्या होती है। ये वायरस गुर्दे और धमनियों को भी प्रभावित करता है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 4 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: Subah ki khoobsurat shuruaat.
3: Love you zindagi. Love you zindagi.
1: Sukoon se bhara dopahar.
4: Purani jeans aur guitar.
1: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।

0: हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ ज्योति और अब आप सुनने वाले हैं प्रोग्राम सतरंगी दुनिया। तो दोस्तों, आज की डिजिटल दुनिया में हर चीज के लिए एक ऐप है ना। खाना मंगाना हो तो ऐप, रास्ता ढूंढना हो तो ऐप, और हर दूसरे दिन ये ऐप्स मांगते हैं अपडेट। पर क्या आपने कभी सोचा है, हम सब के पास एक ऐसी सुपर ऐप है जो बिना अपडेट के, बिना वाईफाई के और बिना सब्सक्रिप्शन के लाइफ टाइम चलती है फ्लॉलेसली, और वो है हमारी माँ। तो आज के मदर्स डे के दिन डेडिकेट करती हूँ ये स्पेशल प्रोग्राम हम सबकी माँ को।

दुनिया की अकेली ऐसी डिवाइस जिसमें सीसीटीवी, वेदर फोरकास्ट एंड हेल्थ डायग्नोसिस पहले से इंस्टॉल्ड आता है। आप कितना भी कहते रहे माँ ठीक हूँ सब ठीक है, लेकिन माँ डिटेक्ट कर लेती है कि बेटा कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, या तुम्हारा एग्जाम ठीक नहीं हुआ, या किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, या फिर शायद सर दर्द हो रहा है। गूगल अभी क्लाउडी वेदर बोल ही रहा होता है कि माँ कह देती है चल चल चल जल्दी जा छत से कपड़े उतार, बारिश आने वाली है। और हो सकता है कि वेदर फोरकास्ट फेल हो जाए, लेकिन माँ की फोरकास्ट कभी गड़बड़ होती है, हो ही नहीं सकता। तो ऐसी पावरफुल ऐप के होते हुए क्या हमें किसी और टेक्नोलॉजी की जरूरत है? भाई मुझे तो नहीं लगता।

0: ऐसा क्यों होता है कि माँ का नाम ही एक अजीब सा सुकून ला देता है? ऐसा क्यों होता है कि कभी भी जिंदगी में कुछ होता है तो बस लगता है कि माँ से बात कर लेते। माँ के पास हर चीज का सलूशन भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी माँ के साथ होने में ऐसा क्यों लगता है कि प्रॉब्लम उतनी भी बड़ी उतनी भी गहरी नहीं है? और जो एक बड़ी खूबसूरत बात इस गाने में कही गई ना, कि ना होते हुए भी माँ होती है ना, कुछ वही बात लगती है कि जब माँ आपके साथ नहीं भी रह जाती है तब भी उसकी यादें, उसका एहसास कभी भी आपसे जुदा हो ही नहीं पाता। क्या करे, माँ ये एहसास, ये नाम है ही कुछ अलग। अब चाहे आप मॉम कह लें, मम्मी कह लें, आई कह लें, माँ कह लें, जो भी कह लें, लेकिन पता नहीं क्यों सिर्फ एक ये संबोधन कितना जादू भरा है कि जहाँ आपने माँ का एहसास महसूस किया, आपको लगता है कि सब ठीक हो ही जाएगा।
1: वो स्पेशल इसलिए है, सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू स्पेशली माई मदर, मम्मी, ये आपके लिए है और दुनिया में जितनी भी माए हैं उन सब के लिए है ये गाना।
0: तो सारी मम्मियों सुन लीजिए, नेहा कक्कड़ की ही मम्मी नहीं, आप सबके नाम भी है ये गाना। इतना पुराना राजा और रंक मूवी का बार बार रिक्रिएट किया जा रहा है।

0: कितनी भोली।
1: वाओ, जस्ट वाओ, और क्या कहा जाए, है ना।
2: स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड, कीप लिस्निंग टू FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अच्छा, आपने फिल्मों में माँ के ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दिया है? किस तरह वक्त के साथ माँ का रूप फिल्मों में बदलता जा रहा है। एक टाइम ऐसा था कि जब कभी भी माँ दिखाई जाती थी तो हीरो, जो कि मतलब अच्छा खासा 30-35-40 सालों का गबरू जवान हुआ करता था, वो दौड़ करके आता था हाथ में पेपर लेकर के। यस, ये उस जमाने की बात है जबकि रिजल्ट न्यूज़पेपर में आया करते थे। दौड़ा दौड़ा आता था, मॉम मॉम मॉम मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो गया। और माँ, बेटा तू आ गया। जी हाँ, खांसते हुई माँ

0: गले में फूकनी से फूक मारती हुई माँ, अपनी सफेद धोती से अपनी आंखें और नाक पोंछती हुई माँ, कुछ ऐसी हुआ करती थी उस जमाने की माँ। लेकिन अब धीरे धीरे धीरे धीरे चीजें बदल रही है। आज की माँ को आप देखिए, फिल्मों में भी इतना चेंज आ गया है कि आप कहें ओ माय गॉड। एंड यस, माँ को भी बदलने का हक है ना। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती, और वो है माँ पर लिखे हुए या माँ के मुंह से बुलवाए हुए सुपर डुपर हिट डायलॉग्स। एक डायलॉग तो मैंने अभी आपको बोला, कौन वाला? बेटा मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, अब बस तू एक चांस ही बहू ला दे। मतलब अभी अभी तो कॉलेज का रिजल्ट निकला है, मम्मी जी टेक अ चिल पिल, तुरंत आपको बहू भी चाहिए। एंड यस, वो खानदानी कंगन जो कि माँ खत से लेकर के तैयार रहती थी अपनी बहू के हाथों में पहनाने के लिए, वो कैसे भूल सकते हैं आप। एंड एंड एंड ये वाला आइकॉनिक डायलॉग
1: याद रखना दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे,
0: मेरे करण अर्जुन आएंगे,
1: आसमान का सीना चीर के आएंगे,
0: मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। 20 साल तक कहती रही राखी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। भाई आज का टाइम हो और बच्चे बिना कहे कहीं चले जाएं तो माँ बहुत स्मार्ट हो गई, खत से लोकेशन ट्रेस कर लेती है, कहती है चुपचाप घर चले आओ, टिंडे की सब्जी तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाई कुछ भी हो, माँ ऑफ कोर्स वक्त के साथ बहुत बदल गई है, बहुत स्मार्ट हो गई है, लेकिन माँ के लिए बच्चों की फीलिंग्स में चेंज आए हैं क्या? भाई मुझे तो नहीं लगता। अब देखिए ना ये वाला डायलॉग।
2: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
3: मेरे पास माँ है।
0: हाय क्या डायलॉग था, मेरे पास माँ है भाई। और जिसके पास माँ है उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही कहाँ है, क्योंकि माँ है तो मतलब माँ की दुआएं भी तो हैं। लेकिन इसके बावजूद आज की जनरेशन ये सोचती है कि जो करना हो कर लो, मम्मी को कहाँ पता चलने वाला है ना। कितने नादान हैं आप, क्योंकि मम्मी के पास तो वो सुपर पावर होती है जिससे सब कुछ पता चल जाता है। तो आगे मत कहना कि मम्मी को नहीं है पता, क्योंकि दरअसल मम्मी सब जानती है।

मतलब आपको लग कैसे गया कि आप मम्मी से कहेंगे नहीं और उनको पता भी नहीं चलेगा? वही कभी ट्राई करके देख लो। अगर मम्मी को पता नहीं चल रहा है तो वो इसलिए क्योंकि वो पता करना नहीं चाहती। इट्स एज सिंपल एज दैट। कभी इस गलतफहमी में मत रहिएगा दैट यू कैन फूल योर मदर, प्लीज। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं कि आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। मेरा नाम है ज्योति मिश्रा। प्रोग्राम का नाम है सतरंगी दुनिया और आज सतरंगी दुनिया में हम बात कर रहे हैं मम्मीज की। जी हाँ, वो सेट सेट टाइप की बातें नहीं कर रहे हैं जो कि सभी लोग करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कुछ इनपुट्स हैं, अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो करिए ना। हमारा ईमेल आईडी तो आपको रटा ही हुआ है, fmakashwani@gmail.com। फिलहाल लूंगी एक बहुत छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड देन वी विल बी राइट बैक।

0: है तार टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मम्मी का रूप ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि एक्चुअली हमारी जिंदगी में भी तो काफी बदल गया है ना। पहले हमेशा ये होता था कि मम्मी आगे आगे चल रही हैं और पीछे पीछे बच्चे उनका आंचल उनका पल्लू पकड़ कर चल रहे होता था ना। आज के टाइम भले ही मम्मियों ने साड़ी पहनना कम कर दिया है लेकिन जींस पहनने वाली माँ भी जब चल रही होती है तो उसके बच्चे उसी से लिपटे रहते हैं, उसी से चिपके रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ की खुशबू में जो सुकून है वो तो दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम में भी नहीं। आज की माँ अपना भी ख्याल रखती है क्योंकि उसे पता है कि वो फैमिली की धुरी है। अगर वो हैप्पी होगी, अगर वो खुश होगी, अगर वो स्वस्थ होगी तो पूरा परिवार स्वस्थ होगा। और इसीलिए वो अपनी फिजिकल अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपनी ब्यूटी का भी पूरा पूरा ध्यान रखती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बदलने का नाम ही नहीं लेती। मतलब ज्यादातर मम्मियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरलाइज नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ, बट यस आप सबने भी रियलाइज किया होगा कि हम में से कुछ मम्मीज डिजिटल हो गई हैं लेकिन उनका स्टाइल थोड़ा अलग है। इन मम्मियों का फोन चेक करके देखिए, उनके फोन की ब्राइटनेस इतनी तेज होती है कि अगर रात को उनका फोन खुल जाए तो बस ऐसा लगता है मान लो लाइट ही जल गई हो। एंड यस यस यस फॉन्ट साइज वो आप कैसे भूल सकते हैं। आप कोशिश करेंगे कि आपका फॉन्ट साइज बस इतना हो कि आप पढ़ सके और मम्मी के फोन का फॉन्ट साइज इतना बड़ा होगा कि आप काफी दूर बैठ करके भी देख सके कि मम्मी के व्हाट्सएप पर क्या मैसेजेस आए हैं। एंड एक और खास बात जो कि मम्मियों में नॉट इन एवरी मम्मी बट यस बहुत सारी मम्मियों में देखने को मिलती है वो है ये कि फोन की बैटरी चाहे फुल ही क्यों ना हो लेकिन अगर चार्जर दिख गया तो वो मोबाइल फोन में जरूर ही लग जाएगा। कुछ ऐसे जैसे वो एकदम मजबूत जोड़ वाली बात होती है ना, बिल्कुल वैसे। तो चीजें बदल रही हैं, मम्मीज खुद को ऑफ कोर्स अपडेट कर रही हैं लेकिन ये खास बातें ऐसा क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ मम्मी स्पेशल ही है। खैर जो भी है, है ये सारी बातें बड़ी क्यूट है ना, क्योंकि यही क्यूटनेस तो मम्मीज को बनाती है इनोसेंट। ऐसे भी मुझे बार बार लगता है कि हमारी मम्मीज मतलब कम से कम हमारी मम्मीज शायद वो लास्ट जनरेशन है जो कि इतनी क्यूट हैं, इतनी इनोसेंट हैं, इतनी मासूम हैं।
1: हेलो 9821026

0: BPL. अरे 9800026235 मैक्स टच। यार जिस लड़की को पटाने का वही फोन पर नहीं आती यार।
1: इन्हीं मम्मियों से अगर पूछा जाता है कि भाई बहन जी अपना नंबर दे दीजिए, तो फिर वो अपने बेटे से कहती है, अरे जरा गुड्डू मेरा नंबर क्या है बताना तो आंटी को। यही होता है ना, तो व्हाट इज मोबाइल नंबर, क्यों प्ले किया मैंने, अब समझ गए होंगे आप।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: तो भाई आज की माँ वो वाली माँ नहीं है जिसका दूसरा नाम सिर्फ त्यागी होता था। आज की माँ वो माँ है जिसका हर नाम ताकत है, हिम्मत है, प्रेरणा है ना? क्योंकि यूं भी माना जाता है कि बच्चे सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही सीखते हैं। इसीलिए तो आज वो ऑफिस भी संभालती है, बच्चे भी पालती है, परिवार को भी देखती है और अपना ध्यान भी रखती है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई माँ के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये मल्टीटास्किंग या तो माँ कर सकती है या फिर ऊपर वाला।

0: क्या सुना क्या मामा?
1: क्या
0: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस?
1: अरे सुनाई कहाँ दिया, ये नालायक विवेक बैटरी लाना ही भूल गया।
0: क्या यार विवेक?
2: अरे क्या भैया, मुझे क्या बोल रहे हो, आपको लाने को बोला था ना बैटरी।
0: कोई काम सब तो मैं ही करूँगा ना मामा, तू लाओ इधर।
3: अच्छा कुछ भी होता है तो ऐसा क्यों लगता है कि बस मम्मी से शिकायत कर दो और बस मम्मी ठीक कर देंगी। एक चीज़ और भी आपने नोटिस की होगी, बिल्कुल मेरी तरह मम्मियों में एक और भी बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क आया है टाइम के साथ। पहले मम्मियाँ बैठ करके अचार पापड़ी बनाने में अपना पूरा पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करती थी, है ना, और अपने बच्चों को ये भी कहती थी सीख लो नहीं तो ससुराल में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब मम्मियों का रंग कितना बदल गया है, अब वो बेटा हो या बेटी दोनों को घर के काम तो सिखाती ही है, साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होना कितना जरूरी है। माँ कितनी तेजी से बदली है और ये बदलाव बहुत मीठे हैं, बहुत सुखद हैं, है ना। वैसे कुछ और भी चीजें जो कभी कभी गुदगुदा देती हैं। अब देखिए ना, पहले मम्मियाँ स्वेटर की डिजाइन डिस्कस करती थी, अब आज कैंडी क्रश सागा के लेवल्स पार करती है। और हाँ कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब ज़्यादातर मम्मियों को बिल्कुल डिस्टर्बेंस पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें ये जानना

0: जरूरी है कि अनुपमा ने आज कौन सा नया फैसला लिया। अपनी लाइफ की टेंशन तो सब सुलझ जाती हैं, मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन गोपी बहू ने लैपटॉप क्यों धोया, ये भी एक नेशनल इशू बन के रह जाता है। और एक मिस्ट्री जिसे देखते ही, मतलब जिसके बारे में सुनते ही आपको अपनी भी मम्मी याद आ जाएगी। कितनी भी फैशनेबल माँ क्यों ना हो जाए, लेकिन हर इंडियन घर में मम्मी एक बड़ा सा बैग ज़रूर रखेंगी, जिसके अंदर और भी ढेर सारे प्लास्टिक बैग्स होंगे। मतलब बड़ा बैग, उसके अंदर छोटा बैग, फिर छोटा बैग, छोटा बैग, छोटा बैग, छोटा बैग, ढेर सारे प्लास्टिक बैग्स। अब ये कलेक्शन किस काम आता है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आप कहें फेंको ना मम्मी ये बैग क्यों रखे, तो खट से सुनना होगा, तुम्हें क्या पता मैं कैसे गृहस्थी चला रही हूँ, रखे रहो कभी ना कभी तो काम आएगा ही। और कब ये सब काम आया है या आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन फिर जैसा कि मैं कहती हूँ ना, हर सवाल का जवाब जानना ज़रूरी नहीं है ना, तो मम्मी को भी बस मम्मी रहने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए, उन पर ना ही तो एक्सपेक्टेशंस का बोझ डालिए और ना ही उनसे ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें करिए। हालांकि उन्हें सब पता होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम भी तो जाने ना कि उनके मन में क्या छिपा होता है, कोशिश कर सकते हैं, है ना।
1: हो गया बेटा, आ जाओ।

क्या कहा जाए, सब पता होता है माँ को, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर माँ पर ये बोझ क्यों कि उसे सब जानना सब आना ज़रूरी ही है। कभी तो माँ को भी इंसान रहने दो, माँ को भी खुल कर जीने दो, सांस लेने दो। हम कर सकते हैं, है ना। अब देखिए ना, हम कितनी भी खिंचाई कर लें, कितने भी हंसी मजाक कर लें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि माँ बस माँ ही होती है। उनका इमोशनल वाईफाई कभी भी वीक नहीं होता। आप कितनी भी एक्टिंग कर लें, मैंने पहले भी कहा ना, फ़ोन पर भी वो आपकी आवाज़ सुनकर जान जाती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, खट से पकड़ लेती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सेंसर, सबसे सटीक डायग्नोसिस माँ के पास ही है। कितने भी आप परेशान हो, कितने भी बीमार हो, माँ के आंचल में, माँ की गोद में सर रखने के बाद लगता है सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, वो कि सारी दुनिया बस मेरे ही बच्चे के पीछे पड़ी है, सुनकर ऐसा लगता है ना कि कोई तो है जिसे मेरी इतनी चिंता है, इतनी फिक्र है। माँ अपनी ज़रूरतों को रिसाइकिल करती है ताकि हमारी ख्वाहिशें हमेशा ब्रांड न्यू बनी रहें। मार्वल के सुपर हीरोज सिर्फ फिल्मों में होते हैं, लेकिन हमारी दुनिया की सुपर हीरो तो सिर्फ वो है जो खुद कितनी भी थकी क्यों ना हो, पूछती है, बेटा सब ठीक तो है ना, खाना खाया तूने, कुछ बना दूँ? तो इस मदर्स डे पर अपनी सुपर ऐप के फ़ोन की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करिए, उन्हें बैठ करके ये जो नई नई चीज़ें आई हैं ना, उनको ऑपरेट करना सिखाइए। अगर उन्हें स्टोरी डालना नहीं आता, अगर उन्हें स्टेटस अपडेट करना नहीं आता, तो प्लीज़ इरिटेट मत होइए, पेशेंस से बिल्कुल वैसे ही समझाइए, वैसे ही सिखाइए जैसे जब आप छोटे थे ना, तो उन्होंने हर बात बताई, उन्होंने हर बात समझाई। उनके साथ बैठकर उनका पसंदीदा सीरियल देखिए कि कैसे अनुपमा ने इतनी बहादुरी से अपनी परेशानियों का सामना किया। और याद रखिए, उन्हें बताना मत भूलिए कि वो ही दरअसल आपकी लाइफ का फास्टेस्ट प्रोसेसर है, क्योंकि माँ है तो सब है ना। मैं ही इमोशनल हो रही हूँ या फिर आपका भी गला रूंधा आया है? इससे पहले कि मेरा रूंधा हुआ गला मुझे प्रोग्राम ना करने दे, चलिए आगे बढ़ती हूँ और आपको सुनाती हूँ ये गाना। थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस, थोड़ा सा वक्त मुझे भी चाहिए इस वक्त।

0: अब लोरी कौन सुनाएगा?
1: ऐसा क्यों होता है कि जब माँ होती है तो हिम्मत सी बनी रहती है? ऐसा क्यों होता है कि जब माँ होती है तो लगता है सब ठीक हो जाएगा? शायद यही एहसास तो है, माँ का एहसास। ढेर सारे ईमेल्स आपके मुझे मिले आज के प्रोग्राम के लिए। विजय मौर्य, जग्गर राम साहू, रविंद्र मोहन दास, मानस वर्मा, बिट्टू गंगनेजा, दुर्गा राम साहू, शाहरुन नूर अंसारी, लालगिरी राधे कुमार विद्यार, मोनू सेठ, लोकेश संतोष काले और लोकेश और विजय महोबिया, इन सब के ईमेल्स आए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने प्रोग्राम सुना, प्रोग्राम को सराहा, दिल से धन्यवाद आपका। तो बस अब टाइम हो गया है कि प्रोग्राम को वाइंड अप किया जाए। जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि अपनी माँ को आज के दिन ही नहीं, हर दिन थोड़ा सा स्पेशल फील कराइए। एंड यू ऑल द ब्यूटिफुल मॉम्स आउट देयर, हैप्पी मदर्स डे टू यू। अपनी ताकत को पहचानिए और खुद को भी वक्त जरूर दीजिए। इसी के साथ ज्योति ले रही है आपसे इजाजत, क्योंकि सर्वेश हो गए हैं बिल्कुल तैयार लेकर नेक्स्ट प्रोग्राम। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।

0: नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन में 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज शपथ लेने वालों में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, फतेहपुर से भाजपा विधायक कृष्णा पासवान, कन्नौज की तरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र दिलेल तथा भाजपा MLC हंसराज विश्वकर्मा शामिल हैं। वहीं 2 राज्य मंत्रियों अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार का प्रमोशन दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा खेलों को बढ़ावा देने की सोच के चलते गोरखपुर का रामगढ़ताल रोइंग वेन्यू में के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। रामगढ़ताल को लगातार बड़े राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी मिल रही है। 12 मई से अगले 10 दिनों तक रामगढ़ताल में अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग और 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। इससे गोरखपुर में खेल पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज मदर्स डे के अवसर पर जनभवन से स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत यात्रा आनंदी माँ एक जीवन बचाओ अभियान का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। रैली के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य, कैंसर जागरूकता एवं स्वस्थ भारत के संकल्प को लेकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि समय पर जांच एवं जागरूकता से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम संभव है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग के 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आज 2रा चरण जारी है। पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से प्रत्येक जनपद में एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है तथा पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से जारी है। इसी क्रम में हमीरपुर में जनगणना 2027 के अंतर्गत मीडिया डे का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों एवं पत्रकारों ने स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि वे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
2: पुरानी जींस और गिटार,
1: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है, ऐश के जगावत।
1: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और ऑपरेशन सिंदूर को हाल ही में 8 मई को 1 साल पूरा हुआ है। भारतीय सेना ने सूचना और तकनीक को मिलाकर युद्धनीति में बदलाव किए हैं। अब स्मार्ट फिशिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी से बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत मजबूत हुआ है, जिससे हमारी सेना दुश्मन को मुंह

शिद्दत मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

जी हाँ, यूथ वे प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, हर संडे को आप सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड के बारे में हम आपको सचेत करते हैं और कोशिश ये करते हैं

ये आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है, जिस डिजिटल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, और आपके साथ कोई अनहैपनिंग ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए, साइबर क्रिमिनल्स है ना, उनके जंगल में आप कहीं ऐसे फंस गए तो फिर भाई बड़ी दिक्कत होती है ना। तो बड़ा कहते हैं ना कि सतर्क रहने वाला है ना। चलिए साइबर सिक्योरिटी की बात करूँगा, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छी सी खबर है, गुड न्यूज़ है, इंडियन रेलवे से रिलेटेड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड है। इंडियन रेलवे भी अब एआई पर काम कर रहा है, और कहते हैं ना कि एट प्रेजेंट हम जब टिकट बुक करते हैं ना ऑनलाइन, तो पर मिनट टिकट बुक करने की जो कैपेसिटी है वो 25,000 ही है, लेकिन एआई टेक्निक से इसे बढ़ाकर 5,00,000 पर मिनट करने का लक्ष्य है। और सर्वर क्रैश होने की जो प्रॉब्लम रहती है, जो रिस्क रहता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, है ना, कितना अच्छा है ना। अक्सर हम कहते हैं अरे टाइम निकल गया, टिकट ही नहीं हो पाया और सर्वर डाउन हो गया, लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सुनते रहिए आप यूथ वेव सर्वेश के साथ।

ना कि 24 मिनट हो चुके हैं और AI की जब बात आती है ना, और जब हम इसको जॉब प्रॉस्पेक्ट के रेफरेंस में देखते हैं तो अक्सर ये दिमाग में आता है, और बहुत सारी चीज़ें आपने भी पढ़ी होंगी कि भाई ऐसा ना हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम लोगों की जॉब चली जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी जो है ना हमेशा आती है और अच्छी के लिए आती है। और ऐसा एक डिसीज़न आया है कि AI के बूम के बाद पूरी दुनिया में टेक कंपनियाँ कहीं ना कहीं मैन पावर को कम करने के बारे में सोच तो रही हैं, लेकिन चीन की एक अदालत ने हाल ही में कहा है कि AI के कारण किसी की जॉब जो है ना जाएगी नहीं, और किसी को आप उसकी जॉब से निकाल नहीं सकते, है ना। और कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी को चलाने का काम हमारा और आपका ही, अगर मैन पावर रहेगी तभी तो हर चीज़ अच्छे से होगी ना। तो आपके भले के लिए, आपके बुरे के लिए नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुनते रहिए यूथ फेवर।

0: दे कुड़िया तो
1: वाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में संविदा आधार पर युवा पेशेवरों को कानूनी अनुसंधान सलाहकार के रूप में सूचीबद्ध किया जाना है। इसके लिए पात्रता, योग्यता एवं भुगतान के समस्त मानदंडों के विषय में आप प्राप्त कर सकते हैं जानकारी इस वेबसाइट पर www.nhrc.nic.in। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली में वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर सामान्य केंद्रीय सेवा समूह क राजपत्रित अनानुसचिवीय पद के वेतन मैट्रिक स्तर 13 में भरे जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। सामान्य शर्तें, पात्रता मानदंड, आवेदन का प्रपत्र और अन्य विवरण आप देख सकते हैं विभाग की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.jalshakti-dowr.gov.in। आवेदन की अग्रिम प्रति इस ईमेल पर अग्रेषित की जा सकती है usadmn-mowr@nic.in अथवा admn-mowr@nic.in। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान में इन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं और आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद है सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल, एक रिक्ति उपलब्ध है। समेकित वेतन रहेगा 90,000 रुपए प्रतिमाह। सहायक अभियंता सिविल दो पद उपलब्ध हैं। आयु सीमा है अधिकतम 35 वर्ष, जबकि वेतन रहेगा 50,000 रुपए प्रतिमाह समेकित। पात्रता मानदंड, ऑनलाइन आवेदन और अन्य विवरणों के लिए देखिए ये वेबसाइट rgipt.ac.in/en/page/nts-contractual-position। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट में प्रोफेसर सह प्राचार्य का एक पद उपलब्ध है। विस्तृत विज्ञापन और जानकारी के लिए आप देख सकते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट की आधिकारिक वेबसाइट www.aimsrajkot.edu.in। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान सचिव पद पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है। FDDI राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जो फुटवियर और चमड़े के उत्पादों के डिजाइन और विकास से संबंधित सभी विषयों में शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और विकास करने तथा इससे संबंधित या इससे जुड़े मामलों के लिए काम करता है। सभी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन, अद्यतन वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, सतर्कता मंजूरी और काडर मंजूरी प्रमाण पत्र के साथ उचित माध्यम से पते पर भेज सकते हैं। अनुसंधान अधिकारी, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन।

धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कैबिन संख्या US 34, प्रथम मंजिल, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली 110010। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए इस ईमेल और फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल है neeraj.ks@nic.in, जबकि टेलीफोन नंबर है 0112338895। फोन नंबर एक बार फिर नोट कीजिए 0112338895।

0: 3388954। फोन नंबर एक बार फिर नोट कीजिए 0112338854। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani.
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
3: पुरानी जींस और गिटार
2: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
4: है रते आश के जगा
2: फिर रात को फुर्सत के वो पल
5: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
6: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
7: जी हाँ घड़ी में ठीक 4:31 का वक्त है और आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की और धड़कन लखनऊ की पे इस समय प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव जिसमें हम बात कर रहे हैं एआई की साइबर सिक्योरिटी की और साइबर फ्रॉड की सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की

राजधानी में लगातार अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, स्पेशली साइबर अपराध, और साल भर में 1992 लोग जो हैं इसके शिकार हो रहे हैं। तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे आपको इससे बचाने की, और बिल्कुल इस गाने के बाद बताता हूँ कि कैसे इससे बचा जा सकता है। फिलहाल माही वे।

0: नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: जी हाँ, एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं। संडे का दिन है, फुर्सत का दिन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ आज के यूथ वेव में। सर्वेश जायसवाल आज आपके साथ रहूँगा, आप ही के साथ रात 8 बजे तक, 5 बजे लेकर आऊँगा एफएम टॉप 10, 6 बजे शाम में और ठीक 7 बजे, जी हाँ, कौन सा प्रोग्राम हेलो एफएम लेकर आऊँगा जिसमें आप हमें कॉल करेंगे और सीधे हमसे जुड़ेंगे और अपनी पसंद का गाना सुनेंगे। चलिए, साइबर क्रिमिनल्स जो आजकल क्या कर रहे हैं, आपका फ़ोन हैक करने की कोशिश करते हैं और स्कैमर्स ने व्हाट्सएप के जरिए आपको कहते हैं ना कि कॉन्टैक्ट करते हैं और आपका भरोसा जीतते हैं, एपीके फाइल्स डाउनलोड करने को बोलते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई पेमेंट कीजिए और पेमेंट अगर आपने कर दिया तो फ़ोन आपका हैक हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो स्मार्टफोन है ना वो हैक है कि नहीं है। अगर कहीं आपके स्मार्टफोन में सडनली नेटवर्क चला जाए, अचानक सिम बंद हो जाए और नेटवर्क होने पर भी बेवजह ओटीपी आने लगे, अलर्ट मैसेज आने लगे, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे या फिर ऐसा भी दिखे कि अननोन ऐप्स इंस्टॉल हो चुके हैं, तो भाई सतर्क हो जाइए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो करना क्या है, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले लंग रारा रीरी रारा।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: रात के खामोश पहर में जब

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जी धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप, और मैं बात कर रहा था कि अगर आपका फ़ोन हैक हो जाता है और आप को कहीं से लगने लगता है कि भाई फ़ोन जो है हैक हो चुका है और आप कहीं ना कहीं ट्रैप में कुछ फंस आ चुके हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एफएम रेनबो लखनऊ है ना आपको आगाह करने के लिए, आपको सचेत करने के लिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है कि आपके फ़ोन में कुछ अनयूजुअल सा दिख

देता है, तो सिर्फ आपको इतना करना है कि तुरंत अपना सिम ब्लॉक करवा दीजिए अपनी जो भी आपकी टेलीकॉम कंपनी है, और अपने बैंक से कांटेक्ट करके अकाउंट ब्लॉक करवाएं, फ़ोन को तुरंत फैक्ट्री रिसेट कर दें, और जल्दी से नियर बाई जो भी पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर रिपोर्ट करें, और हो सके तो जो भी कहते हैं ना कि हेल्पलाइन है वहां पर जल्दी से शिकायत कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपके साथ साइबर फ्रॉड नहीं होगा और आप उससे बच जाएंगे।

आपको टुकड़ टुकड़ देखना नहीं है, बस लगे रहना और सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ के। सर्वेश जायसवाल आज आपके साथ रहूंगा रात 8 बजे तक। फिलहाल आप सुन रहे हैं यूथ वेव मेरे साथ।

जी घड़ी में 4:56 का वक्त हो चुका है और जाते जाते एक गुड न्यूज़ आपको देते हुए जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश के 150 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें सिखाने के लिए ड्रीम स्किल लैब स्थापित की जाएगी, है ना। अच्छी बात कि एजुकेशन में भी रोबोटिक्स और इंटेलिजेंस जैसे विषयों को जोड़ा जा रहा है। सुनते रहे आप 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। समाचारों के इस पार विशेष कार्यक्रम और उसके बाद FM टॉप 10।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और छह नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। लखनऊ के जनभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। मंत्री पद की शपथ लेने वाले छह नेता उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, मनोज कुमार पांडे, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत हैं। इसके अतिरिक्त अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री के पद पर प्रोन्नत किया गया है। भूपेंद्र चौधरी पिछली योगी सरकार में भी मंत्री थे। इसके अलावा कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दलेर, कैलाश राजपूत और हंसराज विश्वकर्मा प्रदेश के मंत्री होंगे। 403 सदस्यीय राज्य विधानसभा के मंत्रिपरिषद में अब 60 सदस्य हैं, जो अधिकतम हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज मदर्स डे के अवसर पर जनभवन से स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत यात्रा आनंदी माँ एक जीवन बचाओ अभियान का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। रैली के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य, कैंसर जागरूकता एवं स्वस्थ भारत के संकल्प को लेकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि समय पर जांच एवं जागरूकता से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम संभव है। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया में तेजी आई है। इसी क्रम में हमीरपुर में जनगणना 2027 के अंतर्गत मीडिया डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों एवं पत्रकारों ने स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लिया। वहीं अमरोहा में भी एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को स्वगणना में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया गया। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूल में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरवगाथा एवं क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में आज मेरठ में जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इसमें सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों, स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता की। जिलाधिकारी ने कहा कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक अध्याय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर सभी अमर शहीदों और वीर क्रांतिकारियों को विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जी घड़ी में 5 बज चुके हैं, 5:03 हो रहे हैं और आइए अब सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम।
1: विशेष कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
2: देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। इस बार जनगणना 2 चरणों में पूरे डिजिटल तरीके से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना की शुरुआत 22 मई से होगी और उससे 15

0: दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा क्या है, जनगणना को सटीक और तय समय में पूरा करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, जनगणना में लगे कर्मियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है मैम।
1: धन्यवाद ओम जी।
0: उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? 30 दिनों के भीतर इतने बड़े राज्य में मकानों की गणना पूरी करने के लिए क्या खास रणनीति बनाई गई है?
1: उत्तर प्रदेश एक व्यापक प्रदेश है और हमारे यहाँ जिस प्रकार की जनसंख्या की चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हमारे यहाँ 1400 चार्ज अधिकारी बनाए गए हैं जो देश में सबसे अधिक चार्ज हैं। इन सभी में तहसीलें, नगरीय निकाय, छोटे बड़े नगरीय निकाय, छोटी बड़ी तहसीलें, सारे राजस्व ग्राम सभी सम्मिलित हैं और इन 1400 चार्जेस में हमारे 5.5 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर्स अर्थात पर्यवेक्षक लगेंगे। हमारे पास एक निश्चित समय है जिसमें मकान सूचीकरण जो हमारा प्रथम चरण है जनगणना का उसका कार्य संपन्न किया जाना है और इसी के लिए आवश्यक है कि हम हर घर तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, कोई भी क्षेत्र छूटने ना पाए और 5.5 लाख लोग इस कार्य को 22 मई से 20 जून के मध्य घर घर जाकर करेंगे। तो इस बार स्वगणना की भी सुविधा है पूरे देश में। 7 मई से हमारे यहाँ स्वगणना की सुविधा लागू है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर से बैठकर जो हमारा जनगणना का तय प्रश्नावली होती है पूरे देश के लिए जिसमें 34 प्रश्न रहते हैं वो घर से कोई भी बैठकर भर सकता है और उसको एक यूनिक कोड उसके मोबाइल फोन के नंबर के हिसाब से उसको एक यूनिक कोड मिलेगा। वो यूनिक कोड जब आपका प्रगणक आपके घर आएगा 22 मई के बाद आपको उसके साथ शेयर करना है। आपके पास समस्त विकल्प उपलब्ध हैं उस समय भी। आप ये भी कह सकते हैं अपने प्रगणक को कि आपने जो डेटा भरा है उसको संशोधित कर दें। आप उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, आप उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। आप अपने प्रगणक को ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्वगणना की प्रक्रिया है उसको एक तरफ करते हुए पूरा नया प्रश्नावली को भर दे।
0: बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज जैसे जनपदों में प्री टेस्ट हुआ, उस दौरान क्या महत्वपूर्ण बिंदु निखर कर सामने आए?
1: हम लोगों ने 3 जनपदों में जिसमें से 2 जनपद हमारे बुलंदशहर और बहराइच हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्री टेस्ट हुआ। इनफैक्ट बहराइच में जो हमारा क्षेत्र था मिहींपुरवा वो जंगल से सटा हुआ क्षेत्र था तो उसकी अलग लेवल की चुनौतियां रहती हैं और प्रयागराज में जो हमारा क्षेत्र था वो नगर निगम क्षेत्र था और हमने चौक का एरिया लिया था बिकॉज जो हमारे ओल्ड सिटी सेंटर्स होते हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। तीनों जगह हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लर्निंग्स थी। सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग तो ये थी कि कहीं ना कहीं नगर निकाय या ग्रामीण या तहसील स्तर पे जनगणना को ये सोच पाना कि कोई लोकल अधिकारी उसको कंप्लीट करा पाएगा ऐसा संभव नहीं होता। जनगणना एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे विभागों का सहयोग चाहिए होता है, जनमानस का सहयोग चाहिए होता है, हमारे जो लोकल लीडर्स होते हैं उनका सहयोग चाहिए होता है। सभी के सहयोग के माध्यम से हम लोग ये जनगणना का प्रोसेस कंप्लीट करा पाते हैं। दूसरा हमने ये भी देखा हमारी बहुत सारी महिलाएं हमारी प्रगणक थी और उन्होंने बहुत सबने अपनी अपनी लर्निंग्स शेयर की, उनको ऐप से काम करना बहुत अच्छा लगा तो हम लोगों ने बहुत सारी लर्निंग्स देखी। कहीं ना कहीं आपका प्रगणक भी जब क्षेत्र में जा रहा होता है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हो सकता है जो क्षेत्र मुझे आवंटित किया गया है वहां की जनता कोऑपरेट ना करे। तो हमारा ये भी अनुरोध रहता है सभी से, ये हमारी अपील भी रहती है जनता से कि जब जनगणना कार्मिक आपके आएगा उसके पास उसका आईडी भी होगा, वो आपका कोई ना कोई लोकल कार्मिक होता है, कोई टीचर होता है या कोई स्थानीय निकाय का कोई कर्मचारी होता है, प्लीज उसके साथ थोड़ा सा समय निकाल कर, ये देश के महत्व का कार्य है, इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा बट आप ये प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो प्रीटेस्ट की हमारी लर्निंग्स बहुत अच्छी थी। कुछ एप्स में जो छोटी छोटी डिफिकल्टीज हमारे प्रगणक और सुपरवाइजर्स को आ रही थी उनको इम्प्रूव किया गया। आज की तारीख में जो ऐप है वो बहुत ही सुगम और सरल ऐप है।
0: ये शहरों में जो झुग्गी बस्तियां होती हैं, अनियमित कॉलोनियां होती हैं और अस्थायी निवासी हैं, उनकी गणना को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?
1: मैं आपके प्रश्न को 2 भाग में बांटना चाहूंगी। एक तो है झुग्गी झोपड़ी और बस्तियां जो अनियमित रहती हैं, ये शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से ये समस्या है तो इसके लिए एक अलग गाइडलाइन है भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा। स्लम ब्लॉक, जब हम अपना गणना ब्लॉक बनाते हैं तो ऐसी स्लम्स जो कि अनियमित क्षेत्र हैं उनको अलग बनाना है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विकास की ज्यादा आवश्यकता है। तो स्लम ब्लॉक्स के गाइडलाइंस थोड़ा सा अलग होते हैं हमारे नॉर्मल गणना ब्लॉक से। हम ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग के साथ एक स्लम है तो दोनों को एक साथ मिला दिया और फिर ऐसा लगेगा कि आपके इंडिकेटर बहुत बढ़िया है। तो स्लम ब्लॉक को हमेशा अलग से रखा जाता है, स्लम ब्लॉक की अलग से काउंटिंग की जाती है। मैं बताना चाहूंगी कि 2011 में जैसे प्रदेश में 10,000 स्लम ब्लॉक अलग से चिन्हांकित किए गए थे और फिर उनको धीरे धीरे विकसित करते हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। आपके प्रश्न का दूसरा भाग ये था कि ऐसी बहुत सारी ट्रांजिटरी पॉपुलेशन रहती है या ये कह लीजिए कि बेघर जो हमारे लोग होते हैं। अभी हम घरों की गणना कर रहे हैं तो बेघर फर्स्ट फेज में नहीं काउंट किए जाते हैं बट

0: सेकेंड फेज में हम लोग प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं। तो ऐसे बेघर लोग आखिरी दिन, जो सेंसस का आखिरी दिन होता है 28 फरवरी को शाम के 5 बजे के बाद, जो जहां पाया जाता है, रोड पर, स्टेशन के बाहर, पार्क में, फुटपाथ पे, ऐसे बेघर लोग जो जहां निवास कर रहे होते हैं शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, उनकी भी गणना की जाती है। और यह भी आकलन किया जाता है कि ऐसे कितने लोग पाए गए जो कि बिना किसी घर के, बिना किसी आवास के खुले में सो रहे थे। तो दोनों ही व्यवस्थाएं ऑलरेडी जनगणना का पार्ट है जिसमें सभी को कवर किया जाता है।
1: गलत और फर्जी जानकारी को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं? और मान लीजिए किसी से कुछ गलत जानकारी दे दी गई तो उसको सुधारने का क्या ऑप्शन होता है?
0: सेंसस में हम गलत और सही के अर्थ पर नहीं जाते हैं, बिकॉज हम ये मानते हैं कि जो परिवार हमें बता रहा है वो सही बता रहा है, तो हम उसको कभी प्रूव करने को नहीं कहते हैं। गलत हो सकता है कि परिवार झूठ बोले आपसे, तो एन्यूमरेटर को थोड़ा ट्रेन किया जाता है कि सामने शौचालय बना हुआ, परिवार कह रहा है हमारे पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो एन्यूमरेटर पूछेगा कि ये किस स्कीम में मिला, किस कार्य में आता है, क्या आप इसको यूज नहीं करते हैं। तो एन्यूमरेटर की ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि वो जहां तक हो सके, संभव हो सके, उत्तरदाता को ये समझाए कि आपको एकदम सही आंसर देना है और आप जो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। और सेंसस वन टाइम प्रोसीजर है, एक बार आपने अपना रिस्पॉन्स फ्रीज करा दिया, आपने जो भी उत्तर दिया उसको एक बार प्रश्नावली में भर लिया गया, तो वो प्रश्नावली फिर कॉन्फिडेंशियल हो गई। तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि आप बाद में जाकर अपने किसी आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप जो कह रहे हैं हमारे लिए वही सच। तो हम सही और गलत के मानक पे नहीं जाते हैं।
1: जी, जनगणना के आंकड़े नीतियों को बनाने में अहम भूमिका रखते हैं, ऐसे में आप प्रदेश की जनता से क्या अपील करेंगी?
0: मेरी उत्तर प्रदेश के निवासियों से ये अपील है कि प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है कि वो हर घर तक पहुंचे। अब जनता का भी कहीं ना कहीं दायित्व है कि वो अपने प्रगणक को सही उत्तर दे, उत्तर अवश्य दे। और आप यदि किसी भी कारणवश आप अपने प्रगणक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्लीज अपने जनप्रतिनिधि, अपने स्थानीय अधिकारी के माध्यम से अपने प्रगणक तक पहुंचे। और मेरी अपील है आप सभी लोग जनगणना में पार्टिसिपेट करें।
1: निश्चित रूप से जनता पूरे उत्साह के साथ जनगणना में हिस्सा लेगी और प्रगणकों को पूरा सहयोग करेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच ओमरी।
2: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश के जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
3: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
4: पुरानी जींस और गिटार,
3: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
5: है आश के जगा,
3: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
6: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
3: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
8: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
7: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
9: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
10: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
11: एक विशेष कार्यक्रम के बाद आपका फिर से स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम शुरू हो चुका है FM टॉप 10, और टॉप 10 में हमेशा हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं और 10 ऐसे गाने सुनवाते हैं जिनका हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री से कुछ अलग से महत्व होता है। किसी वर्ष के बारे में आपको बताते हैं, कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताते हैं, कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर आते हैं। और हिंदी सिनेमा की खासियत रही है कि यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है। दर्शकों का इंटरेस्ट कब बदल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता। ब्लॉकबस्टर सोचकर बनाई गई फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, तो वहीं कम बजट की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर जाती हैं। और आज के FM टॉप 10 में साल 2001 में रिलीज हुई फिल्मों की बात करते हैं। साल 2000 के बाद 2001 में एक्शन फिल्मों की बाढ़ सी आ गई थी और कुछ हद तक देशभक्ति से भरी हुई फिल्में भी रिलीज हुई थी, और रोमांटिक दौर हमेशा की तरह चलता ही रहता है और उसमें भी चल रहा था। खैर, साल 2001 में बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में हमें देखने को मिली थी। सनी देओल पर

जी ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दी थी। जी हाँ, इसी साल फिल्म गदर रिलीज हुई थी ना, जिसकी शूटिंग अपने लखनऊ में भी हुई थी, जिसमें मिशा पटेल उनके साथ थी। याद आया ना, पार्टीशन की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म गदर, और वो गाना याद है ना? याद आया? नहीं याद आया? देखिए ये अब याद आएगा। तो आप अगर गड्डी लेकर निकले हैं तो बिल्कुल अपना पूरा ख्याल रखिए और सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

और साल 2001 में गदर के साथ आमिर खान साहब की फिल्म लगान भी रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्मों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। जहां गदर की कहानी पार्टीशन भारत पाकिस्तान के बीच पर बेस थी, वहीं लगान की कहानी में अंग्रेजों के साथ खेला गया क्रिकेट मैच था, जिसका संबंध अंग्रेजों द्वारा वसूले जाने वाले लगान से था, इसीलिए फिल्म का नाम लगान था। खूबसूरत सा गाना, घना न घना।

एफएम टॉप 10 सुन रहे हैं आप और रामराज जी का मेल रायबरेली से आ गया, गांव पहाड़ीपुर से कह रहे हैं गाने बहुत बढ़िया लग रहे हैं और मजा आ रहा है प्रोग्राम सुनने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

जी हाँ, साल 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम एक फैमिली ड्रामा थी, और इस फिल्म में शाहरुख खान साहब और ऋतिक रोशन की जबरदस्त ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिखी थी। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन जी भी थे और जया बच्चन जी भी थी, है ना? तो लगभग 25 साल पीछे ले गए हूँ आपको, लेकिन इन गानों की ताजगी आज भी है। सुन रहे हैं आप FM Top 10।

कभी खुशी कभी गम जब फिल्म की बात होती है तो वो काजोल की जो है ना चंचल भरी एक्टिंग आपको याद है ना, बिल्कुल याद होगी, बिल्कुल ही अलग अंदाज में आई थी, चुलबुले अंदाज में आई थी काजोल इस फिल्म में।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।

0: के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है।
2: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
3: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
2: ओनली 100.7 FM रेनबो।

5:30 का वक्त और आज सुन रहे हैं आप मेरे साथ एफएम टॉप 10, जिसमें बात हो रही है साल 2001 में रिलीज हुई कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो कुछ अलग थी और उनका संगीत कुछ अलग था। इस दौर में कुछ म्यूजिकल हिट्स भी आई हैं, जिसमें से एक का गाना आपने सुनना शुरू कर दिया है। फिल्म थी कसूर, जिसमें आफ्ताब, शिवदासानी और लीजा रे थी, और खूबसूरत सी आवाज़ इस गाने की अलका याग्निक और उदित नारायण जी की। जिंदगी बन गए हो तुम,

और जी हाँ, ये साल 2001 ही था जिसमें फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनी फिल्म दिल चाहता है आई थी। उस समय यूथ को बहुत पसंद आई थी। आमिर खान, सैफ अली खान साहब, अक्षय खन्ना, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी, डिंपल कपाड़िया इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थी और इसे बेस्ट फीचर फिल्म का उस समय का नेशनल अवार्ड भी मिला था। सुनते रहिए, कोई कहे कहता रहे।

जी हाँ, इस ट्यून से आप कुछ पकड़ पाए, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। 2001 की फिल्म तुम बिन, जिसके सारे गाने बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्यारे थे। चलिए उन्हीं में से एक, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे।

और साल 2001 में आई फिल्म यादें, जी हाँ, करीना कपूर और ऋतिक रोशन साहब और साथ में जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में नजर आए थे। यादें और ये गाना आपको याद है, ऐ दिल दिल की दुनिया में।

और साल 2001 की फिल्म नायक याद है आपको, जिसमें अनिल कपूर साहब एक पत्रकार की भूमिका में थे और अमरीश पुरी साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हुए थे। एक दिन के लिए उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और बहुत से ट्विस्ट आते हैं उस मूवी में। ये फिल्म बहुत ही पसंद आई थी लोगों को। इसी फिल्म से गाना चलो चले बितवा।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

जी हाँ, 2001 में आई फिल्म एक रिश्ता अक्षय कुमार साहब और करिश्मा कपूर जी का अद्भुत अभिनय, और इस गाने में कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़, एक है एक दिल है। और 5:55 का वक्त हो चुका है, इस गाने के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ समाचारों

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन में प्रदेश सरकार के 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल के नए सदस्य के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी, मनोज कुमार पांडे ने कैबिनेट मंत्री तथा कृष्णा पासवान, सुरेंद्र लेर, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश सिंह राजपूत ने राज्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा सरकार में राज्यमंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर ने राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। भूपेंद्र सिंह चौधरी विधान परिषद सदस्य हैं, वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि मनोज कुमार पांडे ऊंचाहार सीट से विधायक हैं। वहीं राज्यमंत्री की शपथ लेने वाली कृष्णा पासवान खागा से, सुरेंद्र लेर खैर से और कैलाश सिंह राजपूत तिरवा से विधायक हैं। हंसराज विश्वकर्मा विधान परिषद सदस्य हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं प्रदेश के आगरा जिले की बिरहाऊ ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, तो युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की। वाराणसी के शिवप्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय को अब अत्याधुनिक 500 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते 28 अप्रैल को किए गए शिलान्यास के बाद पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने आज विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। 315.48 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह आधुनिक अस्पताल पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगा। इस मौके पर डॉक्टर तिवारी ने कहा, यह परियोजना पूर्वांचल की स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत है और प्रदेश में एक बार फिर मौसम का रुख बदल रहा है। हल्की बारिश के बाद अब दिन के तापमान में भी लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज से 14 मई के दौरान मौसम में बदलाव होने से कानपुर, आगरा और लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुंदेलखंड, तराई और पूर्वांचल के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस बुलेटिन में इतना ही। 7 बजे सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज़।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

जी हाँ, घड़ी में 6:00, 6:05 हो चुका है और ये वक्त होता है शाम अवध का। अवध की शाम बिल्कुल अच्छी हो रही है। पिछले लगभग 10 दिनों से जो आंधी बारिश का दौर चला है ना, कभी धूप कभी छांव, लेकिन हाँ कि वो जो परेशानी हो रही थी ना, कड़ी धूप वाली, ऐसा लग रहा था कि सीधे दोपहर हो रही है, सुबह हो ही नहीं रही है, उस चीज़ से तो कुछ समय के लिए राहत मिली है। और आने वाला जो समय है ना, वो अभी जाने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पहाड़ों पर एक बार और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जो हल्की फुल्की गर्मी आपको लग रही है तो खुश होइए, आधा मई जो है ना ऐसे ही निकल जाएगा बारिश में, आंधी में। तो मौसम की जो गर्माहट है ना, जो जेठ का महीना है ना, वो एक गाना है ना, जेठ की दोपहरिया में पाँव जले हैं सैया, पाँव जले हैं, तो पाँव और कुछ नहीं जलेंगे, अभी फ़िलहाल आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। और खूबसूरत सा गाना चला दूँ, उसके बाद हमेशा की तरह शाम के बाद में खूबसूरत सी बातें, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या होने वाला है लखनऊ शहर में, बिल्कुल सब कुछ लेकर आऊँगा। सर्वेश आज आपके साथ रहूँगा 7 बजे तक शाम अवध में। और हाँ, 7 बजे से 8 बजे के बीच प्रोग्राम हेलो FM बिल्कुल लगातार सुनते रहिए, धड़कन लखनऊ की।

तो भाई जेठ का महीना चल रहा है और जेठ का महीना लखनऊ शहर के लिए बहुत खास होता है और इस बार इसलिए और भी खास है कि इस बार बड़े मंगल का जो उत्सव और माहौल होता है लखनऊ शहर में वो और भी भव्य रूप से हो रहा है और इस बार 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। और आज तो वैसे संडे का दिन है लेकिन अभी मैं जब स्टूडियो आ रहा था तो आज भी कई जगह भंडारे हो रहे थे और शनिवार के दिन भी होते हैं तो एक अलग सा माहौल होता है और अवध का जो माहौल है अवध की जो शाम होती है इन सब चीज़ों से और भी बहुत खूबसूरत हो जाती है ना। खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी ए दिल है मुश्किल सुनिए और इन्जॉय कीजिए और भी बातें करूँगा आपसे। सिलसिला कहाँ रुकने वाला है

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ बिल्कुल, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में और लखनऊ से बाहर भी हैं तब भी आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। मुलाफ़ा सिद्दीकी और आनंद तिवारी का मेल आ चुका है, कह रहे हैं प्रोग्राम और गाने बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, धन्यवाद आपका।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप। 6:25 का वक्त, शामी वक्त प्रोग्राम सर्वेश आज आपके साथ। और अवध की शाम वैसे ही बड़ी अच्छी हो रही है आजकल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रही है और ट्रैफिक जो है वो भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है। हालांकि वीकेंड का दिन है, कुछ ऐसी जगहों पर खासकर हजरतगंज के आसपास आपको हल्का सा ट्रैफिक मिल सकता है, बाकी जगह ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वेट करना पड़े। आराम से आप चलते रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों

0: की कमजोरी
1: थायराइड इंबैलेंस दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन एडिसन्स डिजीज पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा
2: हेलो FM
3: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए
4: What is mobile number? What is your smile number?
5: What is your style number? करो क्या dial number?
6: हेलो आप अटल रेमो से बोल रहे हैं
2: जी हाँ अपनी फरमाइश का गाना बताएं अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे
7: दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है
8: बोरियत को करिए गॉन म्यूजिक को करिए ऑन
7: हैंगओवर
8: Only 100.7 FM.

0: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
1: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं एफएम रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो एफएम, हर रोज शाम 7 बजे।
2: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।

0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: जी हाँ, कुछ भी नहीं है FM रेनबो के आगे, है ना. 6:32 का वक्त हो रहा है और आप लगातार सुन रहे हैं शामे अवध, और शामे अवध में खूबसूरत सी बातें और उसके साथ ही ज़रूरी जानकारियां आप तक लेकर आते हैं. तो एक जानकारी मेडिकल फील्ड से है. लखनऊ के झलकारी भाई हॉस्पिटल में महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कहते हैं ना कि पैप स्पीमर जाँच सुविधा शुरू कर दी गई है और अब सर्वाइकल कैंसर की जाँच यहीं से की जा सकेगी. जी हाँ, आज आप सभी मदर्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उन सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ और बस यही कहूँगा कि अपनी माँ का पूरा ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स का पूरा ख्याल रखें. कभी उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई उनकी संतान होने के बावजूद भी उन्हें कोई कष्ट है, उन्हें कोई प्रॉब्लम है ना. सुनते रहिए शामे अवध सर्वेश के साथ खूबसूरत सा और बिल्कुल नया गाना खासियत फ्रॉम द मूवी चांद मेरा दिल, सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर.

रेशम सी हैं ये हवाएं सनम, जब वक्त की शाम में आप बैठते हैं ना, खासकर गोमती नदी के किनारे, तो जो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि रेशम को आप स्पर्श कर रहे हैं, इस हवाओं को स्पर्श कर रहे हैं। अभी आप समाचारों में भी सुन रहे थे कि एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है और कल से लेकर 14 मई तक आपको फिर से बारिश का वो दौर ठंडा ठंडा एहसास होने वाला है। सुन रहे हैं आप शाम वक्त सर्वेश जायसवाल के साथ।

0: बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: क्या बात है, आजकल टाइम से घर?
3: हाँ हाँ, बस एक फटाफट से अब मसाले वाली चाय जल्दी से पिला दो।
2: अरे ठीक है बाबा, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों है?
3: अरे 7 बजे FM रेनबो पर कॉल जो करनी है।
4: जी हाँ, FM रेनबो लेकर आया है हर रोज शाम 7 बजे से हेलो FM कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए। तो कर डालिए अपने दिल की बात अपने पसंदीदा गाने के साथ।
5: रंग का इंद्रधनुष है,
6: 7 सुरों की सरगम है,
7: 7 जन्म है, 7 समंदर,
5: 7 हमारा हरदम है,
7: जिंदगी के 7 रंगी रंग
6: FM रेनबो के संग।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
3: पुरानी जींस और गिटार,
2: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
3: जगह,
2: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
4: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: हेलो FM,
6: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
7: What is mobile number? What is your smile number?
8: What is your style number? करो क्या dial number?
9: हेलो, आप FM रेनबो से बोल रहे हैं?
5: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
10: छः बजकर 54 मिनट का वक्त और मई का महीना चल रहा है। आज 10 मई हो चुकी है और बच्चों के जना समर वेकेशन कई जगह स्टार्ट हो चुके हैं, कई जगह होने वाले हैं। वो पूरी तैयारी चल रही है कि गर्मी की छुट्टियों में क्या करना है, घूमने जाना है या कहीं कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवानी है। तो बिल्कुल आप अपने आस पास देखिए, किसी स्कूल में किसी स्टेडियम में अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करें तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल से उसमें दाखिला कराइए। और जो बच्चों में आजकल घर के अंदर रहने की जो एक आदत पड़ी हुई है और दूसरा मोबाइल पे जो टाइम बिताते हैं ना, उससे थोड़ा सा दूर ले जाइए। आउटडोर गेम्स हो सकते हैं वो, या कुछ और भी, सिंगिंग है, डांसिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखिए और उनको करवाइए, देखिए फिर उसका असर है ना। थोड़ी देर में आपको बताऊँगा गोल्ड और कदम सिल्वर के रेट्स क्या हैं। फिलहाल आँखें खुली हो या हो बंद,

तो भाई गोल्ड के रेट आपको बता दूं 14,065 पर ग्राम, और सिल्वर की बात करूं तो 2,80,000 पर किलोग्राम रेट चल रहा है अभी सिल्वर का। फिलहाल आप सुन रहे हैं मोहब्बतें का गाना और प्रोग्राम है शाम अवध सर्वेश के साथ। 7 बजे के बाद समाचारों के उस पार प्रोग्राम हेलो एफएम, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है, हैरते आशिके जगावत।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का आज हुआ विस्तार। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 नए मंत्रियों को दिलाई शपथ। प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, रायबरेली के मनोज कुमार पांडे बने कैबिनेट मंत्री। विस्तार के

0: गुजरात यूपी विधानसभा के 403 सदस्यों में मंत्रिपरिषद की संख्या हुई 60। फतेहपुर की खागा सीट से भाजपा विधायक कृष्णा पासवान, खैर विधायक सुरेंद्र लेर, वाराणसी के एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, कन्नौज के तिरवा से विधायक कैलाश सिंह राजपूत ने राज्यमंत्री की ली शपथ। राज्यमंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर को मिला राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार का प्रमोशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शपथ लेने वाले मंत्रियों को दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया संदेश में कहा, राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ सभी जनसेवा और सुशासन द्वारा प्रदेश की विकास यात्रा को दे नई गति। केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतें, आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत भी सूची में शामिल। UPESSC के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा, प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर सकुशल संपन्न। 9 और 10 मई को दो पालियों में आयोजित हुई परीक्षा में 1,92,934 अभ्यर्थी हुए शामिल। नकलविहीन परीक्षा कराने के रहे पुख्ता इंतजाम। मदर्स डे के अवसर पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने जनभवन से कैंसर फ्री वुमेन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। रैली के माध्यम से महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और कैंसर से बचाव के प्रति किया जागरूक। वाराणसी का शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में होगा विकसित। पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया निर्माण कार्य का शुभारंभ। 315 करोड़ की लागत से बनने वाला अस्पताल पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं को देगा नई दिशा। अयोध्या में श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य हुआ पूरा। मंदिर परिसर में हाईटेक सुविधाओं का किया गया विस्तार। 15 जून तक तैयार होगा शहीद स्तंभ। ट्रस्ट कार्यालय और म्यूजियम का निर्माण कार्य जारी। और प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी। हमीरपुर में मीडिया डे का हुआ आयोजन। अमरोहा में गोष्ठी के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। इस बुलेटिन में इतना ही। 7:20 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर और शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है जगह।
1: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: जी हाँ, धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप और हेलो FM बिल्कुल आ चुका है आपके लिए। 7:03 का वक्त और आपकी कॉल्स और आपसे बातचीत करना होता जाता है ज़रूरी इस प्रोग्राम में। और सुनते हैं आप अपनी ही पसंद के गाने। नंबर से एक बार बता दूं, वैसे जो हमारे सुनने वाले हैं उनको नंबर से याद है, लेकिन 0522 2238 845 और 2238 852 हमारे नंबर हैं। जल्दी से कनेक्ट कीजिए और जुड़ जाइए हमसे। फिलहाल किसी ने कॉल किया है, जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो।
4: जिंदगी में जान जरूरी है, पाने को अरमान जरूरी है।
0: क्या बात है।
4: जिंदगी में जान जरूरी है, पाने को अरमान जरूरी है। हमारे पे चाहे जितने गम हो, हमारे पे चाहे जितने गम हो, आपकी होंठों पे मुस्कान जरूरी है।
0: बिल्कुल,
4: आपके होंठों पे मुस्कान जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, नाम बताएं।
4: सीता से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं।
0: क्या बात है। और आपके साथ साथ सभी सुनने वालों की मुस्कान जरूरी है। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
4: दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा।
0: जी क्या बात है, दिल पागल दीवाना।
4: मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बताइए आप कैसे हैं?
0: हम अच्छे हैं, प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा होगा आपको। और ये गाना किसी को सुनवाना चाहेंगे? नाम लीजिए।
4: ये गाना हम डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: जी
4: जो भाई बहन हमारा नाम लेते हैं उनका हम जरूर सराज नाम लेंगे, भले ही हमारा थोड़ा सा गाना चला देना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप जल्दी से नाम लीजिए।
4: सबसे पहले आपको मोहम्मद फैज भाई, राजुद्दीन भाई, बाबू अंसारी भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद अमीन भाई, बबलू यादव भाई, जावेद अख्तर भाई, मोहम्मद सलमान भाई, सत्यम कुमार भाई, वकील अहमद भाई और गुलाब साहब की, साहबा अंसारी, सादी अंसारी, महक अंसारी, आरजे पूनम और रिंकी पिंकी।
0: और कोई रह तो नहीं गया?
4: जी सुन रहे हैं सभी सुनने वाले।
0: क्या बात है।
4: एक भाई और है।
0: कौन?
4: विनीत।

0: आई हैं जो हमारी तरफ सीतापुर में रहते हैं।
1: क्या बात है, तो सभी के लिए ये गाना।
0: नाम लेते हैं और जब हम नाम नहीं सर लेते हैं नाम, जब बाद में फोन करके हमारा नाम लेते हैं तो हमको अफसोस बहुत बड़ा होता है।
1: चलिए
0: आज हमको भी नाम लेना चाहिए था, हमने
1: आज आपने नाम ले लिया और ये गाना बहुत प्यारा है बरसात मूवी का। सभी लोग एंजॉय करिए और जल्दी से कॉल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जी हाँ, हेलो एफएम सुन रहे हैं आप। सर्वेश जायसवाल है आज आपके साथ और 8 बजे तक रहूंगा आपके पास। बीच में आप प्रादेशिक समाचार भी सुनेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी फ़ोन कॉल्स का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और आप अपनी बात हमसे कहेंगे, अपनी पसंद का गाना हमसे कहेंगे और हम झट से उसको सुनवा देंगे। अभी कोई है लाइन पर, उनसे पहले बात करते हैं। हेलो,
3: नमस्ते।
2: नमस्ते जी, अपना नाम बताएं।
3: ममता
2: जी। अच्छा, ढिकुन्नी संडीला से आपने हमें कॉल किया है ना?
3: जी सर।
2: क्या हाल चाल है आपके?
3: जी जी।
2: मौसम कैसा है उधर? कह रहा हूँ मौसम कैसा है आपकी तरफ?
3: मौसम ठीक है।
2: जी, और आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगी? लाल दुपट्टा फ्रॉम द मूवी मुझसे शादी करोगी, अलका याग्निक और उदित नारायण साहब की आवाज है ना?
3: जी सर।
2: और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगी, नाम लेना चाहेंगी?
3: जी सर।
2: बिल्कुल लीजिए। थैंक यू। जी जी जी ओके जी। और कोई? सभी सुनने वालों के लिए लाल दुपट्टा है ना? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, कुछ? हाँ जी, कही। हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू। सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

7:15 मिनट का वक्त, हेलो एफएम सुन रहे हैं आप और कोशिश कर रहे हैं हमसे कनेक्ट होने की। 0522 38 845 22 38 852 ये नंबर से हमारे, जल्दी से कॉल कीजिए और हमें हमसे बात कीजिए और अपनी पसंद का गाना सुनिए। अभी हमारे पास एक कॉल आया था सीनो उपाध्याय का कैसरगंज बहराइच से, लेकिन वो काफ़ी व्यस्त थी तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की हमारा गाना ज़रूर प्ले कर दीजिएगा और मैं ऑन एयर नहीं आ पाऊँगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका गाना प्ले होना चाहिए और सत्यम जी को डेडिकेट करना चाहती, तो ये गाना हम लगा देते हैं और मदर्स डे की उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और उसी से जुड़ा हुआ गाना है, कहाँ गए ममता भरे वो दिन।

0: प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नपन मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज लखनऊ के जनभवन के गांधी सभागार में प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ सभी नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों की कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 192,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। धार्मिक महत्व के अलावा सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नपन मिश्र ने आज अयोध्या में समिति की बैठक के बाद बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नपन मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा, तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।

सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। विभिन्न जिलों में जन जागरूकता रैलियों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमीरपुर में मीडिया डे का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने स्वगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मदर्स डे के अवसर पर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत यात्रा आनंदी माँ एक जीवन बचाओ अभियान रैली का आज लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मजबूती का आधार है। समय पर जांच और जरूरी सावधानी बरतने से कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। रैली में करीब 150 लोगों ने सहभागिता कर महिलाओं की सेहत, कैंसर जागरूकता और स्वास्थ्य भारत के संकल्प को लेकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। 1857 के पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा और क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में आज मेरठ में जिलाधिकारी की अगुवाई में गांधी आश्रम से शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में सिविल डिफेंस, स्वयंसेवकों, आम जनमानस, स्कूली छात्राओं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर अमर शहीदों और वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये महासमर पराधीनता की बेड़ियों को छिन्न भिन्न करने का साहसिक और संगठित प्रयास था, जिसने संपूर्ण राष्ट्र में आजादी की अलख जगाई। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का रुख बदल गया है। हल्की बारिश के बाद अब दिन के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य में आज से 14 मई के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव होने से कानपुर, आगरा और लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 1,92,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेन मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM

0: प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
2: पुरानी जींस और गिटार
1: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
3: है रते आशिक।

0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से, धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप। हेलो FM में कॉल करना चाहें तो बिल्कुल आप करिए। अभी भी आपके पास आधे घंटे का वक्त है, 7:31 का वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी में। 0522 2238 845 और 2238 852 हमारे नंबर्स हैं, जल्दी से मिलाइए और हमसे जुड़ जाइए। फिलहाल न्यूज़ के दौरान किसी ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो,
2: नमस्ते
1: जी, जल्दी से अपना नाम बताएं।
2: मोहम्मद तालिब अंसारी, राजा कटरा, 12 बंकी सर जी बोल रहा हूँ।
1: क्या बात है, क्या हाल चाल है आपके?
2: जी सर जी बढ़िया है। सर जी अपने हाल चाल बताइए।
1: मेरे अच्छे हैं। फैज भाई की क्या हाल चाल है?
2: ये उनको नहीं जानते हैं।
1: अच्छा, मुझे लगा वो 12 बंकी से वो भी कॉल करते हैं अक्सर।
2: नहीं, हमारे गांव का नाम राजा कटरा है।
1: अच्छा, राजा कटरा। अक्सर हमारे जो लिसनर्स है ना वो आपस में कनेक्ट रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। खैर कोई नहीं, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
2: हम ये दिल आशिकाना मूवी का गीत सुनेंगे, नटखटी कॉलेज की लड़कियों, ये वाला गीत।
1: ए नटखटी कॉलेज की लड़कियों। अच्छा
2: जी,
1: क्या बात है, ये गाना तो अच्छा है
2: जी। सर जी सॉन्ग बहुत अच्छा है।
1: किसको सुनाना चाहेंगे
2: जी? अब जी अपने दो भाई हैं, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद साबिर।
1: बहुत बढ़िया, तो ये गाना लगा दे
2: जी। हमारे दोनों भाई हैं तो
1: जी।
2: हमारे भाई भी रेनबो से कनेक्ट रहते हैं, वो भी आपका प्रोग्राम सुनते
1: रहते। बिल्कुल, उनका नाम जी जी जी
2: आसिफ भाई तेलंगाना हैदराबाद से करते
1: हैं। हाँ हाँ, अच्छा वो आपके भाई हैं, मेरी बात हुई है जी।
2: साबिर भाई जो कानपुर से, वो भी आपका प्रोग्राम, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस वक्त वो हैदराबाद में है, लेकिन रेनबो हम लोगों को कनेक्ट रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम धड़कन।
2: सबसे बड़ी एक खासियत यही है रेनबो
1: जी, जी,
2: मतलब
1: जी।
2: हम लोगों को एक दूसरे को जोड़ता है और कनेक्ट रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और
2: एक से बढ़िया से बढ़िया।
1: तो देखिए गाना हमने आपका लगा दिया, और कुछ कहना चाहे तो जल्दी से कह दें।
2: और कुछ नहीं सर जी, बढ़िया है
1: जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया तालिब भाई।
2: थैंक यू सर जी।
1: ओके वेलकम जी।

0: वो भी निकलता चला जा रहा है, लेकिन लिमिटेशंस है कि एक घंटे के भीतर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं और आपके गाने जो है ना उनको प्ले करूं। अभी लाइन पर कौन है, उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, क्या हाल चाल है, अपना नाम बताएं पहले तो।
1: जी सर बढ़िया है सर, देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी बाबू अंसारी जी बात कर रहे हैं।
0: बाबू अंसारी जी, और क्या हाल चाल है, क्या मौसम के हाल चाल है आपके वहाँ।
1: जी सर मौसम तो बढ़िया है।
0: मौसम बढ़िया है
1: जो है जी,
0: जैसा कि आप बता रहे थे कि आप किसी बाजार में बैठे हुए हैं, आपके वहाँ सामने लगती है ना
1: जी बाजार। अभी आज रविवार के दिन लगती है, जुमरात के दिन लगती है बाजार।
0: जी जी जी, और आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे इस अच्छे मौसम में।
1: जी सर फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया है, और गाने के बोल है तेरी आंखों का अंदाज कहता है।
0: क्या बात है।
1: और सर गाना डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए।
1: सबसे पहले सर आपको
0: थैंक यू,
1: और फैज अंसारी हैं रामपुर से, कुलदीप गुप्ता जी उधोली बाराबंकी से,
0: सुरेश
1: सिंह हैं सीतापुर से, समा परवीन अंसारी जी हैं, श्री प्रकाश तिवारी जी हैं, हरि केर जी हैं, नवनीत मोदिया जी हैं, और साहिब अंसारी।
0: क्या बात है, ये गाना हमने आपका लगा दिया है।
1: जी सर
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी सर थैंक यू।

0: और जल्दी से आप कॉल कर सकते हैं 0522 2837 845 2832 8552 नंबर से हमारे, जल्दी से कॉल कीजिए। हेलो फैम सुन रहे हैं आप, सर्वेश आज आपके साथ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात करने की, आप भी कीजिए, कोशिशें ही कामयाब होती हैं। और किसकी कोशिश अभी कामयाब हुई है उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी सर, हम बोले मोहम्मद फैज रामपुर कटरा 12 बजे से बोले सर।
0: हाँ बिल्कुल, हम तो जान गए, बाकी सुनने वाले भी हम जान गए। क्या हाल चाल है फैज भाई?
1: जी सर बहुत ही बढ़िया, हमारे गांव का मौसम बड़ी खुशनुमा हो गया सर।
0: ये तो अच्छी बात है, अभी कल से और खुशनुमा हो जाएगा, आंधी बारिश का सिलसिला जो है फिर से शुरू होने वाला है।
1: अच्छा सर।
0: आप सुनते नहीं है ध्यान से हमारा शाम अवध? बिल्कुल अभी फिर से आंधी बारिश का दौर शुरू होगा, मौसम और ठंडा होगा और अच्छा लगेगा। आपका गाना हमने लगा दिया, जल्दी से नाम ले लीजिए।
1: जी मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मतलब जो सभी सुनने वालों को मतलब जो है प्यार भरा मेरा अस्सलाम वालेकुम है, जिनको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, गाने के मतलब कुछ बोल गुनगुनाना चाहता हूँ सर।
0: जी गुनगुनाइए बिल्कुल।
1: करते हैं सिर्फ प्यार सिर्फ संडे को।
0: अच्छा हो गए, क्या बात है। अच्छा बाकी जो डेज है बेकार है आपके लिए?
1: जी नहीं सर।
0: मतलब प्यार आप करेंगे लेकिन छुट्टी के दिन ही करेंगे प्यार? जल्दी से नाम ले लीजिए इनका लेना चाहते हैं।
1: सबसे पहले मेरे क्यूट से प्यारे वाले आरजे सर्वेश भाई हैं
0: जी,
1: और उसके बाद मोहम्मद जावेद अख्तर भाई है, मोहम्मद आसिफ भाई है, रिंकी पिंकी, समा परवीन अब गुलाब साहब है, सादिया अंसारी है, यासिर हमीद भाई है, और मोहम्मद सलमान भाई है, मोहम्मद तालिब भाई है, और जमील गुंटी वाले सुरभि सिंह है, और बाबू अंसारी भाई है।
0: क्या बात है, तो ये गाना आप तक पहुँच रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू।
0: ओके जी।

0: के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: घड़ी में ठीक 7:45 हो चुके हैं। अभी भी आपके पास वक्त है 15 मिनट का, कोशिश करें जल्दी से करें। 0522 2238 8045 और 2238 8052 मिलाकर सीधे हमसे जुड़ जाएं। और अभी कौन साहब हैं लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो सर, वीर सर को शिव का बहुत बहुत प्रणाम।
2: कैसे हैं शिव जी आप?
3: अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं सर?
2: मैं बहुत अच्छा हूँ। और इंद्रनगर लखनऊ से आपने हमें कॉल किया है ना?
3: जी जी सर, मैं इंद्रनगर लखनऊ से बोल रहा हूँ सर।
2: जी जी,
3: बहुत बहुत बहुत सबको मदर्स डे की शुभकामनाएं सभी मम्मियों को।
2: जी जी, बहुत अच्छी बात है। और
3: मैं सर सॉन्ग सुनना चाहता हूँ।
2: जी बताएं।
3: फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं सर।
2: क्या बात है, लता मंगेशकर जी और मुकेश साहब है ना?
3: जी जी सर। और सर ये छोटा सा मैसेज है, मतलब कि जो मंदिरों में ये फूल जो भी चढ़ते हैं हर जगह,
2: हाँ हाँ,
3: अलग अलग लोग डाल देते हैं।

0: जैसा लग
1: जी,
0: रहे,
1: बहुत बहुत अच्छी
0: चलाते
1: बात,
0: तो किनारे ही रखे हुए, पैर पड़ते पर अच्छा नहीं लगता है।
1: बिल्कुल उससे हमारी आस्था को ठेस लगती है और अच्छा नहीं लगता है ये चीज़। बिल्कुल सही बात आपने की, बहुत बहुत अच्छा मैसेज दिया। बिल्कुल आप नाम लीजिए, नाम लीजिए।
0: सबसे पहले सर सर्वे सर को
1: थैंक यू,
0: अकाल पार्टी टीम को
1: जी,
0: और हमारी वाइफ जी और सुरवीर सिंह जी हैं, और अंशिका हमारी भतीजी है
1: जी जी,
0: और सीमा रावत जी, राम सिंह भैया जी, और हेमंत जी हैं, और हमारे दोस्त हरिओम
1: जी जी,
0: और सभी दोस्तों को, प्रिया जी को भी।
1: ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिव,
0: भाभी जी हैं, मम्मी जी हमारी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका।

0: 7:50 का वक्त, और जल्दी से कॉल ले लेते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास. हेलो, गुड इवनिंग जी, अपना नाम बताएं. वैसे जो रेगुलर हमारा एफएम रेनबो सुनते हैं वो आपको जानते हैं, फिर भी आप बताएं. संडीला, लड्डू का शहर संडीला से है ना. और बताइए क्या हाल चाल है. हमारे भी हाल चाल
1: बहुत अच्छे लग रहे हैं.
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच.
1: गाने तो बहुत अच्छे बजा रहे हैं आप.
0: सब आप लोगों की मोहब्बत है, इसी वजह से एफएम रेनबो जो है धड़कन लखनऊ की कहलाता है. और आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: बीवी नंबर वन का.
0: बीवी नंबर वन, तो खुद को डेडिकेट तो नहीं करना चाह रही?
1: जी जी सर.
0: हाँ देखिए, हमने पकड़ ली ये बात. तो गाना आप प्ले कर दें या आप किसी? बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए.
1: सबसे पहले आपको
0: थैंक यू.
1: परवीन है, साहिब अंसारी, साजी अंसारी, निशा अंसारी, महक अंसारी और ममता है हरदोई से.
0: ममता हरदोई से
1: सुन रहे
0: हैं सब. सभी के लिए क्या बात है. तो ये गाना हमने आपका लगा दिया है
1: जी सर. थैंक यू.
0: ओके जी, वेलकम.

0: जी हाँ, प्रोग्राम भी नंबर वन है और गाना सुन रहे थे बेबी नंबर वन का, और अगला जो गाना सुनेंगे ना उसमें भी नंबर वन आ रहा है। जल्दी से बात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: सर जी, मेरा नाम है राहुल कुमार, जिला इटावा पोस्ट करी, ग्राम लालपुरा से राहुल कुमार बात कर रहा हूँ। सर जी,
0: इटावा से आपने कॉल किया है, बड़ी अच्छी बात है। तो राहुल जी, क्या करते हैं आप?
1: कुछ नहीं सर, मुझे जन्म से दिखाई नहीं देता है और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, इससे अच्छी क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा गाना राहुल जी सुनना चाहेंगे? आज
1: पहले कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
0: बिल्कुल, आप नाम लीजिए, आप ही का प्रोग्राम है।
1: मेरे बिंटू भाई साहब हो गए
0: जी,
1: प्रभाकर तिवारी जी हो गए,
0: क्या बात है,
1: और एक ग्रासी मेरे भाई साहब हैं कलेक्टर सिंह जी
0: जी,
1: और मोहम्मद फैज भाई हो गए,
0: क्या बात है,
1: और जितने लोग सुनना ही उन सबके लिए,
0: क्या बात है। और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: यूपी वाला ठुमका लगाओ, हीरो जैसा नाच के दिखाओ।
0: क्या बात है, यूपी वाला ठुमका लगाऊं या नाच के दिखाऊं, फ्रॉम द मूवी हीरो नंबर वन है ना। देखिए गाना हमने लगा दिया राहुल भाई, और ठुमका लगाइएगा जरूर, ठुमका जरूर लगाइएगा। बिल्कुल आते हैं आपके इटावा और मिठाई खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

तो आप यूपी वाला ठुमका लगा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। संडे का दिन है फिलहाल, मुझे अनुमति दीजिए क्योंकि हमारे जमशेद भाई बिल्कुल तैयार हैं रात 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपका मनोरंजन करने के लिए। अपना खूब ख्याल रखिए और ऐसे ही धड़कन लखनऊ की सुनते रहिए।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन में प्रदेश सरकार के 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल के नए सदस्य के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी, मनोज कुमार पांडे ने कैबिनेट मंत्री तथा कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश सिंह राजपूत ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। भूपेंद्र सिंह चौधरी विधान परिषद सदस्य हैं, वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि मनोज पांडे ऊंचाहार सीट से विधायक हैं। वहीं राज्य मंत्री की शपथ लेने वाली कृष्णा पासवान खागा से, सुरेंद्र दिलेर खैर से और कैलाश सिंह राजपूत तिरवा से विधायक हैं। हंसराज विश्वकर्मा विधान परिषद सदस्य हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देशभर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम

पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अवधि जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग की 2 दिवसीय परीक्षा आज प्रदेश भर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। आज प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान सहित 5 विषयों और द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी एवं कला सहित 4 विषयों की परीक्षा आयोजित हुई। सभी जिलों में परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा, कहीं से किसी तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पिछले 2 दिन के दौरान मौसम साफ रहने, तेज धूप निकलने के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम के इस बदलाव के कारण लखनऊ सहित कई जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ने लगी है। मौसम विभाग कल से एक बार फिर मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जता रहा है। विभाग ने अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज सहित कई जिलों में 12 से 14 मई के बीच तेज हवा के साथ गरज चमक के बीच वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की.
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत. सुकून से भरा दोपहर. शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद. शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर. फिर रात को फुर्सत के वो पल.
5: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा.
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर. तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz. FM रेनबो धड़कन लखनऊ की.
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
6: Entertainment aur information rahega sang sang.
7: Meri rooh ka parinda phadphadaye.
0: Jab jayega 100.7 FM Rainbow ka satrangi rang.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: स्टे ट्यून्ड।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

दरवाजा खुला रखना। एक एहसास मेरे पास से यूं ही तो नहीं गुजरा होगा, उसकी खामोशी ने उससे जरूर कुछ तो पूछा होगा।

रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। और इसी तरह की बातें, इसी तरह के चंद अशार आपकी नजर आज आबशार में मेरे यानी जमशेद के साथ 100.7 FM रेनबो के साथ।

क्या कहूं, कहने को क्या रह गया। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूं, मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूं। कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। मुझ में रहता है कोई दुश्मन जानी मेरा, खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूं।

वैसे मेरा आपका, और मेरा आपका साथ तो वैसे भी नहीं छूटना है. रात 12 बजे तक मैं यानी जमशेद रहूंगा आपके साथ, और हमारा साथ बस इसी तरह से रहेगा बरकरार. और मैं ये कहूंगा कि हर धड़कन पर अपनी वफा का इकरार करेंगे, हर एक धड़कन पर अपनी वफा का इकरार करेंगे. जहां भी जाओगे हर कदम पर हमें ही पाओगे. क्यों? क्योंकि इश्क के हर मोड़ पर हम तेरा इंतजार करेंगे.

जरूरत क्या है। लेकिन यह तो दुनिया में हर चीज जरूरत के एतबार से होती है, फिर चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। लेकिन एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं।

जैसे बेताब दिल को करार आ गया। किसी ने कहा, बड़ी खूबसूरत है शायरी तुम्हारी। मैंने जवाब दिया, खूबसूरत मेरी शायरी नहीं, ये तो आपकी मोहब्बत है जो नूर बनकर झलकती है मेरे लफ्जों में।

और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन लेगा। और चलते चलते मैं कहूंगा आपसे कि अगर मौज है तो बीच धारे चला चल, वगरना किनारे किनारे चला चल, इसी चाल से मेरे प्यारे चला चल, गुजरती है जैसे गुजारे चला चल, और जिंदगी खूबसूरत लम्हों खूबसूरत पलों के साथ गुजरती रहे। बस यही एक खूबसूरत सी दुआ है आप सभी के लिए। 8:41 7:01 सेकेंड्स, यानी प्रोग्राम आप

का सफर यहीं तक। समाचार संध्या के बाद फिर होती है मुलाकात पॉप टाइम में। आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ, और हमारा साथ यूं ही रहेगा बरकरार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

0: न्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का नियमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटिबिल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन्द्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक

0: बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की.
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत.
5: Love you, जिंदगी.
4: सुकून से भरा दोपहर.
6: पुरानी जींस और गिटार.
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद. शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर.
7: हैरते आशिके जगा.
4: रात को फुर्सत के वो पल.
8: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा.
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर. तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz. FM रेनबो धड़कन लखनऊ की.
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM रेनबो धड़कन लखनऊ की.
9: इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन रहेगा संग संग.
10: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.
11: कोई

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

है जीना, बस यही तो है रेनबो का सफर, पॉप टाइम का सफर। जहां आप हैं वहीं हम हैं, और हमारे साथ हैं ये खूबसूरत से गीत जो आज बजने वाले हैं पॉप टाइम में। बस ऐसे ही हम और आप मिलते हैं और आगाज होता है पॉप टाइम का 100.7 FM रेनबो पर, और आज मैं हूं आपके साथ जमशेद।

भाई अमित त्रिवेदी तो यही कह रहे हैं, नैना दा क्या कसूर, लेकिन सारा कसूर नैनो का ही है, ना आंख लड़ेगी ना मोहब्बत होगी ना कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आंख लड़ जाती है तो क्या होता है।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow।
3: धड़कन लखनऊ की।

हो जाता है तो कुछ ऐसा ही होता है। फिलहाल 9:26 साथ में कुछ सेकंड्स पॉप टाइम में आज मैं हूं जमशेद आपके साथ और गानों का गुलदस्ता लगातार आपके बीच पहुंच रहा है।

इस बात और ढेर सारे मेल आपके हमारे पास आ चुके हैं. नमस्कार नमस्कार. और शिव पूजन ने हमें मेल किया है और आपने हमें लखीमपुर से मेल किया है. प्रोग्राम को एंजॉय करें, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है. और साथ साथ आनंद तिवारी जी का भी मेल आ चुका है मल्लावा हरदोई से. जबरदस्त प्रोग्राम आपको लग रहा है, सारे गाने आपको अच्छे लग रहे हैं. और राम सेवक साहब जी, नमस्कार नमस्कार. आपने उन्नाव से हमें मेल किया है और

प्रोग्राम को पूरी तरह से कर रहे हैं एंजॉय। अभय कुमार जी का भी मेल आ चुका है हमारे पास और लिखते हैं, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आपके साथ शुरू से जुड़ा हूं और रेगुलर श्रोता हूं। सीतापुर से आपने हमें किया है मेल। शैलेश कुमार जी का भी मेल आ चुका है रूपुर चंदेला से। नमस्कार, आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। और राम राज साहब का भी मेल आ चुका है पहाड़ीपुर से, यानी रायबरेली से आपने किया है मेल हमें। और साथ साथ वारिस अली खान साहब का भी मेल आ चुका है संजय नगर ऐशबाग से, और आप भी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ अभय कुमार जी का भी मेल आ चुका है, आपने हमें कहां से मेल किया है, चलिए ये चीज़ आपने नहीं लिखी है, और आप प्रोग्राम को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और साथ साथ मेल की बात अगर चल रही तो ढेर सारे मेल और भी हैं, चलिए दो चार और मेल शामिल कर लेते हैं। सीतापुर से वकील अहमद का मेल आ चुका है, वकील अहमद मंसूरी साहब हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, सभी गाने आपको अच्छे लग रहे हैं। गुलाबशाह सिद्दीकी का भी मेल आ चुका है हमारे

और आप प्रोग्राम को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ मेल की बात अगर चल रही तो ढेर सारे मेल और भी हैं, चलिए दो चार और मेल शामिल कर लेते हैं। सीतापुर से वकील अहमद का मेल आ चुका है, वकील अहमद मंसूरी साहब हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, सभी गाने आपको अच्छे लग रहे हैं। गुलाबशाह सिद्दीकी का भी मेल आ चुका है हमारे पास, आपने हमें संडीला से मेल किया है और प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हैं।

और इसी तरह से पर्दा उठता रहेगा, ढेर सारे गाने आप तक पहुंचेंगे। बाबू अंसारी का मेल आ चुका है बाराबंकी से, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और ये जो बड़े बड़े मेल आपके आ रहे हैं ये लगातार, क्योंकि आज मदर्स डे भी है और लोग मदर्स डे की बधाइयां दे रहे हैं क्योंकि पूरा दिन रहा है, लेकिन इस वक्त आपके बीच जो प्रोग्राम चल रहा है वो है पॉप टाइम आपके लिए खास। और अहमद नवाब का भी मेल आ चुका है संडिला से, प्रोग्राम को रोज़ एंजॉय करती हैं, पूरी तरह से गीत आपको पसंद आ रहे हैं। और शैलेश जी चलिए आपका मेल मैं पढ़ देता हूँ। टाइगर पूर्णिमा रूपुर चंदिला से, और कहते हैं अगर जाना है ज़िंदगी के सफ़र में बहुत ऊंचाई तक तो तुम अपने माँ बाप का साथ कभी मत छोड़ना। एक बार फिर पढ़ देता हूँ कि अगर जाना है ज़िंदगी के सफ़र में बहुत ऊँचाई तक तो तुम अपने माँ बाप का साथ कभी ना छोड़ना। हैप्पी मदर्स डे कहा है सारा, पीहू, रोशनी, बबीता, तनु, वंदना, स्नेहा, सोनी, ढेर सारे नाम हैं। मैंने कहा ना कि इस प्रोग्राम में ये जो बड़े बड़े मेल हैं थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और मनोज विश्वकर्मा जी आपका मेल आ चुका है और मेल आपका पूरी तरह से पढ़ा जाएगा, कैसी बात करते हैं। ये रहा आपका मेल और आपने बलौदा बाज़ार से हमें मेल किया है, छत्तीसगढ़ से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम को और पूरा परिवार आपका इस प्रोग्राम को सुन रहा है। और अर्पित शर्मा जी का भी मेल आ चुका है, अर्पित शर्मा ने हमें राजस्थान से मेल किया है, क्या बात है। और काफ़ी दूर से आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हमें सुन रहे हैं। साथ साथ विवेक कश्यप जी का भी मेल आ चुका है, विवेक कश्यप जी नमस्कार और आप प्रोग्राम को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं सीतापुर से, और ये गीत आप तक पहुँचा दूँ, मेल बहुत सारे हैं।

में डुबकी लगावा। और जाहिर सी बात है जब दो नैना लड़ते हैं तो कुछ ऐसी ही बात होती है। और अगर सौदा है मजबूत यानी मोहब्बत मजबूत है तो फिर जाहिर सी बात है जिंदगी का सफर भी बहुत खूबसूरत सा होता है। और कुछ ऐसे ही मोहब्बत का करते हैं आगाज।

और ऐसे ही गल इधर भी बढ़ गई है। जावेद अख्तर साहब का भी मेल आ चुका है और आपने हमें मेल किया है रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से। पॉप टाइम कार्यक्रम का भरपूर आनंद ले रहे हैं, गाने बज रहे हैं बहुत मस्त। साथ साथ विवेक गौतम का भी मेल आ चुका है हमारे पास। आपने हमें कहाँ से, रायबरेली से मेल किया है और प्रोग्राम को पूरी तरह से कर रहे हैं एंजॉय। भैया मोनू सेठ जबरदस्त, और आपने लिखा है हैप्पी मदर्स डे सभी मम्मियों को, ढेर सारी मुबारकबाद। और विजय पाल यादव का भी मेल हमारे पास आ चुका है ललहुआ लखीमपुर खीरी से। भाई बिल्कुल आपको कैसे भूल जाएंगे, हाँ ये हो सकता है नीचे आपका मेल चला गया, लेकिन हाँ आपको हम कभी नहीं भूलते हैं और आप लगातार हमारे साथ बने हुए, और आपने भी सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए सारे लोगों के मेल मैंने शामिल कर लिए, लेकिन एक मेल और रिफ्लेक्ट कर रहा है। शनू नूर अंसारी का मेल आ चुका है हमारे पास, आपने लहरपुर मटकली ज़िला बरेली से मेल किया है। और शनू नूर अंसारी हैं, फरियाद हुसैन अंसारी हैं, शकील अहमद इदरीसी हैं, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। ये पूरा टाइप्ड मेल होता है पर ये बिल्कुल चिपका के भेज देते हैं, सही कह रहा ना मैं? अरे कुछ नई चीज़ भी लिख दिया करिए कभी कभी, थोड़ा सा मज़ा आता है। और एम के राज का भी देखिए अभी भी तुरंत मेल आया और मैंने आपकी तरफ बिल्कुल भेज दिया है। मुनेश कुमार राज हैं भानपुर हरौआ ज़िला लखीमपुर खीरी से, और आप रोज़ लाइव सुनते हैं, बहुत सुपर सुपर कार्यक्रम, क्या बात है।

9:55 साथ में कुछ सेकंड्स और यहां से मैं लूंगा विदा, यानी प्रोग्राम पॉप टाइम से मैं लूंगा आपसे विदा। और चलते चलते जो दो मेल आ चुके हैं वो आप तक पहुंचा दूं। रेनबो के सभी साथियों को राम राम कहा है। वैभव प्रकाश सिंह साहब ने मैंने आपकी राम राम सब तक पहुंचा दी। अतुल कुमार यादव जी ने हमें कर दिया है मेल खैराबाद से और सभी को मदर्स डे की शुभकामनाएं दी हैं। और ये गीत सभी साथियों को होती है मुलाकात छोटे से न्यूज ब्रेक के बाद प्रोग्राम रजनीगंधा में। बने रहिए जमशेद के साथ।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरीकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अटूट आस्था का गौरव गाथा के अवसर पर सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम कल सुबह वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में त्र्यंबकेश्वर बहुद्देशीय हॉल में आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। साथ ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर आयोजित कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम प्रसारण भी किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में तथा नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम के सहयोग से आज प्रदेश भर में नियोनेटल रेसिसिटेशन प्रोग्राम नवजात पुनर्जीवन कार्यक्रम NRP के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। लखनऊ में वीरांगना अवंतीबाई जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन अपर निदेशक प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य डॉक्टर अजय गुप्ता और महाप्रबंधक बाल स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर मिलिंद वर्धन ने किया। डॉक्टर अजय गुप्ता ने कहा कि NRP नवजात मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। प्रदेश सरकार अब शिक्षा को भारतीय संस्कृति, संवाद कौशल और सामाजिक समावेश जोड़ते हुए नई पीढ़ी को भारत भाषाई विरासत से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के परिषदीय और कस्तूरबा विद्यालयों में 13 से 19 मई तक भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर 2026 आयोजित किए जाएंगे, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ भारतीय भाषाओं और सांकेतिक संवाद की भी सीख

दी जाएगी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान BSA खंड शिक्षा अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर
0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
3: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो.
4: धड़कन लखनऊ की.
5: सुबह की खूबसूरत शुरुआत.
6: Love you जिंदगी.
5: सुकून से भरा दोपहर.
7: पुरानी जींस और गिटार.
5: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद. शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर.
8: हैरते आशिके जगा.
5: फिर रात को फुर्सत के वो पल.
9: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा.
5: यानी आपके हर वक्त का हम सफर. तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz. FM रेनबो धड़कन लखनऊ की.
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow Ki.
10: Entertainment aur information rahega sang sang.
11: Meri rooh ka parinda phad phadaye.
0: Jab jayega 100.7 FM Rainbow ka satrangi rang.
12: Koi no.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

तेरे संग प्यार मैं नहीं तोड़ना, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस, यही तो है हमारे साथ। 10:09 साथ में कुछ सेकंड्स, प्रोग्राम रजनीगंधा में वादे के मुताबिक मैं यानी जमशेद जुड़ चुका हूं आपके साथ। और शुरुआत में तो बस मैं यही कहूंगा कि तमन्नाएं तेरी मेरे दिल में बसी हैं, तमन्नाएं तेरी मेरे दिल में बसी हैं, हर एक पल तेरी यादें मुझे सताती हैं। ये यादों की बात कर रहा हूं, किसी ना किसी की याद हर किसी को कहीं ना कहीं सताती जरूर है, वो किसी की भी हो। कि हर एक पल तेरी यादें मुझे सताती हैं, तमन्नाएं हैं तेरे साथ में जिंदगी बिताने की, तमन्नाएं हैं तेरे साथ में जिंदगी बिताने की, तमन्ना है तेरे प्यार में खो जाने की। तमन्नाएं तेरी मेरे दिल की धड़कन है, तमन्नाएं तेरी मेरी जिंदगी का मकसद है, तमन्ना है तेरे साथ हर पल बिताने की, तमन्ना है तेरी मोहब्बत में हमेशा हमेशा साथ रहने की। और यकीन जानिए, कोई भी हो, मैं हूं या आप हो या आप अपने आसपास नजर डालिए, हर किसी की जिंदगी में जुड़ी होती हैं वो तमाम तमन्नाएं, जिनके साथ वो जिंदगी के अनगिनत ख्वाब देखता है, अनगिनत खुशियों की बातों के साथ वो उस जिंदगी को गुजारना चाहता है। ढेर सारी बातें, थोड़ा फलसफे वाली बात हो गई, थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कैसी बातें हो रही हैं, बिल्कुल ऐसी ही बातें होंगी आज रजनीगंधा में। और साथ में होंगे खूबसूरत से अशार खास आपके लिए। उसके लिए बस एक छोटा सा काम करना है आपको, हमारे साथ जुड़े रहना है रात 12 बजे तक 100.7 FM रेनबो के साथ। और तारुफ एक बार और अपना करा दूं, जमशेद हूं आपके साथ।

ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। और यकीन जानिए, ये जो जुदाई अल्फाज है, ये जो जुदाई शब्द है, ये कहीं ना कहीं एक जख्म दे जाता है दिल को। अगर कहीं पर भी किसी भी तरह की जुदाई का एहसास भर हो जाता है किसी को, और यकीन जानिए कोशिश यही रहती है हर किसी की, मैंने कहा ना, चाहे मैं हूं या आप हूं या कोई भी हो, वो तो यही चाहता है कि ये अल्फाज जिंदगी में कभी ना आए, किसी के साथ ना आए। और कहीं पर भी हो, किसी भी रिश्ते के साथ ये अल्फाज जुड़ा हो, और अगर ये अल्फाज मोहब्बत के साथ जुड़ा है तो फिर, लेकिन हां, जो भी पल हैं उनको बड़ी खूबसूरती के साथ हर किसी को जीना चाहिए, उसमें खो जाना चाहिए और

और सारी बातें बिना बात के ही होती हैं। कोई ऐसी मौका या कुछ ऐसी बात ही नहीं होती, जाने कैसे मुलाकात हो जाती है, बात आगे बढ़ जाती है। थोड़ा सा पीछे की बातें याद करने की कोशिश कीजिए। कहते हैं ना लोग

माजी की बातें, जो भूली बिसरी बातें, उनको याद कीजिए। उन मुलाकातों के पलों को याद कीजिए, और मुलाकातों को नहीं बल्कि पहली मुलाकात के उस पल को याद कीजिए। और मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना जरूर बनता है। कभी कभी किसी के लिए बहाना किसी का रुमाल भी हो जाता है।

उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ बातें भूल जाया करते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। लेकिन उसका जो कंक्लूजन है, जो उसका अर्थ है, बस वही निकलता है कि महबूब की आंखों में समंदर की गहराई है। महबूब की आंखों में समंदर की गहराई है। महबूब के होंठों पर गुलाब की खुशबू है। महबूब की मुस्कान से रोशन होती है रात। महबूब की याद में खो जाता है दिल का साथ। महबूब की खूबसूरती का कोई हिसाब नहीं है। महबूब की मोहब्बत में खो जाना ही जिंदगी है।

नजर ना लग जाए किसी की। बस इन्हीं सब बातों से तो ये दिल डरता है। और अभी कुछ देर पहले मैंने एक गीत आपके लिए बजाया था, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर, उसमें मुलाकात का जिक्र था। कैसे हुई थी पहली मुलाकात, कहां पर हुई थी पहली मुलाकात। कुछ लोग कहते हैं कि एक अक्स सा उभरा था दिमाग में, पलकों में, और फिर अचानक वो शक्ल सूरत में सामने आ गया।

नजर न लग जाए किसी की। बस इन्हीं सब बातों से तो ये दिल डरता है। और अभी कुछ देर पहले मैंने एक गीत आपके लिए बजाया था, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर। उसमें मुलाकात का जिक्र था, कैसे हुई थी पहली मुलाकात, कहां पर हुई थी पहली मुलाकात। कुछ लोग कहते हैं कि एक अक्स सा उभरा था दिमाग में, पलकों में, और फिर अचानक वो शक्ल सूरत में सामने आ गया, और उसके बाद कब कैसे वो जिंदगी बन गया इसका पता नहीं चला। और ऐसा ही अमूमन और लोगों के साथ भी होता है, पहले मुलाकात ख्वाबों में और फिर ख्वाबों की ताबीर उस शक्ल में।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: गोमी

ये झुके झुके नैना, ये लट बल खाती, ढेर सारी तारीफों की बात हो गई इस गीत में। यानी गुरुदत्त साहब ने आशा पारेख से हर बात कह डाली, जितनी भी उनकी खूबसूरती थी, जितनी तारीफ हो सकती थी। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि बड़ा खूबसूरत होता है मोहब्बत का वो हर एक लम्हा, जिसमें जिंदगी की वो ढेर सारी बातें जुड़ जाती हैं, उन बातों की महक जुड़ जाती है, साथ बिताए हुए वो पल जुड़ जाते हैं, रूठना मनाना जुड़ जाता है, ढेर सारी खुशियां शामिल हो जाती हैं, और ये भी कहना शामिल हो जाता है कि हंसी तो और है लेकिन कोई कहां तुझसा, हंसी तो और है लेकिन कोई कहां तुझसा, जो दिल जलाए बहुत फिर भी दिल रुबा ही लगे। ये भी बात उसमें शामिल हो जाती है।

अभी मुलाकात और बाकी है, यानी अभी एक घंटे का सफर और है हमारे साथ, एक छोटा सा न्यूज ब्रेक और उसके बाद फिर मेरी यानी जमशेद की होगी मुलाकात। तो बस आपसे ये कहूँगा कि आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के पास, क्योंकि अभी ढेर सारे गीत हैं आपके लिए, ढेर सारे अशआर हैं आपके लिए, ढेर सारी बातें हैं आपके लिए, और उन बातों को लेकर मैं यानी जमशेद रहूंगा आपके साथ। तो बस इस गीत का आनंद लीजिए और उसके बाद न्यूज़ ब्रेक और फिर मेरी मुलाकात।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलने स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है और दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म कृष्णावतारम को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है। आज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और जनप्रतिनिधियों से एक साथ यह फिल्म देखी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे टैक्स फ्री करने की घोषणा की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर
0: Only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की.
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत. सुकून से भरा दोपहर.
5: पुरानी जींस और गिटार.
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद. शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर. फिर रात को फुर्सत के वो पल.
6: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा.
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर. तो सुनते रहिए FM रेनबो. 100.7 MHz FM रेनबो. धड़कन लखनऊ की.
7: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की.
8: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग.
9: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए.
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।
4: ये

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश सी प्यारी आंखें, और सारा कसूर इन आंखों का ही तो है। न नजरें मिलती, न बात आगे बढ़ती, न हो मोहब्बत का वो सिलसिला आगे बढ़ता। लेकिन क्या सोचा था कभी कि अचानक किसी अजनबी से ऐसी मुलाकात हो जाएगी, वो अजनबी जो कभी ख्वाबों ख्यालों में दूर दूर तक नहीं था, वो दिल में भी आया, दिमाग में भी आया, और धीरे धीरे उसने पूरे तन मन सब पर कब्जा कर लिया। अब तो जैसे उसके बिना एक पल भी गुजारना नामुमकिन सा लगता है। यही दिल करता है कि हर पल बस उसके साथ रहें, उसके पास रहें, और यूं ही गुनगुनाते रहें। मैंने कहा ना, रजनीगंधा में अभी ढेर सारी बातें हैं आपके लिए, क्योंकि ये जो पुरानी बातें होती हैं, पुराने अल्फाज होते हैं, जो खतों के शक्ल में लगातार आपके पास रखे रहते हैं, निकालते हैं और मुस्कुराते हैं, क्या ये भी हमने कभी लिखा था? यानी पुरा

अपने खत में उनके नाम के लिखे हुए हर लाइन में एक एक बात, एक एक मुलाकात, एक एक याद बसी होती है। चलिए, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अगर एक बारगी फिर वो यादें ताजा हो जाएं, एक बारगी वो लम्हा फिर जीने को मिल जाए, तो क्या कहेंगे आप?

और ये जो चोरी चोरी फिल्म का गीत आपके लिए मैंने प्ले किया, इसमें जोड़ी आपने देखी थी और इसीलिए मैंने माजी की बात की, इसीलिए मैंने यादों की बात की, गुजरे हुए पलों की बात की। और उसमें एक लाइन हम और जोड़ेंगे, क्योंकि वो पहली मुलाकात का खूबसूरत मंजर एक बारगी आंखों के सामने कौन जाता है, और इस गीत की बात हो तो जाहिर सी बात है कौन गया होगा। और जब वो मंजर कौनता है तो दिल में एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा एहसास भर जाता है।

और मैं अगर अपनी बात करूं तो कभी कभी बहुत बेचैन करते हैं तेरे ख्वाब, कभी कभी बहुत बेचैन करते हैं तेरे ख्वाब, इसलिए हम सोते कम हैं, जागते रहते हैं सारी रात। और वो कहते हैं कि कैसे बयां करें हम अपना हाले दिल, वो कहते हैं कि कैसे हम बयां करें अपना हाले दिल। हमने कहा बस चंद अल्फाज ही काफी हैं मोहब्बत का इजहार करने के लिए। अल्फाज तो बहुत हैं मोहब्बत को बयां करने के लिए, पर जो खामोशी नहीं समझ सकते क्या वो मोहब्बत को समझ सकते हैं? बस ऐसे ही ये जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी यादें हैं, इन्हीं के बीच जिंदगी ऐसे ही खुशगवार माहौल में गुजरती रहे और वो लम्हे आप यूं ही याद करते रहें।

बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही वो चाहे मुलाकात तो होगी। और अगर इसमें एक लाइन और हम जोड़ दें कि खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से।

फूलों की तरह मुझ पे बिखर जाओ किसी दिन, गुजरे जो मेरे घर से तो रुक जाए सितारे, गुजरे जो मेरे घर से तो रुक जाए सितारे, इस तरह मेरी रात को चमकाओ किसी दिन, इस तरह मेरी रात को चमकाओ किसी दिन।

हर धड़कन पर अपनी वफा का इकरार करेंगे, हर धड़कन पर अपनी वफा का इकरार करेंगे। जहां भी जाओगे हर कदम हमें ही पाओगे, इश्क के हर मोड़ पर हम तेरा इंतजार करेंगे। जैसी है तेरी ख्वाहिश वैसे ही हम हर बात करेंगे।

उनकी आवाज सुनने को बेकरार रहते हैं। शायद इसे ही मोहब्बत कहते हैं। काटने से भी जो ना कटे वक्त, उसी को मोहब्बत में इंतजार कहते हैं। और ये इंतजार हर किसी को अच्छा लगता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहेगा ये इंतजार अच्छा नहीं होता। लेकिन हां, जो भी चीजें हैं, मोहब्बत का इजहार भी है। आहिस्ता आहिस्ता प्यार का एहसास भी है। आहिस्ता आहिस्ता।

11:42 7:01 प्रोग्राम रजनीगंधा में आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो के साथ। जो नूर बनकर झलकती है मेरे लफ्जों में, होठों पर वो मुस्कुराहट आ जाए, एक ऐसा खूबसूरत ख्याल हो तुम। और अगर वो साथ जिंदगी भर का हो, वो एहसास जिंदगी भर का हो।

तो यकीन जानिए जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत हो जाता है।

हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। उनकी जुल्फें काली रातों की तरह है जिनमें मेरा दिल खो जाता है और मैं सब कुछ भूल जाता हूं। उनकी बातें शहद की तरह मीठी हैं जिनमें मेरा दिल खो जाता है और मैं सब कुछ भूल जाता हूं। उनकी बातें गुलाब की तरह खुशबूदार हैं जिनमें मेरा दिल खुश हो जाता है। उनकी बातें मेरे दिल की धड़कन है, उनकी बातें मेरे दिल और जान है। और क्या बातें करूं, क्योंकि वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ इस मकाम तक ले आया है कि मैं रजनीगंधा को यहीं पे अलविदा कहूं और ये वादा करूं कि फिर किस रोज किसी प्रोग्राम में मुलाकात जरूर होगी आपसे। तो बस अपने दोस्त जमशेद को दीजिए इजाजत, होगी मुलाकात फिर किसी रोज। और चलते चलते एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। खुदा हाफिज।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंत्रणा से भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडेय, अजीतपाल सिंह, सोमेंद्र तोमर, कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर व हंस राज विश्वकर्मा को आज जनभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ दिलाई। कैबिनेट मंत्री के रूप में भूपेंद्र चौधरी व मनोज पांडे ने शपथ ली। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अजीत सिंह पाल व डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने शपथ ली। राज्यमंत्री के रूप में कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर व हंस राज विश्वकर्मा ने शपथ ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा अशांतिपूर्ण संपन्न हो गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकलविहीन और सुव्यवस्थित माहौल में संपन्न कराई गई। परीक्षा के दौरान आयोग ने स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 192,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 5 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा और यह सामान्य से लगभग 1 डिग्री अधिक था। सूर्योदय 5:21 पर था, सूर्यास्त 6:44 पर होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की FM रेनबो प्रसार सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा समाप्त होती है। प्रातः 5:55 पर हम आपके समय पुनः उपस्थित होंगे। तब तक ले में आज्ञा दीजिए। जय हिंद।